ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ।

0: bus and talk show to just again.
1: Oh,

0: அறுநூத்தி தொன்னூத்தி ஆறு மீட்டர் தொண்ணூத்தி கிலோ ஹார்ட்ஸ், டேரா மட் சோன் கிலோ ஹார்ட்ஸ், எஃப்எம் சோ அஷாரியா அட் மெகா ஹார்ட்ஸ், எஃப்எம் சோ அஷாரியா நோ மெகா ஹார்ட்ஸ், அது டிடிஎச் தி அகாஷவாணி பஞ்சாப் சேவா தா இஹ ஜலந்தர் கேந்திர ஹை. ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਭੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। मनीष रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले

0: जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं वही वेब 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से क्या नमरेत

0: अपने ऊपर विश्वास होना लाजमी है, क्योंकि अपने रास्ते ऊपर असीं खुद ही चलते हाँ।
1: अच्छा ज्ञान अमृत लोहन सर्वन करो भक्ति संगीत का प्रोग्राम आराधना

सूर्य उठते सरपत्ते पले की अरदास करिया करो। हे परमात्मा सिर्फ मेरा ही नहीं सगो सारी सृष्टि का भला करो। हर किसी की चोली खुशियां नाल भरो। सबनों चंगी सेहत सुख शांति अते अपने नाम का आसरा बख्शो।

नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा दी पहली सभा हुण इत्थे खत्म हुंदी है। एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे अमृतसर केंद्र तों बोल रहे हां। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।

हे आकाशवाणीची सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज ते तंखा सवाइ तव्हां आकाशवाणीची सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। अॼु छंछर आहे, ऑगस्ट महीने जी 8 तारीख़। हिन वक़्तु भारत में सुबुह जा 6:30 थी चुका आहिनि। असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। प्रोग्राम जा तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देर में तव्हां भगत कंवरराम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ 6:35 ते तबसरो पेश कयो वेंदो, तंहिंखां पोइ 6:41 ते वापसी नाटक पेश कयो वेंदो। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ास ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त ॿुधो भगत कंवरराम साहब खे।

भगत कंवरराम साहब के बुधी रहा हुआ हिंसा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है हिंसा पेश है तबसरो। भारत जयपुर में नई ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर से मीटिंग कामयाबी से मुकम्मल गई। विस्तृत दिन नई ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर से मीटिंग जयपुर राजस्थान में भारत के 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप हेठ कामयाबी से खत्म थी। इन मीटिंग में ब्रिक्स मुल्कन के इंडस्ट्री मिनिस्टर्स ए सीनियर नुमाइंदन के गड कयो वियो जैसा ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पार्ट NIR तहत मंत्री सतह ते गाली उनके मुकम्मल करे सकजे। स्थिरता नवाचार सहयोग ए पायदारी लाए तामीर जे थीम तहत आयोजित बैठक मेंबर मुल्कन जे सनअती सलाहियतुन के मजबूत करण टेक्नोलॉजी जी तब्दीली के इस्तेमाल करण ए गडियल अमल लाए वधिक मौका पैदा करण लाए बहस करण जो एक प्लेटफॉर्म प्रदान कयो। मीटिंग के खिताब कंदे मरकजी सरकार जे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल नुमाइंदन जी जयपुर में आजियां कई उनके अड़े शहर तौर बयान कयो जे सदियों पुरानी दस्तकारी के जदीद सनअती मईशत जे जरूरतन से मिलायो है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जोर दिनो तेजी से तब्दील थींदड़ माहौल में असा के उम्मीदों के अमली नवाचार ए सहयोग में तब्दील करण की जरूरत है। इन गाल ते जोर दिनो तो ब्रिक्स मुल्कन के पैंजो पूरक सलाहियतों इस्तेमाल करे मजबूत इंडस्ट्रीज ठाण घुर्जन ए इो पण नुमाया कयो तो पार्ट NIR इन सहयोग जो अहम तरीको बणजी चुको है। व्यापार इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री जितिन प्रसाद ब्रिक्स मेंबर मुल्कन के विच में मजबूत इंडस्ट्रियल हिस्सेदारी वधाने लाए भारत जे संकल्प के बीहर जाहिर कयो बुधायो तो सहयोग नवाचार ए बाहिमी एतमाद जे किरदार के उजागर कयो। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर याद दियारियो तो ब्रिक्स जो सफर 2009 में रूस याकाटेरिनबर्ग में पहले शिखर सम्मेलन से शुरू थियो। हुन 2025 में ब्राजील जे चेयरशिप दौरान अगवानी जी सारा कई ए बीहर जोर दिनो तो भारत उन विरासत के वधाने लाए उसरंदर सरगर्म ए अमली तरीके से पुरअज़म है। हुन नोट कयो तो भारत जे चेयरशिप जो मकसद स्थिरता प्रदान करण से गड कारोबारन सीरपकारन ए नवन तकनीकी सोचिंदड़न में वधिक एतमाद पैदा करण ए अमली सहयोग के अगते वधायण है जेको सभी ब्रिक्स मेंबर लाए हकीकी नतीजा दे तो। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गडजानी उनके भारत जे ब्रिक्स चेयरशिप हेठ पार्ट NIR जरिए हासिल थियल अहम तरक्की बाबत आगाह कयो। उन इहो पण नुमाया कयो त एडवाइजरी ग्रुप ए अवल तरजीह वारन चइन इलाइकन में तय थियल थीमेटिक वर्किंग ग्रुपन पारां कयल व्यापक बहसन जा नतीजा मर्कज में रखिया विया आहिनि। ब्रिक्स मेंबर मुल्कन जे विच में सनअती सहयोग के वधीक मजबूत करण लाइ पायदार इदारती मैकेनिज्म कायम कया वञनि। उन्हनि में SME वर्किंग ग्रुपन में सहयोग जे फ्रेमवर्क जो फैसलो करण फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री ते कम कंदड़ ग्रुप लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ए एक्शन प्लान के अपनायण ए स्टार्टअप जरिए नवाचार के बदल तरक्की लाए एक्शन प्लान जो फैसलो शामिल हो। गडो गड मजबूत इंडस्ट्री से लागा पियल ट्रांसपोर्ट ए लॉजिस्टिक सिस्टम की अहमियत जैमें GIS ए सिटी लॉजिस्टिक प्लानिंग शामिल आहिन इनके भी उजागर कयो वियो। मीटिंग जो एक अहम नतीजो नौ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर जे गडजानी जे गडियल ऐलान की मंजूरी हो। यो ऐलान मेंबर मुल्कन जे गडियल संकल्प के जाहिर करे तो डायलॉग का अगते वधी अमली सहयोग जा औजार लागू कया वञन जेके इंडस्ट्री के मजबूत कन ए जिंदगी के बेहतर बनाए। मीटिंग दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्कन जा इंडस्ट्री मिनिस्टर ए डेलीगेशन के सरबराहन पैंजा कौमी नुक्ता नजर शेयर कया बुनियादी पॉलिसी कदमन तरजीहन ए सनअती तरक्की के हथी दियण में कामयाबियों के नुमाया कयो। बयानन में सनअती काबिलियत के

मज़बूत करणु, डिजिटल ऐं टेक्नोलॉजिकल तब्दीलीअ खे तेज़ करणु, मज़बूत ऐं शामिल कंदड़ सनअती माहौल खे वधाइणु ऐं गॾियल तरक़ीअ जे चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण लाइ सहयोग खे वधाइण ते गॾियल संकल्प खे उजागर कयो वियो। मेंबर मुल्कनि ॿीहर ज़ोर ॾिनो त पार्ट NIR हिकु अहम प्लेटफॉर्म आहे जेको ब्रिक्स जे मेंबरनि जे विच में अमली सहयोग, इल्म जे विर्छ, सलाहियत वधाइण ऐं सनअती नवाचार खे अॻिते वधाइण लाइ लाज़मी आहे। नुमाइंदनि पिणु भारत जी 2026 जी चेयरशिप हेठि कयल कोशिशुनि जी तरक़ीअ खे साराहियो। इहो नोट कंदे त पार्ट NIR जे हेठि कयल कदमनि सां इदारती सहयोग मज़बूत थींदो, नवाचार ऐं सलाहियत वधाइण में मदद मिलंदी ऐं ब्रिक्स में मज़बूती, मुक़ाबले जे क़ाबिल ऐं मुस्तक़बिल लाइ तयार इंडस्ट्रीअ जी तरक़ीअ खे सहारो मिलंदो। भारत पंहिंजी ब्रिक्स चेयरमैनशिप तहत 7 अगस्त 2026 ते जयपुर राजस्थान में 16 ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर जी मीटिंग जी मेज़बानी करे रहियो आहे, जंहिं खां अॻु 3-4 अगस्त 2026 ते नई दिल्लीअ में ब्रिक्स कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज CGETI जो टियों इजलास थियो हो। इहो इजलास ब्रिक्स मेंबर मुल्कनि जे ट्रेड मिनिस्टर्स ऐं सीनियर आफिसरनि खे गॾु करे अहम बैन अलाक़वामी वापार ऐं इक़्तिसादी सहयोग वारनि मसइलनि ते बहस करण जो मौक़ो ॾींदो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

0: गंगा इसके धाम नहीं है इन छोकरियों माता जी फाती है फाती भगवान को अलग कर दे उन्हें अलग और घर दी दो गंगा ओ गंगा
1: गंगा गंगा गंगा मरे वे गंगा फाजा कपड़ा कठ बासन मन बबुआ के खीरे ही कर हु कर गंगा से भंगा जी चिंता छोकरी गंगा जी केर तो चिंता करे न घर में अमांजो वसल तो के वाटू रखे पकड़े उन सब पलो वजी फेरा दे खर मा कठे बाबा बाबा के तेने घर में अगर गिर बड़े थे तो वो आए भाव बीए छा पास गयो थस दिमागी सत्य आसमान ते चढ़ी गयो थस मुखे पारी ना तो माँ फिर पास करे लिखा रहा पर है घर में छोकरन जी इज्जत ही केर तो करे हेते तो औरत की औरत है पर नौकरानी तो समझो बनी ये जो तो घर से चार दीवारी में दम तो खुचे पर खैर बाकी बकलाक सिर्फ बकलाक है जने हैं घर आले चुसुई बारें तो इंदु ऐ अलार्म हो जन्दो तेरे माँ भी ना घर जी दम घुटी दर दीवारों खाने करी दूर बिल्कुल दूर पंजे रमेश सावनी नई दुनिया वसाई दस पंजे नौ घर ठाई दस जिते मैं जो राज हूँ तो जिते सिर्फ माँ रमेश हूँ दासी रमेश मैं जो रमेश जय मैं जी अंधियारे जीवन में आशा जी जोत जगाई मुखे तो निंद थी जी बिन कलाकन खां पोए मुखे न घर जी जेल खाने में आजादी मिलंदी पर चाहिए

सुनी संगत मन ठीक थी दो दुनिया छी जी वन करे माइटन की बदनामी को असान खानदान की इज्जत मुख्य कैसी परवाह को माइटन की बदनामी खानदान की इज्जत मैं गाल चिंता कर जरूर मां भी अजायन बेकार विचार में पी गई ठीक बारह बजे मुझे रमेश मां उन जरूर वेंदस ठीक

0: गंगा, ओ गंगा, छापे सूची,
1: कुछ न, कुछ न,
0: कोरी, मुखाम पहले मन जी गाल लिखाई थी, अजय सांजी शादी थी आए, अजो कोरी ये चुपचाप घुमसुम थी वे हलाय कौन है?
1: शादी, रमेश है, माँ भी न शादी के बारे में ही सोची रही आया,
0: छा,
1: यह ही अजय संजी शादी थी पर न मुझे कुंवर वांगु सिंगार थियो न तो के खोट राजा वांगु सजायो न के लाडा गाता न का दिख चढ़ी न तो मुटुक बधी जन वठी आए न के दुई लगा ये तो कैसी शादी थी
0: चली शादी तो बिन दिलन जे मेलाप के चवेंदो आए तो लपा जा मुकुट सिर्फ दुनिया जो दिखावा है पर छातू खुश कौन आई
1: मां बेहद खुश आया रमेश मुखे तू मिली वे तो सजी दुनिया जी दौलत मिली गई
0: तो को तू इन गाली चोथी सोची मुंह तो तू मजबूर कौन कयो हो
1: रमेश मुझे चवण जो गलत मतलब न कट मु करी चाहे तो तुम के मजबूर कयो मां त ये गाल करे रही हस इस चंगु थे अन थोड़ो बाहर घूमिए छु
0: घूमिए छु
1: हाँ
0: तो के खबर काने तो बाबे पुलिस में रिपोर्ट कही आए चैनी तरफ था ही तलाश थी रही आए अखबार में फोटो छपे आए
1: तो छह महीने कोठरी में बंद पे हूं दस
0: सिर्फ कुछ दिन ला मुखे का नौकरी मिली वने तो पो पान वड़ी जाए वठना सी ए तो के खबर आए धीरे धीरे वक्त सबनी जख्मन के भरे छड़ी दो आए असा जब माइट भी मने वेंदा मुहबत अग्या उनके झुकनो पौधो
1: पर रमेश तो की नौकरी मिलने में तो कुछ दिन लगी वेंदा तेस तई घर जो गाड़ो की हाल दो
0: हाँ तेस तई छा थी
1: तू फिक्र न कर हाँ यही वक्त
0: ही छाए
1: ईंदे वक्त घर अमाजा कुछ गहना खनी आई हस तेस तई ये विक्री कर कम हलेंगा
0: सी ना ना माँ ये गहना कौन विक्री
1: छो अन्य तू है माँ अलग अलग आई छा
0: पर गंगा
1: चुप कुछ न जब बन जल्दी सामान रखिए
0: खैर तू मजबूर थी करी तई ये सही चलो महला करो
1: बुद्ध बन पर थोड़ा जल्दी अच्छी जाए समझे ना मुझे अकेले डप थो लगे रमेश उन्हें नौकरी जी छाती
0: मुखे कौन मिली
1: पर तू तो चयो थी तो तू टेस्ट में अवल आयो आई तो की जरूर मिलंदी
0: हाँ पर उन ला बिन हजार की जमानत की जरूरत हुई जा मुहट को ना है
1: तपो है हानि छा थी दो
0: मुझे अगे यहां पे तहर करी है यो ही सवाल थो अजे त हानि छा कजे सोचा पियो त हन कदम खण खा कुछ सोचन गुर्जे इन छह महीनन में मु केतरी बेइज्जती सठी आए कहन न खसीस नौकरन पुठिया रलियो आया केतरी न खुशामत कई अथम पर सवाल निराशा जे कुछ भी न मिलो है मां तो दुनिया का तंग अची चुको आया मां तो जिंदगी

0: कह रहा है?
1: माँ, दरवाजा खोल।
0: रमेश है तो आज बड़ी शराब पी तो आए।
1: हाँ पी तो रहा था। तुम कह रहा ही पूछने वाली।
0: पर तू तो वचन दिनो हो तो तू शराब को ना पियेंदे।
1: वचन दिनो हो दिनो हूँ तो मां तो बेवकूफ आया। खबर ना है कह रहा हो बता सु बता वचन थो दी दो बता। एक दिन तो सा प्यार जो वचन कयम त उनके निभाण ला तोखे साम करे भटकंडो तो रहा। पर केस था आखिर प्यार के सहारे कोई केतरा दीजिए तो गंगा भगवान इंसान के पेट दो उनके भरण ला खपे रोटी। इन शरीर के ढकन ला कपड़े की जरूरत है रहन ला मकान। ये प्यार मोहब्बत असाके रोटी कपड़ा मकान कौन तो दे सके। दुनिया के सभी दुखन के भुलान मु शराब जो सहारो जैके पी मुखे कुछ वक्त ला राहत थी मिले। तो मुखा मुझे यो सारो भी फिर थी चाहिए के त्री न खुद मतलबी और पाई।
0: रमेश तू इच्छा जी रहे हो
1: तो मुखा मुझे घर छड़ायो माइट छड़ायो हिंर ये शराब जेको मुझे दुखन दर्दन जो साथी आए तू मुखा शराब भी छड़ा थी चाहिए। ना मैं शराब पियर कौन छड़ी मां तोखे छदे सका थो पर शराब तू मुझे दुखन जी जरा मां तोखे छदे दिस पर शराब जो मुझे दुखन के मुखा परे भजाए तो मां न छदे दिस।
0: रमेश ये दुखे छा थी वे आए इतने सारे जंदर तू केतरो न बदल जी वे आए कले आज जे में दिठो थे केतरो कमजोर थी वे आए।
1: न मालूम वहा कहरी मन सही जद मां तोखे कजस ए तोखे प्यार कर लगस छा न हो मुझे घर में लखापति पी जो अकेलो पुत्र हर तरह जो आराम हो पर मां अंधो थी तुझे इश्क में घर का भजी ने ए तो मुखे न नर्ग में आने वित
0: तू समझी तो मु तो सब दोखो कयो है मां जबरदस्ती तुझे गले पई आयो मु तो पेजो घर छड़ियो आए मुझे घर में वरी कहरी कमी हुई तो सही घर छड़े हली चढ़ करे मुझे माइटन जी तो बदनामी थी आई
1: तुम जा माइट हिन सौदे में हुनन के कहड़ो घाटो पियो उचलो तो हूँ तुझे ला वर घर की तलाश ही तकलीफ हो चुका तुझे ला शादी में जेको लेज जन हा उन खा भी छुटा हिनन तो चाहो थे तो को बेवकूफ तुझे चक्कर में फासे तो हिनन के तो खा छुटकारो मिले मां सब समझा तो हिंदर मां वापस हलियो
0: मां
1: तोखे भी जेना खपे हली वही मुझे तो असा को वास्तो
0: रमेश तू इच्छा तो चाहिए तू मुझे यहाँ अकेलो चले कर हली वे थे पर तू तो मुझसे शादी गई है मां तो भी मने कौन लींद
1: मां जाना तो तू ये आसानी से मुझे पीछे कौन छदी पर कन खोले बुध मां तो के पान सा गर कौन रखंदस निकली वन में निकली
0: मां कौन लींद कैसे ताकत आज मुझे इन घर में बाहर कढी
1: तोखे वणनो पोंदो तोखे वणनो पोंदो मां तो के ठिका दे कदम निकली वन अम्मा।

0: उठो, अंधियारी तूफानी रात आए, मैं अकेले समुद्र के किनारे बिठी आया, समुद्र में भयानक छोलू नाच करी रही हूँ आयन, एतरे में है कलहर मुझे वधी, है मुखे बिच समुद्र में की देवे, कौन सी बचाने की पूरी कोशिश कही है माँ बस सब बेकार गई, ये लगो तो वाले रूम के समुद्र में कोमल छती थी, अम्मा, उस तो समझ से देखे माँ एक अभी छोड़ी उठी ऐ उन्हें मुझे वापस आने किनारे से दे दो अम्मा तेजी दिए बुढ़ने बुढ़ने बची हुई है अम्मा अम्मा ये तू बनी अम्मा तू बन पिंजी थे वापस किनारे ते अची रही है मेरे को खतरों को ने तू बन अम्मा तू बन रमेश अची रहा है रमेश अची रहा है पर मैं माँ को नहीं दस
1: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे तव्हां नाटक वापसी ॿुधी रहिया हुआ हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं परॾेही वज़ीर डॉक्टर एस जयशंकर जो चवणु आहे त पाकिस्तान सां लाॻापा तॾहिं वधाए सघजनि था जॾहिं माहौल दहशत दुश्मनी ऐं तशद्दुद खां आजो हुजे नई दहलीअ बैन अल-अक़वामी पाणीअ में महफ़ूज़ ऐं बिना रुकावट जे नेविगेशन जे पंहिंजे सॾ खे वरिजायो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ में कामयाबीअ जी उमेद सां आलमी सतह ते कचे तेल जूं क़ीमतूं घटिजी वयूं आहिनि कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में अॼु सुबुह फाइनल में जॻहि बणाइण लाइ अश्मिता चालिया जो मुकाबलो हम वतन रक्षिता रामराज सां थींदो

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो 6:30 वॻे। तेसीं ताईं ॾींदा मोकल, सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर ट्रुक ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुने प्रभाकर नारायण पाठक के गाए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में

0: सुषमा आ गए आज हम दोनों फिर से एक बार अपने दोस्तों से बात करने।
1: बिल्कुल सही। और देखिए हमने थोड़ा सा इंतजार भी करवाया क्योंकि देखिए इतनी खुशनुमा सुबह है।
0: हाँ,
1: तो।
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना इंतजार का जो मजा होता है बहुत ही मीठा होता है।
1: जी जी बिल्कुल सही। और ऐसे दिल्ली में तो सच में मौसम इतना सुहावना हो रहा है और मुझे लग रहा है कि देश के बाकी हिस्सों में भी यही हाल होगा।
0: हाँ, यानी कि आपको कहीं पहाड़ों में अब जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली वालों तो उठ जाइए, गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय हो चुका है। कुसुम और सुषमा आ चुके हैं आपसे बातें करने के लिए और दिल्ली का हाल जानने के लिए। और आप सभी जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, बताइए कैसा है वहां का हाल। कुछ समस्याएं भी होंगी, कुछ उलझने भी होंगी, सभी पर बात करेंगे और साझा करेंगे। और साझा जब कर लेते हैं ना हम अपनी उलझने और मुश्किलें, तो वो आसान लगने लगती है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों हम भी चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं iprediodaily@gmail.com पर।
0: जी हाँ, iprediodaily@gmail.com पर अपनी बातें लिख भेजिए हमें।
1: बिल्कुल सही। और इस बातों का सिलसिला और सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ साथ जो हमारे अच्छे अच्छे खूबसूरत गीत होंगे
0: वो और उस मजे को बढ़ा देंगे भाई।
1: वो इलायची और अदरक का काम करेंगे।
0: हाँ, मतलब चाय मसाला का।
1: बिल्कुल सही। तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में।

0: तो मस्त पवन के इस गीत के साथ में हमारे सारे श्रोता भी मस्त हो गए हैं अपना संदेश लिखने में।
1: बिल्कुल सही। और इतना खूबसूरत गीत, हम कोशिश करते हैं कि अपने गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में अच्छे अच्छे नगमे चुनकर लाएं, ताकि हमारे श्रोता जो सुबह सुने ना, उनका मूड एकदम से अच्छा सा बना रहे।
0: और भाई हम अपने बहुत ही अच्छे मूड से गीत चुनते हैं आपके लिए, ताकि आपका मूड भी अच्छा हो। ये जो गीत आपने सुना ये था फिल्म बावर्ची से, और आवाज थी लता मंगेशकर की। तो ये जो आवाज और साज का कमाल था ये तो हमने आपको सुना दिया, लेकिन आप भी अपना कमाल दिखाइए, बताइए आपके शहर में इन बारिश के दिनों में क्या क्या चल रहा है। कहीं तो बहुत सारी पानी भर गया होगा, मानते हैं आपने छुट्टी कर ली होगी, वर्क फ्रॉम होम कर लिया होगा, और उम्मीद करते हैं कि उससे आपको थोड़ी सी समस्या भी आ रही होगी, क्यों सुषमा?
1: बिल्कुल सही। और देखिए, हम दिल्ली की ही बात कर रहे थे, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर भी बारिश के बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और मुझे लगता है कुसुम कि इसके लिए काफी हद तक हम भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर लोगों की ये आदत है कि कुछ भी प्लास्टिक लेंगे वो यूं ही फेंक देंगे, जिससे नालियां बंद हो जाती हैं। तो ये
0: ड्रेनेज सिस्टम में रुकावट आ जाती है कहीं ना कहीं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो रुक जाता है और पानी फिर भर जाता है, जिससे वाटर लॉगिंग होती है और हम लोगों को, आपको, हमें सभी को समस्या होती है। तो कृपया इस मुहिम में साथ दें, कहीं भी कचरा ना फेंके खुले में, और जहां डस्टबिन बने हों वहीं फेंके। अपने घर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, तो आजकल एमसीडी या जगह जगह ये सुविधा दी गई है कि घर के पास ही कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें ही कचरा फेंके।
1: हाँ जी, और बिल्कुल, कई बार हमने, आपने देखा होगा कि हम सरकारी तंत्र को कोसते रहते हैं कि वो काम नहीं करता, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, आप भी सड़क पे चलते हैं, कि कूड़ा अगर फंस गया है सड़क में, जहां पानी निकासी है पानी की, तो लोग निकल जाते हैं, पानी भरता रहता है, लेकिन थोड़ा सा रुक कर उस नाली का कूड़ा हटाते नहीं है।
0: हाँ, और वहां पर रुक एक बार ये जरूर कह देते, देखिए देखो ना क्या पड़ा है।
1: बिल्कुल। तो थोड़ा सा, आप चाहे आप शहर में रहते हो, गांव में, जहां पे आपको लगा कि बरसात के मौसम में वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी जमा हो चुका है, तो उसकी निकासी का पूरा प्रबंध करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, जो कि हम दिल्ली जैसे शहरों में, आज भी हम एक जगह का देख रहे थे, नाम लेना हम उचित नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जहां सड़कें धंस गई वाटर लॉगिंग की वजह से, और ये सब होता है जब पानी जमा हो जाता है।
0: और कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो इस ये जो जल ईश्वर आपको दे रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए भाई, इकट्ठा कीजिए, और इसके जरिए क्या है कि जब पानी की कमी होगी तो यही हमारे पौधों में और कहीं ना कहीं हम सभी के काम आएगा।
1: जी, और इस पर हम एक खास प्रोग्राम कर चुके हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत गीत, इस गीत के बाद और बातें होंगी। तो आप सुन रहे गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चाय की चुस्कियों के साथ इस प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं।
0: और ये गीतों भरी गुड मॉर्निंग है कुसुम और सुषमा के साथ।

0: मैं ये कहूंगी, बोलो सुषमा, बोलो कुछ तो बोलो, क्योंकि भाई देखिए ना, जीवन जो है ना हमारा बहुत ही, क्या कहें, लंबा है या छोटा है, पर ये कहेंगे जितना हो उतना अच्छा होना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: देखिए, बताए, कई तो कहते हैं कि जिंदगी बड़ी छोटी है, कई कहते हैं
0: हाँ
1: बड़ी लंबी है, कट ही नहीं रही है।
0: हाँ
1: मुझे लगता है जिंदगी बहुत खूबसूरत है और
0: बहुत
1: इसे
0: ही ज्यादा
1: काटना
0: है,
1: नहीं बल्कि अच्छे से जीना चाहिए।
0: बिल्कुल जीना चाहिए। और मैं कहती हूँ जितनी भी है ना उतनी खूबसूरती से जिए, अपने जितने मन के काम है वो करें, क्योंकि देखिए चिंता तो हम कल की करते हैं लेकिन पता हमें पल का नहीं होता।
1: बिल्कुल सही है, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला।
0: भाई हम तो बोलते ही सही हैं, और जैसे कि एक बार फिर से बता दें, ipradiodelhi@gmail.com पर आपके संदेशों के इंतजार में कुसुम और सुषमा हैं आपके साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, और इसमें चला रहे हैं आपके पसंदीदा गीत और बातें कर रहे हैं आपकी पसंदीदा, और वो हमारी भी पसंदीदा है,
1: हाँ, आज सिर्फ फर्क कितना सा है कि आज हम रविवार की जगह मिल गए हैं शनिवार
0: शनिवार को। जी
1: को।
0: बिल्कुल
1: जी, तो हम यही कहेंगे कि जिंदगी के एक एक पल को जिए, उसे ढोए नहीं, क्योंकि
0: हाँ
1: अक्सर हम अपने दोस्तों से ये सुन लेते हैं जिंदगी को ढो रहे हैं, और सच
0: हाँ
1: में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो ऐसे बोलता है कि ढो रहे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: भाई, जिंदगी एक पहेली की तरह है, और कहते हैं कि इसको उलझाए ना सुलझाए, जितना हो अच्छे से जिए और औरों को भी शामिल करें अपने इस जीवन में, ताकि वो भी अपने जो चीजें हैं आपको बता पाए और सुलझ पाए।
1: जी हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अकेले रहेंगे तो बिल्कुल अकेले ही पड़ जाएंगे, तो समाज में रहते हैं, साथियों को भी
0: बिल्कुल
1: साथ में लेके चलना
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है। आप
0: जी
1: अपने आसपास लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, खुशियां बांटें और खुशियां पाएं भी।
0: बिल्कुल। तो सुषमा, जो अगला गीत किया हुआ है हमने,
1: सोनू निगम की आवाज में।
0: हाँ तो सुनवा दे।
1: जी बिल्कुल, मैंने देखी दोस्त, सुन रहे हैं, हमारा म्यूजिक शुरू हो
0: क्या
1: चुका
0: बात
1: है।
0: है,

0: क्यों, कैसा लगा हमारा ये गीत भाई? कुछ तो बोलिए, कुछ कह दीजिए, वो बात जो आपके मन में आपको उथल पुथल मचा रही है आपके मन में, या फिर अपने किसी दोस्त को कह दीजिए, या फिर अपने फैमिली मेंबर में किसी को बता दीजिए, लेकिन मन में कोई बात मत रखिए, क्योंकि मैं और सुषमा तो भाई सारी बातें कह देते हैं। जैसे कि अभी ये हमने थोड़ी देर पहले जैसे कि बात की जिंदगी के लिए कि इसको ढोए नहीं इसको जिए, वैसे ही मन की जो बातें हैं उनको मन में रखकर बोझ ना डाले, कह दीजिए किसी से भी।
1: बिल्कुल सही। और दोस्ती का देखिए, ये जो दोस्ती है ना, ये इतना खूबसूरत रिश्ता है कि इस रिश्ते में कोई बंधन नहीं होता है
0: बिल्कुल
1: जी। और खुल के दोस्ती तो होती है जिनसे हम खुलकर बात कर पाते हैं, वरना तो हम हिचकते ही रहते हैं ना।
0: हाँ, और दोस्त ही वो जगह है बात कहने की। किसी भी दोस्त के कान में आप हल्के से कह दीजिए, यार बात करनी है, एक छोटी सी टेंशन में हूँ, तो बस उसके बाद वो दोस्त आपके लिए इतना पैनिक हो जाता है, आपके लिए इतना सोचता है कि ये जो रिश्ता है ना, इससे अच्छा रिश्ता मैं कहती हूँ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर आप अपनी बातें खुलकर कह पाते हो, बगैर सोचे समझे कह पाते हो। मतलब आपको सोचना समझना नहीं, क्या अच्छा कहा, क्या बुरा कहा, कम कहा, ज्यादा कहा, बस आप कह देते हो, और जब कहना शुरू करते हो तो कहते ही जाते हो, और सामने वाला आपकी बात सुनता जाता है। क्यों सुषमा?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगला जो गीत है, उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों को जरूर पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक उनके लिए संदेश है, क्योंकि ये सावधानी जो है ये हमें जरूर बरतनी है। और रिजर्व बैंक जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि ग्राहकों को जागरूक किया जाए, और जो आजकल बहुत सारे फ्रॉड
0: हाँ
1: केसेस हो रहे
0: जी
1: हैं या कोई
0: बिल्कुल
1: भी चेंज बदलाव आता है, तो उसके प्रति लोग जागरूक रहें, सावधान रहें और
0: सतर्क
1: सुरक्षित रहें,
0: रहे।
1: सतर्क रहें। तो ये लीजिए, ये खूबसूरत, ये जो बहुत बेशकीमती जानकारी है ये सभी साथियों के लिए।
0: बिल्कुल
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये जो घर आंगन है ये बहुत ही खूबसूरत गीत, और हम सबका घर आंगन यूं ही फलता रहे, फूलता रहे और ऐसे ही हम सब सुरक्षित रहें और सच्चे दिल से रहें, स्वस्थ रहें। तो हमारे एक साथी हैं जिन्होंने सुबह सुबह हमें एक संदेश भेजा है, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज वर्मा और साथ ही इन्होंने अपने साथी शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से इन्होंने लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश को भी अपने इस संदेश में शामिल किया है। इन सब की तरफ से ये भेजा है हमें संदेश आर्यन वर्मा ने।

0: अंदर जाकर आराम मिलता है ना, वो लगता है कहीं नहीं है वो आराम।
1: बिल्कुल सही। और सुबह की जब शुरुआत करते हैं ना, तो अपने घर आंगन को ही हम साफ सुथरा करके निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा घर हमेशा सुरक्षित रहे और शांतिपूर्ण बना रहे।
0: और देखिए ना, हम अपने घर के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, अच्छा बनाने के लिए उसे सजाते हैं, संवारते हैं, साफ सफाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं। और जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपने घर में कोई एक अच्छे से तोहफा लेकर आते हैं।
1: बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
0: जब हम किसी और से बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि एक ही लाइन, आइएगा ना हमारे घर।
1: हाँ जी।
0: तो ये घर आंगन तो वो चीज है जो कोई नहीं छोड़ सकता और किसी से छूटता भी नहीं है। हर समय आप जब ऑफिस में थक गए, कहीं और थक गए हैं या काम से थक गए हैं, तो एक ही चीज याद है, यार अपने घर चलते हैं।
1: जी। और अभी तो फिलहाल हमारा घर आंगन जो है, जो ठिकाना है, वो है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। और उसकी मेल आईडी जो है, ठिकाना है, जिस पर अपने संदेश भेज सकते हैं, ipradiodelhi@gmail.com।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि ये है हमारा वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस जहाँ से हम आपस कनेक्ट हो रहे हैं।
1: जी। और आप हमारे घर में मेहमान भी हैं, सदस्य भी हैं, और यूं ही आप बने रहें और अगले जो प्रोग्राम आएगा हमारा, अगला 10:10 पर, उस कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़ें। तो तब तक के लिए मुझे और कुसुम जी को दीजिए
0: इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और अब सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषय शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
6: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन एन एकेडमिक एनवायरमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
4: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
7: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
8: We have seen the comments.
9: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
8: Regulate the flow of foreign funds.
4: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च

0: प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
1: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
4: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
5: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथानामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
6: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। न्यूज पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मॉनसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies

0: है, प्योर नहीं होता है, इसको हम मैनेज कर लेते हैं और इससे जो हार्मोन नहीं बन रहा है हम बाहर से दे देते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है और एकदम नॉर्मल लाइफ लीड करता है।
1: तो रेगुलर चेकअप्स कराने पड़ते हैं
0: शुरू के टाइम में, जब तक बच्चा ग्रो कर रहा है हमें बार बार चेक करवाना है, लेकिन एक बार बच्चे की जैसे ग्रोथ पूरी हो गई है, 15-20 साल का हो गया, तो साल में एक बार थायराइड हार्मोन की जांच करवाना जरूरी है और उससे हमें पता चलता रहे कि दवाई की मात्रा जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं।
1: जी जी, एक और बहुत जरूरी होता है डॉक्टर साहब, जब हम बच्चों की बात करते हैं ग्रोथ, तो अगर किसी बच्चे की ग्रोथ सही नहीं है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, तो थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो एक तो कारण आपने बताया है कि थायराइड भी इसका एक कारण हो सकता है, क्या और भी कोई ऐसा हार्मोन होता है जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में, जैसे आप लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जिसके लिए सचेत होना चाहिए?
0: हाँ जी बिल्कुल
1: जी जी।
0: दूसरा, जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब हम फिजिकल ग्रोथ से बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चा लंबा होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, सो ये लंबाई के लिए जरूरी है कि थायराइड हार्मोन ठीक होना चाहिए। सो इसके लिए केवल थायराइड हार्मोन ही जिम्मेदार नहीं, दूसरा बड़ा जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, जो कि हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से सिक्रीट होता है, और ये ग्रोथ हार्मोन है जो बच्चे की लंबाई बढ़ाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में किसी भी तरह की कोई कमी रहती है, पूरा सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो बच्चे की लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, बच्चा छोटा रह जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा बोना हो गया है। सो इसको भी हम आसानी से डायग्नोस करके इसका इलाज शुरू कर सकते हैं और बच्चा एकदम से वापस ग्रो होना शुरू हो जाता है और ऐसे लंबाई बढ़ती है बच्चे की जैसे लगता है कि खींच के लंबा कर दिया है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी के अलावा और भी कारण हो सकते हैं कि जिनसे बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई बीमारी है, जैसे बच्चे में खून की कमी है या पेट में कीड़े हैं या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, छाती का इन्फेक्शन है, पेशाब का इन्फेक्शन है, और या किसी भी ऑर्गन की, किसी भी लीवर, किडनी की, हार्ट की, किसी भी तरह की बीमारी है, तो बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो शरीर में एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है, तो वो एनर्जी यूज हो जाती है उस बीमारी से लड़ने में, सो ग्रोथ के लिए बचती नहीं है, इसलिए ग्रोथ डिले हो जाती है। सो इसमें सबसे जरूरी है कि अगर बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो हमें ये पता करें। आमतौर पर हम माता पिता को ये बताते हैं कि 4 साल के बाद आप हर बर्थडे के दिन बच्चे को नाप लीजिए कि उसकी लंबाई कितनी है, और हर बच्चा कम से कम 5 सेंटीमीटर 1 साल में बढ़ना चाहिए। अगर वो 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता है तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है और इसमें नजदीकी डॉक्टर से एक बार या बच्चों के जो डॉक्टर उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, उनके लिए आसान है, वो ग्रोथ चार्ट्स आते हैं, उन पे लंबाई लगा के देख लेते हैं कि ये बच्चा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। तो उन माता पिता के लिए जरूरी है कि जिनके बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं 4 साल के बाद, हर साल आप नाप लीजिए, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको तुरंत कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर आपका बच्चा 1 साल में नहीं बढ़ा है तो थोड़ा सा चिंता का विषय, आप अपने चिकित्सक से सलाह ले लें।
1: जी, तो ये तो आपने लंबाई की बात की डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि उनको जब हम सही दवाई दे देते हैं तो लंबाई बढ़ जाती है, तो किस उम्र तक बढ़ सकती है, ये भी एक प्रश्न है।
0: हाँ,
1: कि वो कभी भी आपके पास आए तो ये समस्या का समाधान पा सकते हैं या कुछ उम्र तक ही हो सकता है?
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि किस उम्र तक बच्चों की लंबाई हम बढ़ सकती है, कि हम उसमें जांच करें, इलाज करें, लंबाई बढ़ जाएगी। ये डिसाइड होता है, उसकी उम्र से नहीं डिसाइड होता, ये डिसाइड होता है कि उसके शरीर का डेवलपमेंट किस स्टेज में, डेवलपमेंट से मतलब उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट है कि एक लड़का है वो आदमी बन रहा है या एक लड़की है वो औरत में कन्वर्ट हो रही है, और जैसे ही उनका ये डेवलपमेंट पूरा हो जाता है उनकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। सो आमतौर पे कहते हैं कि एक लड़की की जो लंबाई बढ़ती है वो 14-15 साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है और लड़के की 16-17 साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है। ये एक आमतौर पे एक एज है, लेकिन अगर डेवलपमेंट जल्दी शुरू हुआ है तो जल्दी भी बंद हो सकती है और डेवलपमेंट लेट शुरू हुआ है तो लेट भी बंद हो सकती है। सो ये एक रफ कट ऑफ है जिसके बाद लंबाई यूजुअली नहीं बढ़ती है।
1: जी, तो आपने थायराइड बताया, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बताया, क्या बच्चों को जन्म से डायबिटीज भी हो सकते हैं?
0: बिल्कुल, बच्चों को डायबिटीज भी हो सकती है, हालांकि ये केसेस बहुत कॉमन नहीं है। जो हम आम पब्लिक में देखते हैं वो ये कहते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज है। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज बहुत कम होती है, टाइप 1 डायबिटीज अधिकतर होती है। इसका मतलब है कि आपके जन्म से ही इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो कुछ केसेस में हमने देखा है कि जन्म पे भी डायबिटीज हो जाती है, जिनको इंसुलिन इंजेक्शन देना होता है 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 3 साल, कभी भी डायबिटीज हो सकती है। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकती है। सबसे जरूरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आजकल हमने ये देखा है कि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, उस मोटापे बढ़ने की वजह से बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज भी होनी शुरू हो गई है। सो ये वो चीज है जिसको हम आसानी से बचा सकते हैं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, खाने में घी तेल फैट हम कम करके उनका अगर मोटापा कम करेंगे तो वो डायबिटीज जो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज हो भी गई है तो वापस भी ठीक हो सकती है, एकदम नॉर्मल भी शुगर रह सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें उनका लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा।
1: तो मोटापे से इसका संबंध है।
0: हाँ जी
1: जी। तो और भी कोई ऐसी समस्या है, जैसे हमने 3 समस्याओं पर आज बात की, तो डॉक्टर साहब कोई और ऐसी समस्या हो तो जरूर हमारे श्रोताओं को बताएं उसके बारे में।
0: हाँ जी, दूसरा होता है कि बच्चों की एक निर्धारित एज में उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू होता है, जहां लड़का है वो आदमी में कन्वर्ट होना शुरू होता है, लड़की है वो औरत में कन्वर्ट होना शुरू होती है। ये सारे चेंजेस हैं जो हार्मोन से कंट्रोल्ड होते हैं, जिनके लिए अलग अलग हार्मोन्स है, वही ये चेंजेस शुरू करते हैं, वही ये कन्वर्जन कंप्लीट करते हैं। सो इन हार्मोन में किसी में भी सिक्रेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी में मान लीजिए 12-13 साल हो गई और डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुआ है, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि डेवलपमेंट 9 साल पे शुरू होना है वो 7 साल पे शुरू हो गया है, अगर लड़की है तो 7 साल पे उसके छाते का विकास शुरू हो गया है, महावारी शुरू हो गई है जो कि एबनॉर्मल है, हमें उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सो इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं कि प्यूबर्टी अगर एक टाइम से पहले होती है तो भी एबनॉर्मल है, और प्यूबर्टी एक टाइम तक नहीं शुरू होती है तो भी एबनॉर्मल है। सो इन दोनों के लिए हमें हार्मोन के टेस्ट करके पता करना होता है, और अगर जल्दी शुरू हुई है तो भी हम इलाज करके उसको रोक सकते हैं, और अगर लेट तक नहीं शुरू हुई है 13-14 साल तक नहीं शुरू हुई है तो भी हम उसकी जांच करके उसका इलाज करते हैं और प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। सो प्यूबर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी काफी कॉमन है इस एज ग्रुप में, और जैसे मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में तो उसका नतीजा यह है कि बच्चों के प्यूबर्टी डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है। लड़कियों में देखा गया कि अगर लड़कियों का वजन ज्यादा है प्यूबर्टी शुरू होने के टाइम पे तो उनको प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है, 6 महीने जल्दी शुरू हो जाती है कि 9 साल पे शुरू होने तो 8.5 साल पे ही शुरू हो जाती है। इसके विपरीत लड़कों में देखा गया कि अगर वो मोटे हैं तो प्यूबर्टी उनमें लेट शुरू होती है। सो इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि हार्मोन से गवर्न होती है, इसका हम आसानी से पता करके इलाज कर सकते हैं।
1: जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने बताई। और प्यूबर्टी एक ऐसी उम्र होती है किशोर अवस्था जब बहुत हार्मोन्स का बदलाव होता है, और ये भी कहें कि एक वेव एक फ्लड होता है शरीर में हार्मोन्स का, तो उस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो बचपन में जो हमने बात की और एक प्यूबर्टी में, तो जरूर एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें विस्तार से बात करनी होगी, तो जरूर हम अगले कार्यक्रम में आपके साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज हम अपने कार्यक्रम में इतना ही ले रहे हैं कि हार्मोन की जो समस्या है बच्चों में, जो छोटे बच्चों में टिल प्यूबर्टी क्या क्या होती है। एक चलते चलते और सवाल दिमाग में आ रहा है डॉक्टर साहब कि आपने बोला कई समस्याएं इसमें जो हमने बात की वो जन्म से भी हो सकती हैं, तो क्या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस ऐसी सावधानी गर्भवती महिला ले सकती है, चाहे खान पान की हो चाहे एक्सरसाइज हो या कुछ भी और हो, जिससे कि इस तरह के चांसेस को कम किया जा सके?
0: सबसे पहले तो गर्भवती महिला को यह जानना जरूरी है कि जब वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें ऐसी दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी है, ऐसा कोई इलाज जिसकी सेफ्टी प्रूव नहीं है। हो सकता है कि इसमें से कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ चूर्ण या पुड़िया लें जिनका कुछ पता नहीं है, उनमें हार्मोन की दवाइयां मिली हुई है तो वो बच्चे के लिंग पे असर कर सकती है, बच्चे का ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है कि जिसमें हमें पता नहीं हो लड़का है या लड़की है। सो अवांछित दवाइयां हैं वो बिल्कुल नहीं ले, साधारण खाना खाएं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि प्रेगनेंसी में हम डायबिटीज होने का खतरा कम कर सकें। और बाकी जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बदलाव इससे खाने पीने से या फिजिकल एक्टिविटी से नहीं होता है, अगर डायबिटीज मदर को नहीं है तो एकदम बच्चे पर एकदम नॉर्मल रहेगा।
1: जी, तो आज हमने बात की हार्मोनल इश्यूज इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे इनको पहचान कर इनका इलाज कराया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में रहे डॉक्टर राजेश खड़गावत, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याओं पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावट से। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं।

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक तनाव के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कई तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में होने वाली मानसिक समस्याएं, उनके लक्षण, निदान और होम्योपैथी से उपचार की विधि के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषज्ञ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर बीएल मीना। भेंट करता है श्वेता शर्मा।
1: बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे में समस्याएं और मानसिक बीमारी में क्या अंतर है और इसका क्या इलाज होता है, यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर बीएल मीना जो होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों में मानसिक बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहला हमारा सवाल है कि आखिर बच्चों में मानसिक बीमारी कितने तरह की होती है।
2: मैं ये बताना चाहूंगा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 10-20% बच्चे और बड़े लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। आप इंडिया में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ और मोर देन 20 करोड़ से अधिक मानसिक बीमारी से लोग ग्रस्त हैं। अब आपने पूछा कि कितने प्रकार की बीमारियां होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, OSD, OCD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, फोबिया जिसमें बच्चों में वो शक करने लगते हैं, उनमें कई तरह के डर पैदा हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं
1: जिसकी वजह से वो हकलाने भी लगते हैं।
2: बिल्कुल हकलाने लगते हैं, स्कूल जाने से भी डरने लगते हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
1: क्योंकि बच्चे अक्सर शोर मचाते हैं या पेट का दर्द, सिर दर्द ये रहता है, स्कूल नहीं जाना, इस तरह की शिकायत करते हैं, ये सारी चीजें।
2: मैं आपको इसमें जो सिम्टम्स बताएंगे उसमें आप जानोगे कि हम कैसे पहचाने बच्चों में मानसिक बीमारी को कैसे पहचाने। आप देखेंगे कि बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन आने लगता है, वो अब उनका जो व्यवहार है वो बात बात में गुस्सा करने लगते हैं, अपने आप को वो अलग दूर कोने में बैठने को मजबूर करते हैं, या अलग जब भी गेस्ट लोग आते हैं तो वो अलग रहते हैं, बच्चों में खेल नहीं रहे होते हैं, तो ये उनका व्यवहारिक परिवर्तन आने लगते हैं। दूसरा उनका भूख या नींद के पैटर्न में बदलाव आने लगते हैं। आप देखेंगे वो या तो उदास हैं या चिंता हो रही है उनमें, या उनमें एक अलग तरह का डर है, तनाव है, उनके आत्मविश्वास की कमी है। पेरेंट्स के सामने कुछ भी बोलेंगे, पोइम भी बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन जैसे ही कोई बाहर का कोई बंदा आ गया तो उसके सामने वो नहीं बोल पा रहे, तो उनके आत्मविश्वास की कमी है।
1: जी तो सर ये समस्याएं जो होती हैं डॉक्टर साहब, ये बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किस कारण की वजह से होती है?
2: इसमें बहुत सारे कारण हैं। इसमें आप पाएंगे कि आनुवंशिक बीमारी भी है ये।
1: अच्छा।
2: हाँ, कुछ हद तक ये ट्रांसफर भी होती है। इसके अलावा मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं होता है, नींद अगर प्रॉपर नहीं ले रहे, खान पान उनका ये है। दूसरा एक ट्रोमा एक बहुत बड़ा कारण है। ट्रोमा में हमें मालूम ही नहीं चलता कि बच्चे को कब ट्रोमा इन इंजरी, वो भावनात्मक इंजरी भी हो सकती है, आपकी शारीरिक इंजरी भी हो सकती है, जिसके कारण से बच्चों में मानसिक बीमारी हो सकती है। परिवार में कई ऐसी गतिविधियां होती हैं, पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे, रिलेशन नहीं चल रहा, उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। बच्चों में देखो अब स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें साइबर बुलिंग हो जाती है, उनमें झगड़े हो जाते हैं। दूसरा आप सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया में पाएंगे कि बच्चे सोशल मीडिया के साथ बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि उनको बच्चों को अपना मोबाइल दे दिया और माएं जो हैं वो अपना काम में लग गई, पेरेंट्स भी फादर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि जो ट्रॉमा कब होता है, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि बच्चे को ट्रॉमा कब हो गया। आप जब जो स्क्रीन देख रहा है, स्क्रीन में कौन सी मूवी देख रहा है, कौन सा सीरियल देख रहा है, कौन सी रील देख रहा है, उस रील में ऐसा कौन सा सीन आ गया जिसकी वजह से उस बच्चे को मानसिक ट्रॉमा हो गया। जो मानसिक ट्रॉमा आज हुआ है उसका लॉन्ग टाइम तक उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे करके मानसिक रोग का शिकार हो जाएगा।
1: जी क्या हम ये कोरोना के टाइम पर भी जो बच्चे रहे हैं, छोटे बच्चे रहे हैं जिन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिला उस वक्त, उनमें ये सारे ट्रॉमा के जो लक्षण है वो देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं?
2: बिल्कुल ऐसा नहीं कि उन्हीं में ज्यादा मिलता है, एक्चुअली वो भी एक तरह का ट्रॉमा था। उस ट्रॉमा से क्या हुआ कि पेरेंट्स भी अफेक्ट आया, पेरेंट्स ने बच्चों को बाहर जाने से रोका, उनको एक टेरर उस घर के अंदर पैदा हो गया कि नहीं कोरोना आ गया है, तो वो ठीक असर बच्चों में पड़ा। उस बच्चों में पड़ने की वजह से ये हुआ कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया, बाहर जो सोशलाइजेशन जो होना था वो रुक गया, तो धीरे धीरे बच्चों ने एक अपनी सेल में चले गए। इससे ये मानसिक बीमारी बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही इसने अपने पैर फंसाया।
1: तो होम्योपैथी में इस बीमारी का क्या इलाज है?
2: होम्योपैथी में देखो किसी भी बीमारी का होम्योपैथी में पर्टिकुलर डिजीज के नाम से हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी में दवाइयां सिलेक्ट की जाती है।
1: जी
2: एक होम्योपैथ ओवरऑल पूरे जो पेशेंट जो आया है उसको ओवरऑल स्टडी करता है, ओवरऑल सारे सिम्टम्स लेता है, लेने के बाद में हम किसी फाइनल मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, और जब वो फाइनल

0: मेडिसिन का सिलेक्शन, तो वो ओवरऑल आइडर ले, उसमें मानसिक बीमारी हो, किसी को फिजिकल डिजीज हो, कोई भी जो डिजीज हो, सारी चीजों को वो मेडिसिन कवर करती है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनमें लक्षण तो इतने आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपने जैसे बताया है कि आपको पूरा ओवरऑल उसकी स्टडी करनी पड़ती है, तो एक छोटे से बच्चे की आप किस तरह से स्टडी करते हैं ताकि आप उसे एक दवाई दे सके होम्योपैथी की?
0: छोटे बच्चों में हमें एक फाइन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। वो फाइन ऑब्जर्वर सबसे पहले ऑब्जर्वर पेरेंट्स को बनना पड़ेगा, उसके बाद में हम स्कूल के टीचर्स को बनना पड़ेगा, उसके बाद में हमारे फिजिशियंस का रोल आता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे का व्यवहार पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, वो क्या सोशलाइज हो रहा है, क्या बच्चे जो उसके जो घर में और अदर बच्चे उनके साथ खेल रहा है, क्या वो अपने टॉयज को चीजों को शेयर कर रहा है, क्या वो आप जो कुछ कह रहे हो उस पर अटेंशन दे रहा है, क्या उसका रिएक्शन आ रहा है। अगर ये सब चीजें अगर नहीं हो रही है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ बच्चे में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। फिर हमें उसको कॉज रूट तक जाना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या पेरेंट्स हैं, क्या उसकी वजह सोशल मीडिया है, क्या उसकी वजह उसके दोस्त लोग हैं, क्या उसके जो भाई बहन हैं, तब जाकर हमें उसको जाना पड़ेगा।
1: और ये कहा जाता है कि होम्योपैथी जो दवाइयां हैं वो असर करने में टाइम लगाती हैं, तो ये बात कहां तक सच है या क्या मिथ है?
0: नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। होम्योपैथी दवाई कहीं देर से असर नहीं करती है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि सोचो अगर हम बच्चे को अगर पेशेंट एज ए पेशेंट अगर हमारे पास आया है तो उसका जो उन्होंने ऑब्जर्व किया पेरेंट्स ने, या तो वो पूरे सिम्टम्स बताएं या डॉक्टर या जो फिजिशियन है वो उसको ठीक से ऑब्जर्व करें। अगर ठीक से ऑब्जर्व कर लेगा, अगर ठीक से डॉक्टर के पास सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, तो होम्योपैथी की मेडिसिन का सिलेक्शन बिल्कुल सटीक होगा। और सटीक होगा तो आप मेरा विश्वास करिए, इतनी फास्ट काम करती है कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे क्या हो सकता। कई ऐसे पेशेंट रहेंगे जो सोचेगा क्या मेडिकल हो गया। अभी मैं रिसेंटली बात करूं, एक पेशेंट आया था, उसका ये था कि कहीं अफेयर चल रहा था, वो उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसका सारा बिजनेस उसने ठप कर लिया और एक सेल में चला गया और वो सारी चीजें बंद कर दी उसने। उसकी सिस्टर मेरे पास लेके आई, पूरी हिस्ट्री बताई, हमने सिंगल मेडिसिन दी और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 10 डेज उसने कहा डॉक्टर साहब मैं, मेरे बिजनेस गाड़ियां ट्रांसपोर्ट का काम था, क्या मैं उस साथ चला जाऊं। तो इतना फास्ट।
1: कभी कभी बच्चे दवाइयां नहीं लेना चाहते या दवाइयां लेने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से आप दवाइयां देते हैं और किस तरह से अगर बच्चे बीच में ही दवाइयां छोड़ दें तो उसका क्या नेगेटिव असर होता है?
0: नहीं, होम्योपैथिक की ब्यूटी यही है कि होम्योपैथी में जब बच्चा आ गया और एक बार दवाई लेना शुरू कर दिया तो वो मीठी गोलियों के लिए पेरेंट्स और उसके बच्चे दोनों कहेंगे नहीं नहीं मीठी गोली के लिए चलो
1: जी।
0: अच्छा, और अच्छे से अगर हमने अगर उसको सिम्टम्स लिए हैं और अच्छे से अगर दवाई दी है तो नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट आ।
1: बिल्कुल। क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है, इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है?
0: रोकथाम के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो सोशल स्टिग्मा जो ट्रॉमा है हमें उसको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रोकने के लिए कि सोशल स्टिग्मा और जो ये जो डर है कि लोगों में एक तरह का डर है कि यार ये मैं बीमारी बताऊं या नहीं बताऊं, ये सबसे बड़ी वजह है। लोग बच्चे को या अपने को खुद को भी ये नहीं साबित करना चाहते कि मैं मानसिक बीमारी का रोगी हूं, मैं मानसिक बीमारी की दवाइयां ले रहा हूं, यही वजह है कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो हमें इस स्टिग्मा को, इस डर को हमें निकालना पड़ेगा
1: जी।
0: अगर हम निकालने के बाद में दवाई और साइकोथेरेपी अगर दोनों को साथ साथ लिया जाए तो ये बीमारी को हम जड़ से मिटा सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि समाज में काफी मतलब नेगेटिव नजरिया है मानसिक बीमारी को लेके, तो इस नजरिए को आपके नजरिए से कैसे हम दूर कर सकते हैं?
0: इस नजरिए को दूर करने के लिए हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इजीली साइकोथेरेपिस्ट मिल जाए, इजीली जो मानसिक रोगी है उसको अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो हम अर्ली इंटरवेंशन कर पाएंगे, जल्दी पहचान कर पाएंगे कि हाँ ये मानसिक रोगी है। अगर मानसिक रोगी है तो फिर उसको उनको साइकोथेरेपी और मेडिसिन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन दिया जाए तो ये बीमारी जड़ से जा सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे जिसकी वजह से जो बच्चों में मानसिक विकार हो रहे हैं वो दूर हो सके या फिर वो विकार आ ही ना?
0: इसके लिए मैं दो टेक्निक बताना चाहूंगा। दो टेक्निक में क्या, एक है एबीसीडी टेक्निक और दूसरी टेक्निक है परमा टेक्निक। आप एबीसीडी टेक्निक में आप जानेंगे कि एबीसीडी आप चार उनको याद रखिए। ए मींस है एक्टिविटी। आप देखेंगे कि कोई भी इंसिडेंट हुआ है वो एक्टिविटी में आता है, कि कोई भी इंसिडेंट हो जिसकी वजह से उसको वो विकार स्टार्ट हुआ, ये हुआ एक्टिविटी। बी फॉर बिलीव। बिलीव क्या है, जैसे ही कोई एक्टिविटी हुई उसका एक बिलीव सिस्टम में उसने नोट किया कि अरे उसने मेरी तरफ ऐसा देख लिया, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को धक्का मार दिया, तो जैसे उसका बिलीव क्या है कि वो मुझे ऐसा करना चाहता होगा, वो मुझे जानबूझ के मुझे हर्ट करना चाहते हैं।

0: करना होगा
1: जी।
0: ये उसका बिलीव सिस्टम है। ये बिलीव सिस्टम क्या है कि किसी पुराने पूर्वाग्रह होता है कि कोई किसी इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से उसको एक फिक्स बिलीव बनता है उसका। बिलीव आ गया। सी में क्या होता है कि उसका नतीजा क्या निकला, जैसे नतीजा ये निकला कि जिस उसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा आएगा, उसको एंगर होगा, उसका खुशी या दुख होगा, ये उसका नतीजा हुआ सी। डी में क्या होगा कि हमें इन तीनों चीजों के बाद में हमें अपने आप को जो पेशेंट है या डॉक्टर है वो उसको सलाह देगा कि आप उन तीनों चीजों पे एक क्वेश्चन मार्क लगाइए कि जो मेरा जो बिलीव सिस्टम था उससे अलग एक दूसरा पार्ट भी तो हो सकता है
1: जी।
0: हो सकता है आपने उसको स्माइल दी, उसने आपको देखा ही नहीं होगा, इसलिए उसने इग्नोर किया होगा
1: जी।
0: तो हमें जो डी पार्ट है डी पार्ट पे काम करना पड़ेगा। अगर डी पार्ट पे काम करेंगे तो हमारा ये जो मानसिक विकार है वो कम होंगे। दूसरी टेक्निक में परमा की बात कर रहा था, परमा इन दर्शन तीन दर्शन पॉजिटिव इमोशंस, हमें पॉजिटिव इमोशंस पे काम करना पड़ेगा कि जो हमारी खुशी के पल थे उन पे हमें काम करना है, उन्हीं के बारे में हम सोचेंगे, अच्छी भावना को सोचेंगे तो हमें एक पॉजिटिव भावना आएगी, हमें खुशी का इजहार होगा। दूसरा एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब कोई भी पल हो जो आपका वर्तमान है उसके अंदर आप एंगेज रहिए, खेल रहे हो तो जी भर के खेलिए, जीवन में खेलिए,
1: इसी पल में रहिए,
0: इसी पल में रहें, जी भर के खेलिए आप। दूसरा कोई काम करे तो जी भर के अच्छे से काम करिए। आर मतलब रिलेशन, रिलेशन न सिर्फ जो भी रिलेशन आपके हैं उन रिलेशन को आप अच्छे से पालिए, उनको जो भी रिलेशन है उसको आप प्रमोट करिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तो उसको एक आपका जो रिलेशन अच्छा बनेगा। एम मीन्स है मीनिंग, आपकी जो लाइफ है उसको मीनिंगफुल बनाइए, आपको अपने टारगेट बड़े बनाइए। जब टारगेट बड़े बनाएंगे तो आपकी लाइफ का एक वो रहेगा, तो आपने कभी भी आत्महत्या जैसा तो विचार आएगा नहीं, क्योंकि आप उसके पीछे लगेंगे। तीसरा है अचीवमेंट, अचीवमेंट इन द सेंस कि आपकी जो भी छोटी छोटी खुशियां हो रही है उनको आप सेलिब्रेट करिए। बच्चों का कोई भी अगर उसने एक अच्छा काम किया तो बच्चों को आप उसको सेलिब्रेट करिए, जैसे सेलिब्रेट करेंगे तो पता लगेगा कि उसकी खुशी के पल का अंदाजा नहीं रहेगा। तो ये दो टेक्निक अगर हम दवा के साथ साथ अगर यूज करेंगे तो ये जो मानसिक बीमारियां हैं वो काफी हद तक डाउन हो जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई और जो बच्चों में मानसिक विकार हैं उसके बारे में इतने विस्तार से बताया और हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: बच्चों में मानसिक विकार और होम्योपैथी से इसका उपचार, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर BL मीना से। आपसे बात कर रही थी श्वेता शर्मा। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत यहीं संपन्न होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: और श्रोताओं, आप समय हुआ है कार्यक्रम धरती आकाश का। आज आप सुनेंगे वार्ता हाइड्रोजन ऊर्जा का बढ़ता महत्व और E20 एथेनॉल से जुड़ी भ्रांतियां। वार्ताकार हैं श्री इंदु शेखर शुक्ल जो कि एक अध्यापक हैं।
3: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
4: मैं इंदु शेखर शुक्ल आज हरित ऊर्जा का महत्व के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। हरित ऊर्जा में आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन ऊर्जा की और इथेनॉल ऊर्जा की। आधुनिक परिवेश में इन दोनों ही ऊर्जाओं का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसको लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं। आज इन सारी चीजों के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। हरित ऊर्जा का महत्व कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की क्षमता में निहित है। सरल शब्दों में हरित ऊर्जा का अर्थ है पृथ्वी को प्रदूषित किए बिना बिजली या ताप उत्पन्न करने के लिए प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना। हरित ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में शामिल है हाइड्रोजन ऊर्जा, इथेनॉल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। आज हम विश्लेषण करेंगे हाइड्रोजन एवं इथेनॉल ऊर्जा का। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा की। हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन से, पानी से या दोनों के मिश्रण से निकाला जा सकता है। प्राकृतिक गैस वर्तमान में हाइड्रोजन उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है, जो लगभग 70 मिलियन टन के वार्षिक वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा है। ये वैश्विक प्राकृतिक गैस उपयोग का लगभग 6% है। आज हाइड्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से तेल शोधन, अमोनिया उत्पादन, मिथेनॉल उत्पादन और इस्पात उत्पादन में। इस हाइड्रोजन की लगभग पूरी आपूर्ति जीवाश्म ईंधनों से होती है। हाइड्रोजन को मौजूदा प्राकृतिक गैस नेटवर्क में मिलाया जा सकता है, जिसकी सबसे अधिक संभावना बहुमंजिला और वाणिज्यिक भवनों में है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरों में, जबकि दीर्घकालिक संभावनाओं में हाइड्रोजन बॉयलर या ईंधन सेल में हाइड्रोजन का प्रत्यक्ष उपयोग शामिल हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए हाइड्रोजन एक प्रमुख विकल्प है और विद्युत प्रणाली की लचीलता बढ़ाने के लिए गैस टर्बाइनों में हाइड्रोजन और अमोनिया का उपयोग किया जा सकता है। अमोनिया का उपयोग कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन का उपयोग कुछ उद्योगों में पहले से ही व्यापक रूप से किया जा रहा है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में इसकी पूरी क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता का लाभ उठाने का ये सही समय है। G20 की अध्यक्षता कर रही जापान सरकार के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEEA ने हाइड्रोजन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने और इसके भविष्य के विकास पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में पाया गया कि स्वच्छ हाइड्रोजन को वर्तमान में अभूतपूर्व राजनीतिक और व्यावसायिक गति मिल रही है और दुनिया भर में नीतियों और परियोजनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि अब समय आ गया है कि प्रौद्योगिकियों को बढ़ाया जाए और लागत कम की जाए, ताकि हाइड्रोजन का व्यापक उपयोग हो सके। हाइड्रोजन बहुमुखी ऊर्जा है। आज उपलब्ध प्रौद्योगिकियां हाइड्रोजन को ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, परिवहन और विभिन्न तरीकों से उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला और तेल सहित कई प्रकार के ईंधन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। इसे पाइपलाइनों द्वारा गैस के रूप में या द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG की तरह जहाजों द्वारा तरल रूप में परिवहन किया जा सकता है। इसे घरों को बिजली देने और उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बिजली और मीथेन में परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही कारों, ट्रकों, जहाजों और विमानों के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नवत हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अधिक महंगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, जिसका उपयोग हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए किया जाता है, बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और भारत में नवीकरणीय बिजली की लागत अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। वर्तमान में भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना की कमी है। इसमें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों और हाइड्रोजन के परिवहन के लिए पाइपलाइनों की कमी भी शामिल है। हरित हाइड्रोजन के संभावित लाभों के बावजूद वर्तमान में भारत में इस प्रौद्योगिकी की सीमित रूप से ही अपनाया जा रहा है। आम लोगों के बीच हरित हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता एवं समझ की कमी के साथ साथ इस प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन की कमी के कारण ये स्थिति बनी हुई है। व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए हरित हाइड्रोजन का निष्कर्षण उद्योग के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करने के लिए भारत में नवीकरणीय बिजली सृजन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। ऐसा सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार इस प्रौद्योगिकी के उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स क्रेडिट एवं सब्सिडी जैसे विनियामक प्रोत्साहनों को लागू करके हरित हाइड्रोजन के अभिग्रहण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आम लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन के लाभों और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में इसकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता अभियानों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से इस उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में हाइड्रोजन रेल का आगमन हरित ऊर्जा से संभव हो सका है। आइए जानते हैं हाइड्रोजन रेल के बारे में। भारतीय रेल स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली स्वदेशी ट्रेन इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक स्वचालित इंजन है जो चलायमान रहते हाइड्रोजन का उपयोग करके अपनी बिजली उत्पन्न करता है। 17 जुलाई 2026 को उद्घाटन के साथ हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। ये उत्तर रेलवे के जींद सोनीपत खंड पर चल रही है। यह ट्रेन समर्पित हाइड्रोजन भंडारण, ईंधन भरने और परिचालन बुनियादी ढांचे के साथ उन्नत प्रणोदन प्रौद्योगिकी से युक्त है। ये भारत में स्वच्छ रेल परिवहन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित कर रहा है। एक प्रायोगिक पहल के रूप में विकसित ये ट्रेन नवाचार के लिए भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार परिवहन को भी बढ़ावा देती है। इस ट्रेन के उद्घाटन के साथ भारत

अर्जुन से चलने वाले रेल परिवहन की खोज करने वाले देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। इनमें पूर्व में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी रेलवे हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन भरने की सुविधा हरियाणा के जींद में स्थापित की गई है। इस स्वदेशी संयंत्र में एक बार में लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन का भंडारण होता है। ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन संचालन में मदद करेगा। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। भारतीय रेल के निरंतर आधुनिकीकरण के साथ ये पहल व्यापक रूप से अपनाने की नींव है। ये ट्रेन अधिक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। 17 फरवरी 2004 को स्टेन थॉमसन और जिम बोमन द्वारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में हाइड्रोजन रेल के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक खोज इंजन लक्ष्य शब्द के रूप में इसे शामिल करने के बाद हाइड्रेल शब्द प्रचलन में आया।

आइए अब समझते हैं E20 पेट्रोल के बारे में। E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाया और E10 से E20 तक का सफर केवल 3 वर्षों में पूरा कर लिया। ये परिवर्तन मूल योजना से कहीं अधिक तेज रहा। हाल ही में भारत ने E20 पेट्रोल का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया। इसके बाद सरकार ने जून 2026 में E85 ईंधन लॉन्च किया और अब E25 तथा फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इस तेज बदलाव के कारण लाखों ऐसे वाहन भी E20 पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें मूल रूप से E10 ईंधन के लिए डिजाइन किया गया था। यही कारण है कि माइलेज और इंजन पर प्रभाव को लेकर बहस तेज हो गई है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, अर्थात समान मात्रा में इथेनॉल जलाने पर पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इंजन को समान शक्ति उत्पन्न करनी होती है तो उसे अधिक मात्रा में ईंधन जलाना पड़ता है। यही कारण है कि E20 पेट्रोल के उपयोग से कई वाहनों में माइलेज कम दिखाई देती है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है, जबकि पेट्रोल में अधिक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। सरकार अब E20 के बाद E25 और E85 की दिशा में आगे बढ़ रही है। E25 में 25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल होता है। E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इन ईंधनों का उपयोग मुख्य फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे वाहन हैं जो विभिन्न अनुपातों में इथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण पर आसानी से चल सकते हैं। इनमें विशेष प्रकार के इंजन, फ्यूल इंजेक्टर, पाइप, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और जंगरोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। भारत के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि उच्च इथेनॉल मिश्रण तभी सफल होगा जब उपभोक्ताओं को विकल्प, उचित कीमत और तकनीकी रूप से सक्षम वाहन उपलब्ध हों। E20 पेट्रोल के फायदे क्या हैं, आइए जानते हैं। कच्चे तेल के आयात में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों की आय में वृद्धि, जैव ईंधन उद्योग को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती प्रदान करता है। E20 पेट्रोल भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित ईंधन नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। हालांकि सरकार को E25 और E85 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण लागू करने से पहले वाहन उद्योग, उपभोक्ताओं और ईंधन वितरण प्रणाली को पूरी तरह तैयार करना होगा। ब्राजील की तरह उपभोक्ताओं को विकल्प और मूल्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम भारत की ऊर्जा रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ माना गया है। इसकी प्रगति, वैज्ञानिक मूल्यांकन, चरणबद्ध कार्यान्वयन और सरकार उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को दर्शाती है। इस कार्यक्रम ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, उत्सर्जन को कम किया है और किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा किए हैं। इसने कच्चे तेल के आयात को भी कम किया है और घरेलू स्तर पर उत्पादित नवीकरणीय ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। EBP कार्यक्रम स्वच्छ, अधिक लचीले और आत्मनिर्भर परिवहन ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देना जारी रखेगा। भारत इथेनॉल मिश्रण को अपनाने वाला अकेला

हुआ है। वर्तमान में यहाँ E27 को मानक पेट्रोल मिश्रण के रूप में अनिवार्य किया गया है। इसे बढ़ाकर लगभग 35% किया जा रहा है। बिकने वाली नई कारों में से 80% से अधिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन हैं। ये वाहन E27, E30 या शुद्ध जलयुक्त इथेनॉल पर भी चलते हैं। जापान ने भी अपने ईंधन मिश्रण में इथेनॉल को शामिल कर लिया है। ये चरणबद्ध तरीके से E10 को लागू करके किया गया। कनाडा, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों सहित अपनी स्वच्छ ईंधन रणनीतियों के हिस्से के रूप में इथेनॉल मिश्रण को अपनाया है। इस तरह हरित ऊर्जा का महत्व कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की क्षमता में भारत आगे निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में शीघ्र शामिल हो सकता है।

0: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धरती आकाश। आपने वार्ता सुनी हाइड्रोजन ऊर्जा का बढ़ता महत्व और E20 एथेनॉल से जुड़ी भ्रांतियां। वार्ताकार थे श्री इंदु शेखर शुक्ल, एक शिक्षक। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

0: सामिन अदर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशियात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल एप न्यूज ऑन एआईआर के अलावा डीडी फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशों वाले प्रोग्रामों पर।
1: चैन प्रोग्राम में एक दफा बजाया था अपने अंकित शर्मा ने, हमारे वहां से ले गया।
0: अब से कुछ ही देर के बाद यानी 9:35 पर सुबह ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। नौ बजकर 50 मिनट पर खबरें नशे होंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबार जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्न गजल प्रोग्राम में आज के फनकार हैं नीलम साहनी और फरीद अहमद। आप पेश करेंगे बशीर फारूकी, दाग देलवी, शवन रिजवी और मोहम्मद अली साहिल का कलाम। 10:30 पर मोहतरमा उषा सेठी का तहरीर करदा ड्रामा आप सुनेंगे फॉर्मूले फिल्मों के। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में आप सुनेंगे फिल्मी नगमे। 11:30 पर गीतों भरी कहानी सुनेंगे आप जख्म दिल, तहरीर मोहतरमा रईसा परवीन की। 12 बजे खबरें नशी की जाएंगी और 12:10 पर फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम आप सुनेंगे मिले सुर मेरा तुम्हारा। 12:45 प्रोग्राम जारी रहेगा 12:45 तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 बजे आप सुनेंगे तारीख साज प्रोग्राम। आज का मौजू है भारत छोड़ो तहरीक।

सुबह में ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा 12:45 पर, दिन में 1 बजे खबरें नशे की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए भजन, पेश करें सुरेश वाडेकर और हरिहरन।

0: सुबह ही प्रोग्राम में आप समाप्त कर रहे थे, भजन पेश कर रहे थे सुरेश वाडेकर और हरिहरन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: 1942 में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आज ही की तारीख को की थी, और 2010 में तेजस्विनी सावंत म्यूनिक में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी।
2: यस जी, राइट।
1: श्रोताओं, समय है उन विशेष व्यक्तित्वों को याद करने का जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए, या आज जिन्होंने इस दुनिया से रुखसत की, आज जिनका जन्मदिन है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, अभी जैसा कि हमने हिस्ट्री सेक्शन में बताया कि महात्मा गांधी ने 1942 में आज ही की तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इससे जुड़ी कुछ फैक्ट्स या तथ्य हम जानते हैं।
2: वेल यस, द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन अगस्त 8 एंड एज मुकेश टोल्ड अस इन द ईयर 1942 दिस वाज अ सिग्निफिकेंट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। सो इमेजिन इंडिया इन द ईयर 1942, the world was at war, Britain was fighting for its survival, but India was still under British colonial rule. So across the country, anger was rising, hardships they were increasing, and the demand for freedom was becoming impossible to ignore. And then came a powerful call that would echo through India's freedom struggle, do or die. So these were the historic words of Mahatma Gandhi, marking the beginning of one of India's most significant anti-colonial movements, the Quit India movement.
1: और अब बात करते हैं आज के दिन के विशेष व्यक्तित्वों के बारे में, तो आज जयंती है प्रसिद्ध भारतीय लेखक भीष्म साहनी की। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव पक्षधर रहे। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें से उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण से अलंकृत प्राप्त भीष्म साहनी का ये इंटरव्यू हम सुनते हैं प्रसार भारती आर्काइव से। अब
3: हम कोई भी साधु घर में आ जाए तो उससे सवाल पूछते हैं, आध्यात्मिक सवाल पूछ अपनी जिज्ञासा पूरी करते हैं। ये जिज्ञासा का जो पहलू है ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और बहुत खूबसूरत अंग मैं समझता हूँ। दूसरे, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे उनकी परिकल्पना करने वाला विराट के दर्शन कर रहा है, समूचे ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने है और कहीं उसमें तंग नजरी नहीं है, पक्षपात भी नहीं है, मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत है, वो किसी जाति विशेष

0: देश के बारे में, देश विशेष के बारे में नहीं सोचते, वो समूची मानव जाति के बारे में सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिना, उसमें ये नहीं था कि मेरी जाति के लोग सुखी हों।
1: श्रोताओं, आज जयंती है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य रहे बलबीर सिंह खुल्लर की। उन्होंने भारतीय टीम में इनसाइड फॉरवर्ड के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की और बेल्जियम, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों में अपने खेल का प्रदर्शन किया। बलबीर सिंह खुल्लर 1966 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण और 1968 में मैक्सिको में हुए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्हें 1999 में अर्जुन पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, आज ही जयंती है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका सिद्धेश्वरी देवी की। उन्हें निर्विवाद रूप से ठुमरी गायन की सम्राज्ञी माना गया था। सिद्धेश्वरी देवी को पहली बार 17 बरस की उम्र में सरगुजा के युवराज के विवाह उत्सव में गाने का अवसर मिला। उनकी बेटी सविता देवी भी प्रख्यात गायिका हैं। उन्होंने अपनी मां की स्मृति में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की है। इसके माध्यम से वे प्रतिवर्ष संगीत समारोह आयोजित कर वरिष्ठ संगीत साधकों को सम्मानित करती हैं। अगर हम बात करें सिद्धेश्वरी देवी को, तो उन्हें 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, साहित्य कला परिषद सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और संगीत नाटक अकादमी जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
2: टुडे इट्स ऑल्सो रॉजर फेडरर्स बर्थडे, द फॉर्मर स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, एंड ही वाज रैंक्ड एज वर्ल्ड नंबर वन इन मेन्स सिंगल्स बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स फॉर 310 वीक्स एंड फॉर नियरली टू डेकेड्स। फेडरर हैज बीन अ लीडिंग फिगर, वी ऑल नो दैट, इन मेन्स टेनिस alongside other players as well, collectively known as the Big Three with Rafael Nadal and Novak Djokovic. So a Wimbledon junior champion in 1998 and former ball boy, Federer won his first major singles title at Wimbledon in 2003. This happened at the age of 21.
1: और अगर हम भारतीय खिलाड़ी की बात करें, तो जैसा कि आपने रोजर फेडरर के बारे में बताया, तो आज साइखो मीराबाई चानू का भी जन्मदिन है। वो भारत के प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं। उन्हें वर्ष 2018 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में 201 किलो वजन उठाकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इससे पहले भी मीराबाई ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो की कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया था। वो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी। श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आज का सुविचार कि मतभेद हमेशा बारिश के समान होने चाहिए जो बरस कर समाप्त हो जाएं, लेकिन हमारा प्रेम और विश्वास जो है हवा के समान होना चाहिए जो दिखाई भले ना दे लेकिन हमारे साथ रहे। इसी सुविचार के साथ दीजिए अनुमति मुकेश और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशियात जारी हैं। सुबह के 9:50 हुए हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप मुजीब अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे PCI ने वजाहत की है कि UPI लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मौजूदा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बदनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सीनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने के लिए कहा गया है और मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आज़म जनाब नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 97वें तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करेंगे। वो 587 PhD स्कॉलर समेत 3000 से ज्यादा ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा से खिताब

0: और सनती सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा करेगा। जनाब शाह बाद में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ भी इसी बैनुल अक़वामी कन्वेंशन मरकज में शिरकत करेंगे। JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ जारी एहतियात के दौरान कल देर शाम झारखंड हुकूमत और तलबा के वक्त के दरमियान पहली बाकायदा बातचीत हुई। इस दौरान इस मामले की छानबीन और सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। तकरीबन डेढ़ घंटे तक जारी इस मीटिंग में तलबा ने भर्ती इम्तिहानात में शफाफियत के अपने मुतालबे को दोहराया और मुबैना बेजाबतगियों, गैर जानबदारा जांच पड़ताल और भर्ती के अमल में जामे असलाहत की मांग की। बातचीत में चार रियासतों के उजरा और तरक्याती कमिश्नरों ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। उजरा ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुतालबात के बारे में मुस्बत कदम उठाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मीटिंग के दौरान उठाए गए तमाम मामलों को वज़ीर-ए-आला के सामने पेश किया जाएगा। तलबा ने बातचीत को मुस्बत दिया लेकिन कहा कि उनका धरना और भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि उनके मुतालबात से मुतालिक तहरीरी फैसला नहीं किया जाता और ठोस कदम नहीं उठाया जाता। इस दौरान वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार तलबा की तशवीश के तहत हसास है और बातचीत के जरिए मामले को हल करने की पाबंद है। अमरीकी सीनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत रूस और उसकी पेट्रोलियम मसनूआत के खरीदार मुल्कों पर बंदिश लगाई जाएगी जिनमें चीन और दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीकी सीनेट ने दावा किया है कि इस तरह की तजारत से यूक्रेन जंग को हवा मिलेगी। इस बिल का नाम बदलकर रूस और ईरान पर पाबंदी लगाने वाला 2026 का लेंडेसी और ग्रहम बिल रखा गया है जिसे सीनेट ने 11 के मुकाबले 86 वोटों से मंजूरी दे दी। इस बिल की रूस के सदर ट्रम्प इंतजामिया को इजाजत मिल गई है कि उन मुल्कों से अपने यहां आने वाली अशिया पर 100% महसूल लागू कर दे जो रूसी तेल और गैस के 5 सरकर्दा बरामदकार हैं। इस बिल के साथ ही ईरान पर आयात बंदिशों के 1996 के कानून को 2031 तक तौसी हासिल हो जाएगी। इस कानून के तहत उन कंपनियों पर जुर्माना आयद है जो ईरान के तवानाई शोबे में सरमाया लगाते हैं। ऐसे मौके पर जबकि मुल्क असीमा यौम आजादी मनाने की तैयारियां कर रहा है, इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देही खुद के रोजगार तरबियती अदारे RSETI उधमपुर में तरबियत हासिल करने वाली 30 खवातीन और लड़कियों को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हाथ से कौमी परचम तिरंगा के मौजू पर मबनी लवाजमात और सजावटी सामान तैयार करके हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग दे रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक लक्षद्वीप, शुमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और क्राइकल में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी आज स्नात की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट के आला तरीन इदारे PCI ने वजाहत की है कि UPI लेन देन सार्फिन और छोटे कारोबारों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर दायर किए गए इतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है और झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बदनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है अक्वाल सर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा।
2: मर्द और ख्वातीन इंसानी समाज की इमारत के दो ऐसे सुतून हैं जिनमें से किसी भी एक के बगैर इंसान के वजूद और बका का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दोनों मिलकर इंसानी सोसाइटी की तामीर करते हैं और इंसान के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाते हैं। कुरान करीम की सूरह निसा की पहली आयत में इस बात को वजाहत के साथ बयान किया गया है। इस अखबार से देखा जाए तो इंसानी मुआशरे में मर्द और औरत दोनों की हैसियत मसावी और अहमियत की हामिल है। ये दोनों ही एहतराम के लायक हैं। जिस्मानी एतबार से मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन नाजुक होती हैं, इसलिए इन्हें सिन्फ नाजुक कहा जाता है। लेकिन जिस्मानी नजाकत के बावजूद इंसानियत की तामीर में ख्वातीन का किरदार बड़ा बुनियादी है। गौर कीजिए कि वही बच्चों को जन्म देती हैं, वही उनको दूध पिलाती हैं और वही उनकी परवरिश और तरबियत में पेश पेश रहती हैं। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों को जबान और तहजीब सिखाने اور عملی زندگی گزارنے کے طریقے بھی اکثر وہی بتاتی ہیں۔ اسی لیے ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا ہے۔ اگر ماں سلیقہ مند، تعلیم یافتہ، سنجیدہ، بااخلاق اور بردبار ہوتی ہے تو وہ چھوٹی عمر میں ہی بچے کو اتنا کچھ سکھا دیتی ہے کہ اس کی چھاپ آخری عمر تک برقرار رہتی ہے۔ بچے کو جو لاڈ پیار ماں دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اگرچہ باپ بھی اپنے بچے کے لیے مخلص ہوتا ہے اور اس کی پرورش میں ہاتھ بٹاتا ہے، مگر ماں کا رول زیادہ اہم اور بنیادی ہوتا ہے۔ گویا کہ نئی نسلوں کو، جن کے کاندھوں پر انسانی مستقبل کا بارے گراں ہوتا ہے، خواتین اپنا خون پسینہ ایک کر کے تیار کرتی ہیں۔ زندگی کے نظام کو سنوارنے اور مضبوط بنانے میں بھی خواتین کی حصہ داری زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وہ گھروں کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، اپنے خوبصورت وجود سے انہیں رونق بخشتی ہیں، اپنے بچوں کے تمام ضروری کام بھی کرتی ہیں، شوہروں کا بھی خیال رکھتی ہیں اور گھروں کے ماحول کو بھی پرسکون بناتی ہیں۔ خواتین کا یہی اہم کردار معاشرتی سطح پر بھی سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام مذاہب میں خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور دنیا کے اہم دانشوروں نے خواتین کے تعلق سے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ مصرع سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ عورت کے وجود سے کائنات خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور عورت کے بغیر کائنات بے رنگ دکھائی دیتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن میں شوہروں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں کو قرار دیا ہے۔ دراصل عورت ہے ہی اس لائق کہ اس کی توقیر اور عزت کی جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، بہت سے معاملات میں اسے اولیت دی جائے۔ اگر عورت کسی کی بہن ہے تو بھائی اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرے اور اسے اپنے سے کم تر نہ سمجھے۔ اگر عورت کسی کی اولاد ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ جس طرح لڑکوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ دونوں کے درمیان حت الامکان برابری قائم رکھیں اور کسی طرح کی تفریق نہ کریں۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھیں اور اس کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کریں کہ وہ خوش ہو جائے اور ڈھیر ساری دعائیں دے۔ پروردگار ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر عورت کسی کی بیوی ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کی عزت کرے اور اس کے تمام حقوق کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اخبار زرے پر مبنی شمع فروزاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ حسن غزل اس پروگرام میں آج سماعت کیجیے نیلم ساہنی اور فرید احمد کی گائے چند غیر فلمی غزلیں، کلام بشیر فاروقی، داغ دہلوی، شیون رضوی اور محمد علی ساحل کا۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں بشیر فاروقی کے کلام کے ساتھ، آواز نیلم ساہنی کی۔

0: कहो क्या खबर लाए हो?
1: हमारा खबर तो सब पुरानी है दोस्त। हाँ, नई बात सिर्फ ये है कि एक्स वाई जेड फिल्म वालों के नए टीवी सीरियल का मुहूर्त आज शाम को सेठ फकीर चंद के बंगले पर हो रहा है।
0: यार, कब तक हम दूसरों की फिल्मों और टेलीविजन सीरियलों के मुहूर्त की खबर सुनते रहेंगे? अरे पर्दे पर हमारी सूरत कब नजर आएगी प्यारे? कुछ इसकी खबर भी तो लाओ।
1: भाई यही कमी है तुम्हें दोस्त। हा? दो चार दिन फागे करने पड़े नहीं कि तुझे छठी सातवीं और आठवीं का दूध याद आने लगता है।
0: दूध
1: मैंने तो यूं ही मुहावरा दोहराया था।
0: यार ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भूख के मारे मेरी आंतें पीठ से जला की है और तुझे है कि मजाक सूझ रहा है।
1: वो मारा यार मोजी, ये खबर पड़ी तूने?
0: यार सिर्फ वाह वाह ही करते रहोगे या कुछ पढ़कर भी सुनाओगे? ऐसी क्या खबर छपी अखबार में?
1: आए हाय यार, खबर सुनकर तुम ये कहे बिना हरगिज नहीं रह सकते कि खोजी जब भी लाता है दूर की कौड़ी खोज कर लाता है।
0: खोजी प्यारे, कौड़ियों के जमाने लग गए। अब जब तक कोई डॉलर या पौंड वाली खबर नहीं लाओगे ना, हमारे दिन फिरने वाले नहीं। हाँ
1: यार, तुम भी बस बात पकड़ कर बैठ जाते हो।
0: क्या?
1: ये देख अखबार में क्या लाजवाब खबर छपी है।
0: क्या
1: लिखा है? होटल डिंग डिंग डोंग के इफ्तिता के मौके पर होटल में सबसे पहले आने वाले 5 जोड़ों यानी कि कपल्स को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा।
0: क्या क्या कहा? दिखाइए।
1: ये देखो, ये देखो
0: खाना, और वो भी मुफ्त। अरे खोजी, खबर तो तू वाकई डॉलर के नोट की तरह करकी लाया है। पर इसमें मुफ्त खाने की दावत तो पहले आने वाले 5 जोड़ों के लिए है प्यारे। और हम दोनों तो अभी तक सिंगल है।
1: अरे मौजी प्यारे, क्यों दिल तोड़ने वाली बात करता है? अरे बहुत दिनों के बाद उम्दा खाना खाने की उम्मीद बंधी है और तू उस पर
0: ये होटल वाले कमबख्तों ने शर्ती बड़ी टेढ़ी रख दी है। अब ना तेरे हाथ पीले हुए हैं और ना मेरे, फिर हम सिंगल से डबल कैसे हो सकते हैं प्यारे?
1: होने को क्या नहीं हो सकता आलू बुखारे, बस सिर्फ थोड़ी अकल की जरूरत है। अब मैं पूछता हूँ कि होटल वालों ने कहाँ लिखा है कि कपल यानी जोड़े का मतलब सिर्फ एक लड़का और एक लड़की है? अरे हमारा तुम्हारा भी तो जोड़ा है, चाहे वो हंसी ही क्यों ना हो।
0: कहता तो तू एक तरह से ठीक ही है प्यारे, होटल वालों की होटल वाले जाने। अरे हमें तो इस इश्तहार से जो समझ में आता है ना, वो ये कि हम आज शाम की दावत में बतौर कपल शिरकत कर रहे हैं। बस चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ प्यारे।
1: मैं भी तैयार हो गया
0: बाबा। मैं बिल्कुल। यार खोजी, मेरा दिल तो बड़े जोर जोर से धड़क रहा है प्यारे।
1: दिल तो मेरा भी धड़क रहा है प्यारे, पर क्या करें, अब हम लोग कल के फिल्म स्टार्स हैं, हमें हर सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए।
0: तुम ठीक कहते हो। यार क्या टाइम हुआ है?
1: 7 बजे हैं। होटल के डाइनिंग हॉल का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। दरवाजा खुल गया। अरे जल्दी से होटल में दाखिल हो जाए।
0: प्यारे खोजी,
1: मोजी,
0: ये नजारा देख रहे हो?
1: प्यारे क्या नजारा है, लगता है जैसे किसी फिल्म के कैमरे सीन में मल्टी स्टार फिल्म के 2 हीरोज की एंट्री हुई हो।
0: यार खोजी, लेकिन एक बात है, होटल में दाखिल होते हुए किसी ने हमारा नाम वगैरह तो नोट नहीं किया, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि डाइनिंग हॉल में दाखिल होने वाले जोड़ों में हम ही एक नंबरी थे?
1: ये तुम ठीक कहते हो।
0: तो फिर प्यारे खोजी, प्यारे देख, वो सामने खड़ी हुई मैडम से मैं दरियाफ्त करता हूँ, उसके हाथ में फाइलें वगैरह भी है, जरूर वो इसी होटल की कोई कारकुन मालूम होती है। बस मेरी नमस्ते दे दी।
2: करूंगा।
3: Excuse me, madam.
4: Yes, please. आपको क्या मांगता?

0: छोटा, आपको मेरी सूरत क्या मांगने वाली कैसी लगती है मिस
1: रोजी?
0: रोजी,
1: आई एम सॉरी, आपने अपुन की बात का गलत मतलब निकाला। अपुन का कहने का मतलब था कि अपुन आपकी क्या मदद कर सकता है।
0: हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है मैडम, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि आप इसी होटल से वाबस्ता है या
1: राइट। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, अपुन इस होटल की रिसेप्शन कमेटी के मेंबर है। आज की तकरीब में होटल में आने वाले पहले 5 जोड़ों की फेरिस वगैरह तैयार करने का काम अब उनके ही सुपुर्द है।
0: तब तो मैं बिल्कुल सही जगह पहुंचा हूँ। देखिए, होटल के डाइनिंग हॉल में ठीक 7 बजे गेट खुलने पर एंट्री लेने वालों में से हमारा पहला जोड़ा था।
1: आपका जोड़ा पहला था? क्या नाम है आपका?
0: जी, खोजी एंड मोजी।
1: वेरी स्ट्रेंज। बाय द वे, आपका क्या नाम है?
0: जी, मोजी।
1: और आपका मिसेस का नाम खोजी होना मांगता?
0: मिसेस नहीं मैडम, मिस्टर कहो, मिस्टर। हम दोनों मिस्टर हैं, मिसेस मोजी एंड खोजी, आने वाले कल के फिल्म स्टार, टीवी स्टार वगैरह वगैरह।
1: ओह मैन, तुम क्या बोलता? तुम अपने आप को होने वाला फिल्म स्टार बोलता और इतना भी नहीं जानता कि कपल का मतलब क्या होना मांगता?
0: कपल कपल यानी दो दो।
1: कपल का मतलब होता एक लड़की और एक लड़का। पर तुम दोनों है कड़का।
0: कैसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रही हो मैडम।
1: रोजी
0: रोजी, हाँ रोजी रोजी, क्यों हमारी रोजी रोटी पर लात मारने पर तुली हो? प्लीज हमारा नाम किसी तरह होटल में एंट्री लेने वाले 5 जोड़ों में लिख दो, लिख दो। आई प्रॉमिस, जब हम स्टार बन जाएंगे तो आपको भी अपनी फिल्म में हीरोइन का चांस जरूर देंगे।
1: लुक हियर मैन, आई एम सॉरी, तुम अपन को चांस दो या नहीं, पर अपन कोई चांस नहीं ले सकता। अपन तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। यू विल हैव टू फुट द बिल।
2: ओ मौजी, मौजी मौजी मौजी, प्यारे कहाँ रह गए थे? कोई बात बनी कि नहीं?
0: नहीं यार, वो मैडम तो साफ इनकार करती है, कहती है कि हम दोनों का जोड़ा हंसों का जोड़ा नहीं, कौओं का जोड़ा है, इसे जोड़ा नहीं माना जा सकता।
2: क्या तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से खाली पेट ही वापस लौटना पड़ेगा?
0: नहीं नहीं, हम ऐसे हरगिज नहीं जाएंगे।
2: नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जब होटल के 4 आदमी हमें डोली डंडा पालकी जैक नैया लाल की कहकर बाहर पटक देंगे।
0: प्यारे खोजी, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो अब खाना तो हम खाकर ही जाएंगे प्यारे, अब बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा।
2: देखा जाएगा, ठीक है प्यारे। वो वेटर मेज पर खाना लगा गया।
0: अजय अजय, तो फिर देर किस बात की है मेरे काबली चने, अरे शुरू हो जाओ। बाबा सूप और ये ऊपर से क्रीम, भाई बाबा बाबा मजा आ गया दोस्त।
2: यार ये गोश्त, गोश्त भी कितना लजीज है, खाकर
0: बाबा बाबा दम में डाला ना,
2: खुशबू है
0: सचमुच सचमुच, गोश्त तो वाकई बड़ा लजीज है। यार यार नानी डर करना,
2: लो लो मोजी, मुझे कुछ डर लग रहा है।
0: अब इसमें डरने की क्या बात है, जो होगा देखा जाएगा। और फिर सियाने भी तो कह गए हैं ना, खाते वक्त इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे खाना जिस्म को नहीं लगता।
2: ठीक कहा यार, आगे ही ऐसा बढ़िया खाना कई महीनों बाद खाने को नसीब हुआ है, और न जाने आगे फिर कम नसीब हुआ।
0: और क्या, ये हुई ना बात। यार यार वो जरा वो लैपी सीधा करना यार,
2: लो लो लो। और ये बिरयानी वाली प्लेट इधर से खाना, मजा हो गया। अच्छा गैर मोजी, तुम यहीं बैठो, मैं जरा जिंदगी से हाथ धोकर आया।
0: मेरा मतलब है कि मैं बाल बेसन पर हाथ धोकर आया।
3: यार बात सुन, अगर इस बीच होटल का बैरा बिल लेकर आ गया
2: तो तुम उसको डांट कर कॉफी या आइसक्रीम का ऑर्डर दे देना, बाकी समय समझ लो।
4: सलाम साहब।
0: सलाम सलाम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बहुत खूब, ये सौंफ, इलायची, मिश्री और ये टूथपिक, ये क्या, बिल ये क्या है बेटा, अरे ये तो होटल के खाने का बिल लगता है। ओहो पूरे 167 रुपए 75 पैसे का। अब क्या होगा, मैं अभी बेटा बस एक मिनट। दरअसल मैं वो मेरा दोस्त है ना, वो पर्स मेरा उसके पास रह गया है। मैं अभी आया।
2: खाए चला जा, खाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना
3: है। प्यारे जल्दी वापस चलो टेबल पर, मेरा बिल लेकर आ गया प्यारे, पूरा 167 रुपए 75 पैसे का बिल है। अब क्या प्यारे होगा खेर जी?
2: जो होगा ठीक ही होगा, खाना तो हम खा ही चुके हैं, उसे तो होटल वाले हमारे पेट से निकाल नहीं सकते।
3: अरे पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है प्यारे।
2: अरे इसमें डरने की क्या बात है, अरे फिल्मी फार्मूले आखिर किस दिन काम आएंगे। सुन जा, जाकर मैनेजर से बात कर और उसे उतार शीशे में।
3: ठीक है ठीक है, जलती जलाल तू, आई बला को टाल तू,
2: जाना
3: जाता हूँ।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम सॉरी, नो आई एम नॉट सॉरी, आई एम मौजी ऑफ मौजी एंड खोजी प्राइवेट लिमिटेड, इस शहर के जाने माने वेल नोन इम्पोर्टर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर।
4: मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ?
1: जी वो खिदमत तो आप कर ही रहे हैं, मेरा मतलब है कि आपके होटल का खाना वाकई बड़ा लजीज है, हमको बहुत पसंद आया।
4: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: नहीं मैनेजर, तुम्हें थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, सचमुच तुम्हारे होटल का खाना बहुत ही उम्दा है, हमने बड़े बड़े 5 स्टार 4 स्टार और 3 स्टार और वो ढाबे पापा वो होटलों में खाना खाया है, पर जो मजा तुम्हारे होटल के खाने में आया वो कभी भी किसी होटल में नहीं आया।
4: मैं आपका ममनून हूँ सर, आई थैंक यू वंस अगेन सर।
1: ओ नो मैनेजर नो, ये तुम्हारा मॉडेस्टी है।
4: यू मीन मॉडेस्टी सर?
1: वो तुम्हारी जरा नवाजी है। वैसे आपके होटल का फूड एकदम लजीज और वो क्या कहते हैं डिलीशियस था।
4: माय प्लेजर सर।
1: मिस्टर मैनेजर, अगले महीने हमारी कंपनी की सालाना एनुअल कॉन्फ्रेंस है, दूसरे मुल्कों से भी हमारे एजेंट्स तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके रहने और खाने के लिए क्यों ना आपके होटल में बुकिंग करवा दूँ।
4: आपकी जरा नवाजी है सर, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं सर।
1: वो बाय द वे, आपके होटल के कमरे तो हमने देखे ही नहीं।
4: चलिए सर, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
1: ओ नो नो मैनेजर, जब तुम्हारे होटल का खाना इतना उम्दा है तो रूम भी क्या घटिया होंगे। सुनो, हमने तय कर लिया है कि अब सब डेलीगेट्स आपके ही होटल में ठहरेंगे और उनका खाना पीना भी सब यही होगा। मैनेजर, क्या मैं वो आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ?
4: सर यस सर, बाय ऑल मींस सर।
0: हेलो, हाँ कौन? चलो मैनेजर, हाँ हाँ भाई मैं मनमोजी हियर, हाँ हाँ हाँ खोजी साहब भी हैं हमारे साथ, हाँ हाँ। देखो मैं होटल डिंग डिंग डॉन से बोल रहा हूँ, हाँ देखो उनका फूड बहुत ही अच्छा है, कमरे भी जरूर अच्छे होंगे, हाँ हाँ हाँ हाँ। और सुनो तुम ऐसा करो कि यहाँ मैनेजर से आकर कल मिल लो, हाँ अगले महीने की कॉन्फ्रेंस का फाइनल डिनर और मेहमानों को ठहराने का सारा इंतजाम यहीं कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमने मैनेजर को सब कुछ बोल दिया है। यस यस हाँ यस राइट, वेल इट इज ऑल फिक्स्ड अप मैनेजर।
4: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने हमारे होटल का डेजर्ट ट्राई नहीं किया सर, शायद बॉय साहब के लिए एक स्पेशल टूटी फ्रूटी लाओ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैनेजर, इसकी जरूरत नहीं है मैनेजर साहब, खाने से ही पेट एकदम फुल हो गया है।
5: अरे तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें सारे हॉल में खोजता फिर रहा हूँ।
0: अरे खोजी प्यारे आओ आओ आओ, मैंने कंपनी की एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए मेहमानों के ठहरने के वास्ते इसी होटल में इंतजाम कर लिया है और इसके लिए जनरल मैनेजर को बोल दिया है। मैनेजर साहब इनसे मिलिए, आप हैं मेरे पार्टनर मिस्टर खोजी।
4: नाइस टू मीट यू सर।
0: बेटर
4: तो टूटी फ्रूटी जल्दी।
6: मिस्टर मौजी ये सब तो बाद में होता रहेगा, पर यार मैं अपना पर्स शायद गाड़ी में भूल आया हूँ। बेटर ये बिल

0: गए पहले चलकर ये पेमेंट करता
1: हूँ। नहीं नहीं सर, आप में से कोई भी बिल की पेमेंट नहीं करेगा। आप हमारे मेहमान खुसूसी हैं, भला हम आपसे पेमेंट कैसे ले सकते हैं सर?
0: पेमेंट कैसे ले सकते हैं? आओ बाबू, एज यू प्लीज मैनेजर। आप चले।
1: बस सर वो टूटी फ्रूटी सर,
0: तुम्हारी टूटी फ्रूटी के चक्कर में हमें 12:20 पहुंचने में देर हो जाएगी।
2: चलिए मिस्टर,
1: जैसे आपकी मर्जी सर।

0: क्या बात है यार, सोते रहोगे या कुछ आगे की भी सोचोगे?
1: अरे सोने दे यार, बहुत दिनों के बाद भरपेट खाना मिला था रात को होटल में, भरपूर नींद आ रही है यार खोजी। प्यारे प्यारे सपने आ रहे हैं प्यारे।
0: मैं कहता हूँ अब सपने देखना छोड़ो और कुछ सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने की सोचो।
1: सोच लग गए यार, सोच लग गए।
0: देख मेरी जेब में कुछ रेजगारी पड़ी हुई है, जाकर एक प्याली चाय ले आ, एक बटा दो कर लेंगे। दिन की शुरुआत हमेशा बैग टी से की जाती है प्यारे, समझे? सब समझता हूँ। ये ले चाय की आधी प्याली और मैं पी चुका अपने हिस्से की।
1: ठीक है।
0: और हाँ, अब कोई नया फिल्मी पैकरा सोचो ताकि हमारे नाश्ते पानी का जुगाड़ हो सके।
1: देख यार, हम आने वाले कल के होने वाले फिल्म स्टार, टीवी स्टार, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे चेहरे एकदम फ्रेश और फाइन होने चाहिए। इसीलिए मैंने आज शाम की अपॉइंटमेंट ABC ब्यूटी क्लिनिक पर मैडम क्यूरी से ले रखी है।
0: चलो अभी चलते हैं।
1: अरे अरे अभी नहीं यार, अपॉइंटमेंट आज शाम की है। वहीं से बाल सेट करवाने के बाद हम होटल ब्लू मून की तरफ निकल जाएंगे दावत उड़ाने के लिए।
0: ठीक है, तब तक मैं कपड़ों पर इस्त्री वगैरह कर लेता हूँ और चेहरे मोरे चाल ढाल और कपड़ों से सबको ऐसा एहसास होना चाहिए जैसे दो फिल्मी स्टार उनके बीचों बीच मौजूद है।
1: बिल्कुल।
0: लो यार, आ गया ABC ब्यूटी क्लिनिक। कहाँ है तुम्हारी मैडम पूरी क्यूरी?
1: अरे आती होगी। लो वो आ गई मैडम। गुड इवनिंग मैडम क्यूरी।
2: गुड इवनिंग, आइए। ये कौन है?
1: मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा पार्टनर मिस्टर खोजी।
2: आपसे मिलकर बड़ी खुशी।
0: मुझे भी मैडम कचौरी क्यूरी। अब आप जल्दी से मेरे बाल सेट कर दो और चेहरा एकदम लिफ्ट कर दो, आई मीन फेस लिफ्ट कर दो।
2: श्योर श्योर, आप इधर इधर कुर्सी पर आके बैठिए, मैं भी आप दोनों को सेट कर देती हूँ। नहीं नहीं, आई मीन मेरा मतलब है मैं भी आप दोनों के बाल सेट कर दूँ, यानी आधे घंटे में आप दोनों हैंडसम और जवान हो जाएंगे।
0: मैडम क्यूरी, फिर देर किस बात की है, शुरू हो जाओ झटपट।
2: बिल्कुल देरी तो आप लोगों की तरफ से है। वो आपने शायद मेरे ब्यूटी सैलून का रेट और दूसरी कंडीशंस नहीं पढ़ी।
1: ओ, सब पढ़ लिया है मैडम, सब पढ़ लिया है। आपका मतलब है कि पैसे एडवांस लेती है आप, है ना?
0: तो
1: ये लीजिए, ये हम दोनों के बाल सेट करने के चार्जेस, और शुरू कीजिए अपना काम।
2: थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम सर।
0: थैंक यू यार। मौजी मौजी, तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आए?
1: अरे यार बात सुन, मैंने अपनी घड़ी गिरवी रख दी है, पर तू फिक्र मत कर, जब हम स्टार बन जाएंगे ना तो अपनी दूसरी चीजों के साथ इस घड़ी को भी छुड़वा लेंगे।
0: मैडम
1: मेरे दोस्त के बाल बहुत ही नुकीले और कटीले हैं, कुछ बढ़िया सा हेयर स्टाइल बना दीजिएगा इनका।
2: हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए मिस्टर मौजी, मैं अभी आपके फ्रेंड को एकदम रेनोवेट कर दूंगा।
0: मैडम दूरी, फिर देर किस बात की है, जल्दी से कर डालिए मेरा काया क्लैप। क्या बात है, क्या चीज है यार मौजी, ये होटल ब्लू मून तो मुझे होटल डिंग डिंग डोंग और दूसरे होटलों से अलग ही लगता है प्यारे।
1: अरे अभी तूने देखा ही क्या है प्यारे, हर होटल तुझे पहले वाले होटल से बढ़ चढ़ कर ही मिलेगा।
0: अच्छा? यार मौजी।

0: अगर हम लोग इसी तरह फाइव स्टार होटलों और रेस्टोरेंटों में दावतें उड़ाते रहे और बढ़िया बढ़िया खाना खाते रहे तो मैं तो ढाबे की सूखी रोटी और बिना तड़के की दाल खाना भूल जाऊंगा।
1: अरे तो भूल जाना प्यारे, याद रखने के लिए कहता कौन कमबख्त है तुझे।
0: मगर प्यारे मौजी, अगर किसी दिन हमारा ये फिल्मी फार्मूला फेल हो गया तो
1: अरे शुभ शुभ बोल। अरे ये फिल्मी फार्मूला है फिल्मी, ये कभी फेल नहीं हो सकता, ये एकदम अचूक है अचूक।
0: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो प्यारे, ये नुस्खा तो वाकई एकदम करामाती नुस्खा है। हाँ, भगवान करे हमारी दावतें हैं हमेशा इसी तरह चलती रहें।
1: अरे जरूर चलती रहेंगी प्यारे, जरूर चलती रहेंगी। बेटा।
2: यस सर।
1: देखो बेटा, पहले दो ठंडे और उसके बाद जो भी गर्मा गर्म हो तुम्हारे होटल में सब ले आओ एक एक प्लेट। हाँ, हाँ, और देखो खाने के बाद आइसक्रीम लाना ना भूलना है, मेरे दोस्त के लिए टूटी फ्रूटी और मेरे लिए कसाटा।
2: ओके सर।
1: तेरे लिए कटाका, मेरे लिए टूटी फ्रूटी।
0: मुझे मजा मजा आ गया। ओ बाबा यार मौजी, खाना तो एकदम फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। इतना खा गया हूँ कि अगले दो तीन दिन तक कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: ठीक है बेटा, ये तू ही है जो ऊंट की तरह जुगाली करके काम चला लेता है, मुझे तो बाकायदा रोज भूख लगती है। हाँ।
0: अरे तो लगने दे प्यारे, फार्मूला फॉर फ्री फूड जिंदाबाद। अब हमसे हमारी दाल रोटी नहीं नहीं, नहीं मतलब है कि ब्रेड और बटर कोई नहीं छीन सकता। हाँ है? मौजी प्यारे मौजी, जरा सामने तो देख, वो वेटर बिल लेकर इधर ही सीधा आ रहा है।
1: तो क्या हुआ यार खोजी, इसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अभी मैनेजर के पास जाकर अपने फिल्मी फार्मूले का इस्तेमाल शुरू करता हूँ, बस सब ठीक हो जाएगा।
0: ठीक है, जल्दी करना, मेरा दिल थोड़ा खराब है।
1: मैनेजर साहब, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ?
3: जी हाँ, जरूर जरूर।
1: थैंक यू। वैसे आपके होटल का खाना वाकई बहुत लजीज था, एकदम फंटास्टिक।
3: आई सी।
1: मैं अपने ऑफिस में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से सालाना कॉन्फ्रेंस और डिनर के बारे में बात करना चाहता हूँ। सचमुच आपके होटल का कोई जवाब ही नहीं है। वाह वाह वाह वाह, आपके होटल का खाना और यहाँ का माहौल हमें बहुत ही पसंद आया मैनेजर साहब।
3: क्यों नहीं, माहौल आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: जी
3: हमारा होटल है ही ऐसा। मगर अभी आपने हमारे होटल का बावर्ची खाना नहीं देखा, वो भी आपको एकदम पसंद आएगा।
1: जी जी, क्या मतलब?
3: मतलब बिल्कुल साफ है जनाब, बावर्ची खाने का माहौल भी आपको एकदम पसंद आएगा। मैं तो यूँ कहूँगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी उसे देखकर। जी
1: देखिए मैनेजर साहब, आप ये क्या पहेली भिजवा रहे हैं, हम आपके किचन से क्या लेना देना?
3: लेना देना है, जब तो कह रहा हूँ जनाब।
1: जी
3: हमारे बावर्ची खाने का वो हिस्सा तो आपको खास तौर पर पसंद आएगा, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद आप और आपके दोस्त साहब बैठे बर्तन धो रहे होंगे।
1: क्या क्या क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? मैं
3: आप सब समझ रहे हैं मिस्टर फ्रॉड, मगर कुछ समझना नहीं चाहते।
0: तू अभी तक यहीं पर हो? अरे भाई कंपनी के मेन डायरेक्टर से बात की या नहीं? इधर ये बार बार बिल लेकर मेरे पास आ रहा है।
1: बात बात तो नहीं हो सकी प्यारे, लगता है हमारा फिल्मी फार्मूला यहाँ नहीं चल पाएगा प्यारे।
4: साहब बिल का पेमेंट कौन करेगा?
1: बिल
4: अब तो आपके दोस्त ही मिल गए यहाँ।
1: बिल
0: बिल भी आधा हम करेंगे।
3: बेरा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ले जाओ तुम इन दोनों को अपने साथ अंदर पेंट्री में।
1: पेंट्री यानी होटल की वो जगह जहाँ हम बर्तन वगैरह धो जाते हैं।
3: जी बिल्कुल ठीक समझे आप,
1: मगर आप समझने में गलती कर रहे हैं मैनेजर साहब, हम वो नहीं है। मेरा मतलब है साक्षात हीरो, हम तो सचमुच आने वाले कल के स्टार है स्टार। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि हम आज आपके यहाँ पहुँच गए हैं।
3: जी हाँ, और आप भी इसे अपनी खुशनसीबी ही समझिए कि आप लोगों को सिर्फ बर्तन धोने के काम पर ही लगाया जा रहा है।
0: ओहो, मगर मैनेजर साहब हमें अपने मेन डायरेक्टर से कुछ जरा बातों का लेने दीजिए।
3: माफ कीजिए मिस्टर फक्कर, आपको कहीं किसी को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए आप दोनों की तस्वीर जो अभी हाल ही में अखबार में छपी है।
1: अखबार में
3: देखिए
1: देखा अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए मैनेजर साहब कि हम आने वाले कल के टॉप स्टार हैं। अब तो हमारा फोटो भी अखबार में छप गया मैनेजर साहब।
3: अगर मिस्टर जरा नीचे क्या लिखा है ये भी पढ़िए। चलिए मैं ही पढ़कर सुनाता हूँ। ये तस्वीर दो नौजवान उठाई गिरोह की है जो बड़े बड़े होटलों में जाकर खाने की झूठ मूठ तारीफ करके होटल के मैनेजरों को बेवकूफ बनाकर मुफ्त दावतें उड़ाते हैं। होटल मालिकान होशियार रहे।
0: वो फोटो जो हमने पिछले हफ्ते होटल टुमारो में खिंचवाई थी वो किसी फिल्मी मैगजीन के लिए नहीं थी।
1: लगता तो ऐसा ही है प्यारे।
0: यार मोहली वक्त के साथ समझौता कर ले। मैनेजर साहब से
1: मैनेजर साहब हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे।
0: हम आपके बिल के पैसे जल्दी हंसते खेलते कूदते दे देंगे।
1: बिल्कुल
3: ठीक है
1: बाबा बाबा बाबा मैनेजर साहब भगवान आपके ओहदे में दिन दूनी रात चौगनी।
0: भगवान आपको जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, फ्लोर मैनेजर
1: और मैनेजरों का मैनेजर बनाए।
3: ओके ठीक है मेरा इन दोनों का नाम और बिल की रकम मोटे मोटे लफ्जों में इस दीवार पर लिख
1: जाते गाँव
3: मिस्टर मेरा आप इन दोनों के कपड़े उतार लो और दीवार पर लगे कील पर इन्हें टांग दो।
0: क्यों मैनेजर साहब?
3: वो इसलिए कि दीवार पर लिखे आपके नाम और बिल की रकम पढ़कर लोगों में आपकी बदनामी ना हो।
1: अच्छा ठीक है लीजिए हम अभी उतार देते हैं अपने कपड़े। अब फिल्मों में हीरो के साथ कई बार ऐसा होता है। अच्छा ये लीजिए, ये हमने अपने कपड़े उतार दिए। अब हम जाए मैनेजर साहब।
3: हाँ क्यों नहीं मगर बाहर नहीं, अंदर बेटा ले जाओ इन दोनों को और बर्तन धोने के काम पर लगा दो। जब तक बिल के पैसे पूरे ना हो जाए इन्हें जाने मत देना।
0: माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी ये फिल्मी फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे।
3: बंद करो और चलो अंदर। होटल को तुमने क्या ससुराल समझ रखा है जहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने चले आते हो?
0: अरे
1: मौजी
0: अजीक लाई तूने
1: भैया खोजी अपनी किस्मत जो फूटी। चलो अब अंदर चलकर करो पूरी बर्तन धोने।

फॉर्मूले फिल्मों के। अभी आप ये मिजाइल ड्रामा सुन रहे थे, तहरीर मोहतरमा उषा सेठी की थी, तरतीब पेशकश प्रेम वोहरा की थी और हिस्सा लेने वाले फनकार थे सोमनाथ नागर, चांद नारायण सक्सेना, विजय राजदान, सतीश महाजन, एचके सहगल और सुरेंद्र सेठी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं, मेरी पसंद। यह प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है, आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश किस्मत फिल्म का नगमा, शमशाद बेगम और आशा भोसले का गाया हुआ।

काजल का पहरा पर काली है जुल्फे गोरा है चेहरा कंधा पे जैसे बादल का पहरा आंखों में तेरे

0: मर गया, मैं मर गया, मर गया, मैं मर गया, मर गया, मैं मर गया, मर गया, मैं मर गया।
1: मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश है दो दिल फिल्म का दो गाना मोहम्मद रफी और आरती मुखर्जी की आवाजों में, मौसीकी हेमंत कुमार की। नगमा निगार कैफी आजमी।

तो साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। जो तुम्हारी कहानी सुनिए जख्म दिल, तहरीर मोहतरमा रईसा परवीन की।

बालकनी पर अब भी दो साए नजर आ रहे थे। जाहिद हुसैनी ने कमरे से दो कुर्सियां और एक छोटी मेज बालकनी में लाकर रख दी और मेज पर मोमबत्ती जला दी। एक मोमबत्ती जो इन दोनों के दरमियान एक हसीन रिश्ते का काम दे रही थी। गुलनाज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगी कि जब हम ये जानते हैं कि एक हवा का झोंका मोमबत्ती को बुझाकर रख देता है तो फिर उसे जलाकर ऐन हवा के दोष पर क्यों रख देते हैं। दरअसल गुल जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां हर वक्त मोमबत्ती के बुझ जाने का अंदेशा होता है। उसने नजर उठाकर जाहिद हुसैन की तरफ देखा। जाहिद का सरापा एक शेज और मर्द का सरापा लग रहा था। वो वालहाना नजरों से गुल के चेहरे को देख रहा था। जाहिद के सर के कुछ बाल सफेद हो चले थे मगर चेहरे पर जिंदगी की हरारत बाकी थी। वो उम्र के इस मोड़ पर भी बिल्कुल तरोताजा नजर आ रहा था। खुद मेरी उम्र भी 30 साल थी। जज्बात का एक उबलता हुआ लावा एक अरसा हुआ पार कर आई थी। इस अरसे में मोहब्बत की मैं पी थी तो नफरत की कड़वाहट भी चखी जिसका जायका अभी तक जबान पर बाकी था। ये गालिबन उस जायके का रद्द अमल होता है कि औरत हर उम्र में मर्द की मोहब्बत को शक की निगाह से देखती है। गुल अपनी बेएतमादी को यहां भी पल्लू से बांधे बैठी थी। पिछले 4 दिन से वो सब एक सेमिनार के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए थे। आज जाहिद हुसैनी ने मिन्नत समाजत करके गुल को अपने कमरे में बुलाया था। परदेश में आदमी कितना अकेला हो जाता है, शायद इसलिए सारे गलत या सही फैसले परदेश में हो जाते हैं। जाहिद से बात करते वक्त गुल को अपना दिल उस आधे चांद के मानिन महसूस हुआ जिसे आरी से काटकर कोई ले गया हो। पता नहीं बाकी जिंदगी में आधे दिल के साथ मोहब्बत हो भी सकेगी या नहीं, गुल ने दिल में सोचा। मगर उसी वक्त उसे किसी की मोहब्बत की असल जरूरत थी। वो घर भर दिन भर के लिए किसी के कांधे पर सर रखकर अपनी जिंदगी की तमाम तलखियों को भूल

कर सो जाना चाहती थी। इसी तमन्ना ने उसे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि वो कई महीनों से इस फैसले को नहीं कर सकी थी। उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू ढलक कर रुखसार को भिगो गए। पता नहीं क्यों औरत हर बार अपने ही फैसले पर रोती है। जाहिद ने उसके दिल पर मरहम रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिल हमदर्दी की तपिश पाकर मोम बनकर आंसुओं में ढल गया।

10 साल पहले टीवी के एक ड्रामे की रिहर्सल के दौरान गुल की मुलाकात शारिक से हुई थी। शारिक उन दिनों नया नया ड्रामा प्रोड्यूसर बना था, हर काम बड़ी लगन से करता था। गुल को बड़ी मुश्किल से घर वालों ने ड्रामों में काम करने की इजाजत दी थी और 2 साल के अंदर ही वो मुल्क की मकबूल टीवी स्टार बन गई थी। किसी भी ड्रामे में उसकी मौजूदगी ड्रामे की कामयाबी की वजह बन जाती थी। शाहरुख ने आगे बढ़कर उसका रुख संवारा तो उसकी जिंदगी का उन्वान ही बदल गया और वो गुलनाज से मिसेस शाहरुख बन गई। मर्द अपनी मोहब्बत की कीमत जरूर की

घरों में रोज बरोज तल्खियां बढ़ती चली गईं। दोनों ने एक दूसरे के लिए इतना जहर उगला कि उनकी जबान की सारी मिठास रुखसत हो गई। यूं तो शारिफ पहले भी काम का बहाना करके घर देर से लौटता था, लेकिन अब और भी ज्यादा देर से घर आने लगा। खाना खाकर आता और जब आता तो इस कदर थका हुआ होता कि बिस्तर पर गिरते ही बेसुध हो जाता था और गुल का दिल ये सर्द मसेरी देखकर खून के आंसू रोता था।

गुल को अब इस बेहिस आदमी के साथ डबल बेड पर साथ लेटते हुए अजनबियत का एहसास होता था, इसलिए वो अपना तकिया उठाकर कालीन पर आ लेटती और वहीं करवटें बदलते बदलते उसे जाने कब नींद आ जाती। अर्श से इंसान गिरे तो फर्श ही पर उसे सहारा मिलता है। इससे पहले गुल शारिफ को खाने के लिए पूछा करती थी, मगर जो शोहर हर रोज रात को देर से लौटे उसे किसी चीज की हाजत नहीं रहती। गुल इस बात को अच्छी तरह समझ सकती थी। मर्द ये जानता है कि औरत अपना घर और बच्चे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, लिहाजा वो उसकी इस कमजोरी से फायदा उठाता था और अजियत के खंजर से उसे बार बार जख्मी करता है ताकि औरत तड़प तड़प कर कह दे कि मैं मर जाऊं, यहां नहीं रहूं तो कहां जाऊं, मेरा कोई सहारा नहीं है, और मर्द के खुदगर्ज जज्बे को तस्कीन पहुंचे, और अगर तस्कीन नहीं पहुंचे तो खामोशी से वो सूरत हाल को बर्दाश्त करती रहे। जाहिर हुसैनी ने गुल की मुलाकात का पूरा पूरा लुत्फ उठाया। गुल से उसकी मुलाकात इन्हीं तपते हुए हालात में हुई थी। शाम को रेडियो पर जाहिद का इंटरव्यू नशर होना था, इसके लिए गुल का इंतखाब किया गया था। कुछ इब्तदाई कलमात बोलने के बाद गुल जाहिद को सिटिंग रूम में ले आई। जाहिद ने गुल के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, आप वही गुलनाज तो नहीं जो एक जमाने में टीवी की मशहूर अदाकारा हुआ करती थी? जी, गुल ने टूटे हुए दिल के साथ कहा, मैं वही गुलनाज हूं। देखिए, मैंने आपको पहचान लिया। मेरे लिए यह बहुत बड़े एजाज की बात है कि मेरी मनपसंद अदाकारा मेरा इंटरव्यू ले रही है। गुल ने दुखे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकलकर जमीन पर जज्ब हो गए। शारिफ भी तो यही कहता था, ये लड़कियां तुम्हारे सामने कह देती हैं, आती रहेंगी, आती रही हैं और जाती भी रहेंगी, मगर तुम मेरी दिल पसंद अदाकारा हो मरते दम तक। और आज वही शारिक एक इंतहाई मामूली और घटिया लड़की की खातिर उससे अलग हो जाना चाहता है।

उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था। सुबह सारे अखबार तारीफों से भरे पड़े थे। उसकी मुबारकबाद देने के लिए जाहिद ने उसे फोन किया। जाहिद मुल्क के नामवर शायर और अदीब की हैसियत से लोगों में बेहद मकबूल था। लोग उसकी शायरी को सलीफा हयात समझते थे। इत्तेफाक से यह इंटरव्यू शारिफ ने भी सुना। दोनों की आपसी बोलचाल काफी दिनों से बंद थी, इसके बावजूद शारिफ ने सोने से पहले उससे पूछ ही लिया, ये जाहिद हुसैनी कौन है? इंटरव्यू सुनकर भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो कौन है। गुल ने नागावार लहजे में जवाब दिया, मेरा मतलब है कि तुम उन्हें कब से जानती हो? जब से तुम शीलू को जानते हो। पता नहीं ऐसा बेहुदा फिकरा उसके मुंह से कैसे निकल गया। इंसान जब दुखी होता है तो वह अच्छे बुरे की तमीज को खो बैठता है। जाहिद के इसरार पर गुलनाज ने उसके अखबार में खवातीन का कालम संभाल लिया। इस तरह मुलाकात की सबील निकल आई। एक रोज जाहिद ने गुल की मुस्तकिल मिजाजी और उसकी मुस्तकिल उदासी की वजह दरियाफ्त की तो वह जाने क्यों जाहिद से कुछ भी न छुपा सकी। मुसलसल तकलीफों और उदासी के बाद वो इस आग में सुलग रही थी और जाहिद के पूछने पर जब्त के सारे बंधन टूट गए और वो अपनी दुख भरी रूदास सुनाती चली गई। आखिर में जाहिद ने नहायत संजीदा लहजे में पूछा, तो वो तुम्हें तलाक देना चाहता है? जी हाँ। और तुम तलाक लेना क्यों नहीं चाहती? इस उम्र में तलाक लेकर कहां जाऊंगी? गुल ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अरे छोड़ो ये फजूल बातें, तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद खींच सकती हो। यह फिक्र तो उन औरतों को होती है जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। जाहिद और गुल की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। गुल की जिंदगी पर हर बार बात कोई न कोई निकलती थी। वो इन दिनों अपने आप में एक नुमाया तब्दीली महसूस कर रही थी कि जिस तरह वो पहले हर वक्त 12 बोर की पिस्तौल की तरह भरी रहती थी, अब उसे अपना बोझ हल्का सा महसूस हो रहा था। शारिफ के घर देर से लौटने पर अब वो उससे उलझती भी नहीं थी। शारिफ से ला ताल्लुक रहकर वो बड़ा सुकून महसूस कर रही थी। और फिर एक दिन जाहिद ने अपने दिल की बात उसके गोश दराज कर ही दी। वो गुल से शादी करना चाहता था और गुल उसकी बात सुनकर सत्ते में रह गई। उसने कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था और अचानक जाहिद की बात ने उसे सरासीमा कर दिया। दरअसल मैं आपसे उसी जमाने से इश्क करता हूं जब आप टीवी सीरियल में काम करती थीं। अगर आप इस तरह के हालात से न गुजर रही होती तो मैं कभी भी अपना दिल खोलकर आपके सामने नहीं रखता। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई भी फैसला करने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। आपका मजबूत फैसला हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। और जाहिद के इन अल्फाज ने उसे तख्तादार पर लटका दिया था। जाहिद ने जो ताजा हवा का दरवाजा खोला था, उस राह से तो एक तेज आंधी अंदर आना चाहती थी। गुल ने भी शारिख से अलग होने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचा था।

जाहिद को साफ जवाब देने के बावजूद वो हिरासा और उलझी उलझी सी रहने लगी और सेमिनार वाली रात को वो देर तक उससे बातें करता रहा कि जब शारिक ने तुमको तलाक देने का इरादा ही कर लिया है तो फिर तुम इतनी लंबी जिंदगी तनहा किस तरह गुजारोगी। और गुल के अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ और उसका सारा वजूद हवा के दोष पर उड़ने लगा। गुल ने वापस दिल्ली पहुंचने की इत्तला शारिक को नहीं दी। वो घर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी। गुल ने घूमकर तमाम कमरे का जायजा लिया और हर जगह किसी औरत की आमद की निशानियां उसको चकनाचूर करती रहीं और उसका मजाक उड़ाती रहीं। उसने हिकारत से सोचा, जो मर्द ऐसी औरतों से मोहब्बत कर सकता है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। ये सोचकर वो मुतमईन हो गई और सूरत की सुर्खी को गौर से देखने लगी कि अचानक शारिक ड्राइंग रूम में ड्राइंग गाउन में मलबूस गुल के सामने आ खड़ा हुआ। हमें चाय नहीं पिलाओगी? गुल ने चाय की ट्रे उसकी तरफ धकेल दी। शारिक चाय बनाते हुए बोला, कब कर रही हो शादी? जब तुम मुझे तलाक दोगे। और अच्छा, तो फैसला भी कर लिया है? ये कहकर शारिक ने एक खोखला सा कहकहा लगाया। तुम अब इन बातों से बेन्यास हो गए शारिक, और मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है। इस तरह के कुछ लगाने से क्या फायदा? और शारिक जोर से हंस दिया। गुल के सामने दोनों जानो होकर बैठ गया। वो तेजी से उठकर किचन में घुस गई।

रुककर मत जाना, शारिख ने भराई हुई आवाज में कहा और उसके कदमों पर सर रख दिया। गुजरे हुए वो अजियतनाक साल खूबसूरत बेडरूम में किसी दूसरी औरत का विशाल फिरोजी रंग का सूट, टूटी हुई चूड़ियां, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। दूसरे बेड पर उसका बेटा नींद में मुस्कुरा रहा था। रोते रोते गुल ने अपना सर बिस्तर पर टेक दिया और पत्थर की मूर्ति की तरह बेहिश हो गई और दूसरे गाने की आवाज उसके कानों से टकरा रही।

जान की कसम फिल्म का नगमा सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में, और अगली पेशकश पूर्णिमा और कुमार सानू का गाया ये नगमा।

अंदाज फिल्म का नगमा सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में मौसीकी थी नदीम श्रवण की। और यह प्रोग्राम के आखिर में सुनिए बेताब फिल्म का नगमा, आवाजें शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी आरडी बर्मन की।

0: نغمہ ساتھی ملے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में. इसके अंतर्गत सुनिए बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह.
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है. मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह. भारत इसराइल के संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुए हैं. आज ये रिश्ता केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैल चुका है. कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की. दोनों देशों के नेताओं ने भारत इसराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लगातार हो रही प्रगति की समीक्षा की. साथ ही दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोनों देशों ने दोहराया. इससे पहले फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीति साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था. इस विशेष रणनीति साझेदारी के व्यापक आयामों को समझने के लिए हमारे साथ हैं भारत के पूर्व राजदूत श्री अनिल वाधवा जी. वाधवा जी, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
3: धन्यवाद.
2: सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और इसराइल के बीच पहले से ही रणनीतिक साझेदारी थी, ऐसे में अब विशेष रणनीतिक साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है? दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर बात हुई तो इसकी प्रगाढ़ता और इसको लेकर जो सीरियसनेस है दोनों नेताओं के बीच में, तो क्या इसमें नया जुड़ाव हो रहा है?
3: देखिए, पश्चिम एशिया एक व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और कुछ दशक पहले तक यह क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था
2: जी.
3: लेकिन आज वैश्विक निवेश, डिजिटल और संरचना, तकनीकी नवाचार और समुद्री संपर्क और लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है और भारत के लिए यह क्षेत्र विशेष महत्व रखता है. अब इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है और वो इसलिए है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से छोटा होने के बावजूद इसराइल आज विश्व के अग्रणी नवाचार केंद्रों में गिना जाता है. तो आपने खुद ही कहा, जैसे जल प्रबंधन है, कृषि है, साइबर सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां विश्व भर में सम्मान पूर्वक दिखी जाती है. भारत एक विशाल बाजार है, हमारे पास प्रतिभाशाली मानव संसाधन है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और फिर विश्व में सबसे बड़ी डिजिटल आबादी वाला भारत देश है. तो हमारी जो क्षमता है एक दूसरे के पूरक है और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी शक्ति है. आपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत का भी जिक्र किया, तो भारत इसराइली संबंधों को नई ऊंचाई देने में राजनीतिक नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है. हम देखें, जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल के दौरे पर गए थे, उस समय से आज तक दोनों देशों के संबंध में एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई बार एक दूसरे के समक्ष आत्मीयता दर्शाई है. निश्चित रूप से कूटनीतिक राष्ट्रों के बीच संचालित होती है, व्यक्तियों के बीच नहीं होती. फिर भी जब भी हमने देखा है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिले हैं
2: जी,
3: तो उनके बीच स्थापित विश्वास ने दोनों देशों की साझेदारी को एक नई दिशा प्रदान की है
2: जी. जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि भारत और इसराइल के संबंधों की चर्चा अक्सर हम डिफेंस की बात करते हैं, यानी रक्षा सहयोग के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है, लेकिन ये साझेदारी रक्षा से बढ़कर अब तकनीकी, कृषि है, स्वास्थ्य है, नवाचार तक पहुंच चुकी है. इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत इसराइल संबंध अब एक बहुत क्षेत्रीय साझेदारी का रूप ले चुके हैं?
3: हम रक्षा सहयोग आज भी भारत इसराइल संबंधों का सबसे सशक्त आधार है, लेकिन इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में और जो आर्थिक संबंध है वे भी निरंतर विस्तृत हुए हैं. उसके साथ साथ नवाचार एक नया फील्ड है जिसमें इसराइल विश्वभर में स्टार्टअप नेशन के रूप से जाना जाता है और भारत भी आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मुल्क बन चुका है. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग है, साइबर सुरक्षा में दोनों देशों की साझेदारी है और उसके साथ साथ जो भी पश्चिम एशिया में व्यापक परिवर्तन हुए हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग की नई संभावनाएं भारत और इसराइल के बीच में सामने आई हैं। इसके अलावा जो जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता का भविष्य भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें इसराइल की अपनी प्राथमिकता है, और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें भी भारत और इसराइल के बीच में काफी सहयोग हुआ है। उसके साथ साथ दो और इस कनेक्टिविटी के ऊपर दो बड़े मुद्दे हैं भारत और इसराइल के बीच में। एक तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा और जिसको कि हम IMF बोलते हैं, और एक I2U2 जिसमें भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। तो ये दोनों जो हैं इसके चलते कनेक्टिविटी के साथ साथ जो दूसरी चीज उभर के सामने आई है भारत और इसराइल के बीच में, जैसे पोर्ट्स में एक नया आयाम खुला है और पोर्ट में भारत ने हाइफा पोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसको अगर हम पूरी इस नजरिए से देखें तो हम देखते हैं कि भारत का एक 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य है
2: जी।
3: उसमें इसराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसकी भूमिका अहम रहेगी।
2: और नई विशेष रणनीतिक साझेदारी के बारे में जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, क्वांटम टेक्निक्स की बात करें, और इस तरह की जितनी भी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं उन पर इस समय पूरे विश्व का विशेष जोर है और हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत और इसराइल की तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए आपको कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं?
3: जैसे कि आपने रिक्रूट किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको AI बोलते हैं, उसके अतिरिक्त क्वांटम प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर और फिर बायोटेक्नोलॉजी और फिर उन्नत सामग्री विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा, ये सभी क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिक आदान प्रदान और औद्योगिक सहयोग भविष्य की साझेदारी को मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो अगर हम आज की दुनिया में देखें तो कोई भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता या प्राकृतिक संसाधनों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि नवाचार है, अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी है, ज्ञान और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं, जिसको हम उस तरह से अगर हम देखें तो ये सभी इतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। और भारत और इसराइल की साझेदारी इन्हीं आधारों पर विकसित हो रही है। एक ओर भारत के पास विशाल प्रतिभा है और दूसरी ओर इसराइल के पास अनुसंधान है, नवाचार है और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट क्षमता है। तो यही परस्पर जो पूरकता हम देखते हैं दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।
2: बिल्कुल, ये साझेदारी और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी। भारत और इसराइल दोनों वादाजी आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच किस तरह का सहयोग आगे बढ़ सकता है?
3: सहयोग भी दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। आपने जिक्र किया खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध की रोकथाम और महत्वपूर्ण अवसर संरचना की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ता चला आ रहा है। भारत और इसराइल दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता और उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो राडार प्रणालियां हैं, वायु रक्षा प्रणाली है, निगरानी के उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है और फिर ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्निक्स है, समुद्री सुरक्षा उपकरण है, सीमा प्रबंधन प्रणालियां हैं, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत रिजर्व मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में जो सैन्य प्रौद्योगिकियां आगे आएंगी उनका संयुक्त विकास दोनों देश कर रहे हैं।
2: इस समय पश्चिम एशिया की स्थिति को अगर हम देखें तो वादबाजी अत्यंत जटिल है और भारत के इसराइल के साथ गहरे संबंध हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के अरब देशों और खाड़ी क्षेत्रों के देशों के साथ भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत किस तरह अपने सभी प्रमुख साझेदारों के साथ एक संतुलित संबंध बनाए रख सकता है?
3: भारत और इसराइल के संबंधों का विकास वस्तुतः भारत की विदेश नीति के विकास की भी एक कहानी है। जैसे जैसे भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बन रहा है, वैसे वैसे उसने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया है। और यही कारण है कि आज भारत एक ओर इसराइल के साथ अत्यंत घनिष्ठ सामरिक संबंध बनाए हुए है, वहीं पर दूसरी ओर फिलिस्तीनी जनता की वैध आकांक्षाओं और दो राष्ट्र समाधान के के अपने दीर्घकालीन समर्थन पर भी दृढ़ता से कायम है। यही संतुलित दृष्टिकोण आज भारत कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक माना जाता है। और यदि हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक बहुत गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और फिर नई प्रौद्योगिकी और आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार पश्चिम एशिया भी व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। और कुछ दशक पहले हमने देखा था कि ये क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था
2: जी।
3: लेकिन अब नए क्षेत्र खुल चुके हैं, लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भारत पर उभर रहा है। तो भारत का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रवासी समुदाय भी है
2: जी।
3: निवेश भी है और संपर्क परियोजनाएं यूरोप तक पहुंच की नई संभावनाएं खुल गई है। तो इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उठा
2: है जी। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने व्यापार और निवेश सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया था। आपके विचार में आने वाले वर्षों में भारत इजराइल आर्थिक संबंधों के कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं?
3: हालांकि भारत इजराइल संबंधों रक्षा सहयोग बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी निरंतर विस्तर हुए हैं। हीरे के व्यापार से आगे बढ़कर पहले बहुत हीरे का व्यापार हुआ करता था, उसके आगे बढ़कर आज रसायन और औषधि, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य उपकरण, कृषि प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और उच्च तकनीक वाले अनेक क्षेत्रों में व्यापार बढ़ रहा है। निवेश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम आंकड़ों पर एक नजर डालें तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 3.93 बिलियन डॉलर था 2025-26 में, और उसके साथ साथ 443 मिलियन इन्वेस्टमेंट थी भारत की, जिसमें श्री अडानी की जो हाइफा पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ी है। और इजराइल की तरफ से भी 334 मिलियन डॉलर यहाँ पर इंडिया में निवेश हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और इजराइल ने 4 जुलाई 2026 को एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो है उसकी रेटिफिकेशन कर दी है और वो इफेक्ट में आ गया है। तो इसके चलते जो इन्वेस्टमेंट है दोनों तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन तरह की अग्रीमेंट है, उससे निवेश को और ज्यादा आगे बढ़ावा मिलेगा। मुझे लगता है कि जो न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, और जो न्यू मोबिलिटी की तरफ जाने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, भारत और इजराइल उन पर दोनों पर मिलकर काम आगे जरूर करेंगे
2: जी।
3: और फिर मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, साइबर सुरक्षा है, स्मार्ट विनिर्माण है, डिजिटल प्रशासन है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सहयोग के अनुसंधान को दोनों देश बढ़ावा दे रहे हैं
2: जी। और राधा जी, अंत में यदि आप आने वाले सालों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत इजराइल जो विशेष रणनीतिक साझेदारी को आप किस रूप में विकसित होते हुए देखेंगे बहुत ही संक्षिप्त में?
3: अगर हम भविष्य की ओर देखें तो भारत और इजराइल के बीच सहयोग की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक व्यापक दिखाई देती हैं। हमने जिक्र किया अभी एआई का और क्वांटम प्रौद्योगिकी का, सेमीकंडक्टर्स का, साइबर सुरक्षा का, रक्षा विनिर्माण का, फिर हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वास्थ्य प्रणालियां, डिजिटल अवसंरचना, इन सभी में हमारी साझेदारी की नई पहचान होगी। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि इजराइल भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, भारत को अगर इजराइली की नजर से देखें तो एक बड़ा लोकतंत्र है और एक बहुत प्रमुख अर्थव्यवस्था है, तो भविष्य में विशाल संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक और बिंदु मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है हमारी जो मोबिलिटी अग्रीमेंट, जिसके

0: अभी तो 20,000 इंडियन वहां पर काम करते हैं, लेकिन एक एडिशनल लेबर प्रोटोकॉल हमने साइन किया है जिसके तहत 50,000 भारतीय नागरिक इसराइल में काम करेंगे, और ये 5 साल का एक व्यापक प्रोग्राम है।
1: जी बिल्कुल माधव जी, आपने भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन का एक बजा चाहता है, अब आलमी खबरें नशी की जाएंगी।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के तलबा से खिताब करते हुए कहा है कि जो तलबा अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराज को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। अकवामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुजाहिरीन की हलाकत की गैर जानबदाराना तफ्तीश के लिए कहा है। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने के लिए कहा गया है। और अमरीका के शहर यूजेन में 20 साल तक की उम्र के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ी आशीष यादव ने मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो तलबा ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो न सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगियों में एक नए बाब की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने ये बात IIT दिल्ली में 57वीं जलसे तकसीम स्नात से खताब करते हुए कही। वजीर आजम ने ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को मुबारकबाद भी दी और उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया क्योंकि वो अब एक नया सफर शुरू करने वाले हैं। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया था। जनाब नेतन्याहू ने अपने और जनाब मोदी के दरमियान गुफ्तगू से मुतालिक जनाब मोदी की पोस्ट का जवाब देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये शुक्रिया अदा किया। जुमेरात की शाम फोन कॉल के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत इसराइल खुसूसी दिफाई शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया था और मगरबी एशिया की ताजा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की थी। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद की जाने तलफ हो गईं और 11 दूसरे जख्मी हो गए। यह हादसा तिस्सा थाने के तहत बैरागढ़ में चोलांज मोड़ के पास पेश आया। रियासत के हंगामी हालात से निमटने वाले मरकज के मुताबिक हादसा सुबह 7:15 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई खबरों से पता चलता है कि यह प्राइवेट बस बीरागढ़ से चंबा जा रही थी तभी चोलांज मोड़ के पास सड़क से जा गिरी। इस वाकये पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गहरे सदमे का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन के साथ ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से बैरूनी अतियात के जाब्तों में तरमीम से मुतालिक भारत के मुजवजा बिल पर एतराज जाहिर किया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी से मुतालिक उसके मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट फैसले करती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में कही। भारतीय जहाजों और जहाजियों की हिफाजत और सलामती के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा है कि भारत इस मामले को आला तरीन तरजीह देता है। उन्होंने कहा है कि पूरे खित्ते खलीज खित्ते में भारतीय मिशन, जहाजरानी की वजारत और समंदर से मुतालिक हुक्काम के लगातार राबते में हैं।

ने कहा है कि भारत बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी व तजारत के लिए कहता रहेगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के माबैन दफा के समझौते के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दफाई समझौते के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा है कि भारत इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नजर रखे हुए है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन की हलाकत की गैर जानिबदाराना तफ्तीश के लिए कहा है। अक़वामे मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा है कि अगर पुरामन मुजाहिरीन को नुकसान पहुंचता है तो जवाबदेही लाजमी होनी चाहिए। इससे पहले अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने बेचैनी के दौरान सभी अमवात की फौरी, मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए कहा। इन अमवात में मुजाहिरीन और हिफाजती अमले के अफराद दोनों ही शामिल हैं। यह आवाज पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कराए गए इंतखाबात में मुबैना बदउनवानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के दौरान उठाई गई है। खबरों के मुताबिक मुश्तरका आवामी एक्शन कमेटी JAAC की क्यादत में हालिया मुजाहिरों के दौरान तकरीबन 50 अफराद हलाक हो गए थे। ये कमेटी मकामी कानून साजेदारे के इंतखाबात में चार बाहरी अफराद के लिए रिजर्व सीटों से मुतालिक पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सलामती कौंसिल की 1948 की 40वीं करारदाद का तकाजा है कि पाकिस्तान उस इलाके से अपनी फौजों और शहरियों को वापस बुलाए जो उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सेनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत रूस और उसकी पेट्रोलियम मसनूआत के खरीदार मुल्कों पर बंदिश लगाई जाएगी जिनमें चीन और दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीकी सेनेट ने दावा किया है कि इस तरह की तजारत से यूक्रेन जंग को हवा मिलेगी। इस बिल का नाम बदलकर रूस और ईरान पर पाबंदी लगाने वाला 2026 का लिंडसे ओ ग्राहम बिल रखा गया है जिसे सेनेट ने 11 के मुकाबले 86 वोटों से मंजूरी दे दी। इस बिल की रूह से सदर ट्रंप इंतजामिया को यह इजाजत मिल गई है कि वो उन मुल्कों से अपने यहां आने वाले अशिया पर 100% महसूल लागू कर दे जो रूसी तेल और गैस के 5 सरकर्दा बरामदकार हैं। इस बिल के साथ ही ईरान पर आयद बंदिशों के 1996 के कानून को 2031 तक तौसी हासिल हो जाएगी। इस कानून के तहत उन कंपनियों पर जुर्माना आयद है जो ईरान के तबानाई शोबे में सरमाया लगाते हैं। ऐसे मौके पर जबकि मुल्क असीमा योम आजादी मनाने की तैयारियां कर रहा है, इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देही रोजगार तरबियती इदारे रसेती उधमपुर में तरबियत हासिल करने वाली 30 खवातीन और लड़कियों को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हाथ से कौमी परचम तिरंगा के मौजू पर लवाजमात और सजावटी सामान तैयार करके हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोह दे रहे हैं। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सकाफत की एक अहम मीटिंग आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुनाकिद होगी। इस मीटिंग में रुकन मुल्कों के माबैन सकाफती विरसे, म्यूजियम, तख्लीकी मईशत और सकाफती तबादलों पर बातचीत की जाएगी। वज़राए सकाफत और आवाम से आवाम के राबतों में ताउन को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत करेंगे। यह मीटिंग ब्रिक्स के वज़राए सकाफत के एलामिये की मंजूरी के साथ इख्तिताम पजीर होगी। मीटिंग के बाद वजीर आला मोहन यादव ब्रिक्स के वजराए सकाफत के लिए जोहरानी का एहतमाम करेंगे। इसके बाद ये वजराए खारजा और मंदुबीन सांची के लिए रवाना हो जाएंगे। वो बौद्ध मालामाल विरसे और कदीम फन तामीर का मुशाहिदा करेंगे। भोपाल में जारी ब्रिक्स सकाफती समिट के दौरान गैर मुल्की मंदुबीन ने कल शहर की विरासत और फितरत की खूबसूरती का नजारा किया। उन्होंने गौहर महल, इकबाल मैदान और मोती मस्जिद की सैर की। उन्होंने वन विहार नेशनल पार्क की भी सैर की। उन्होंने भोपाल की जंगलाती जिंदगी और मालामाल हयातियाती तनवु का भी नजारा किया। भारत ने अमेरिका के यूजैन में जारी एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे रोज आशीष यादव के मर्दों के जेवेलियन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने के साथ अपने तमगों का खाता खोला। 19 साल खिलाड़ी ने अपनी तीसरी कोशिश में 74.09 मीटर की अपनी बेहतरीन थ्रो की और दूसरे मकाम पर रहे। आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में मुनाकिदा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था जहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ अब तक कायम आलमी जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। जनूबी अफ्रीका के जान

0: डिक हेमेंस ने 80.5 सिफर मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के तलबा से खिताब करते हुए कहा है कि जो तलबा अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन की हलाकत की गैर जानिबदाराना तफ्तीश के लिए कहा है। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने के लिए कहा गया है और अमरीका के शहर यूजेन में 20 साल तक की उम्र के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ी आशीष यादव ने मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

श्रोताओं, आपने अभी सुना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मोहम्मद रफी जी की आवाज में। श्रोताओं, ये केवल एक गीत नहीं है बल्कि उन अमर वीरों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

0: जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। दोस्तों, हकीकत भारतीय सिनेमा की उन विरल फिल्मों में से एक है जिसने युद्ध को केवल गोलियों और बारूद के शोर के रूप में नहीं बल्कि सैनिकों की भावनाओं, उनके सपनों, उनके परिवारों, उनके प्रेम और उनके अदम्य साहस के साथ प्रस्तुत किया। यही कारण है कि 6 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये फिल्म उतनी ही प्रभावशाली और प्रासंगिक महसूस होती है। निर्देशक चेतन आनंद ने जिस संवेदनशीलता के साथ 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि को पर्दे पर उकेरा, वो भारतीय फिल्म इतिहास में एक मिसाल बन गई। मदन मोहन का कालजयी संगीत और कैफी आजमी के भावपूर्ण गीतों ने इस फिल्म को अमरता प्रदान की। बलराज सहनी, धर्मेंद्र, प्रिय राजवंश, विजय आनंद और सभी कलाकारों के सशक्त अभिनय ने इस कथा को जीवंत बना दिया। इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि सीमा पर खड़ा सैनिक केवल एक वर्दीधारी जवान नहीं होता, बल्कि वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का मित्र भी होता है। वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर राष्ट्र की रक्षा का दायित्व निभाता है। शायद इसी भावना को हकीकत ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया। तो दोस्तों, हम बात करते रहेंगे फिल्म हकीकत की। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, अभी आपने सुना हकीकत फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। लता जी की आवाज में जरा सी आहट होती है। ये गीत फिल्म का एक अत्यंत मधुर और रोमांटिक गीत है। युद्ध की कठोर परिस्थितियों के बीच भी प्रेम की कोमल भावनाएं कैसे जीवित रहती हैं, इसका सुंदर चित्रण इस गीत में देखने को मिलता है। मदन मोहन की आवाज और लता जी की मदन मोहन जी की मधुर धुन और लता जी की आवाज इस गीत को अविस्मरणीय बना देते हैं। जिस तरह ये फिल्म भूलने लायक नहीं है, वैसे ही इसका गीत भी उतना ही और संगीत भी उतना ही अमर है। तो इसके साथ चलिए आपको एक और गीत सुनवाते हैं, मदन मोहन जी की ही धुन और मोहम्मद रफी की आवाज में, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का।

रन से लो मैं चमन को चला वीरन से, क्षमा है कब से जुदा परवन से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से, दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़

नेतृत्व में सैनिक कठिन मौसम और सीमित संसाधनों के बावजूद पूरे उत्साह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसी दौरान दर्शकों की मुलाकात होती है कैप्टन बहादुर सिंह से, जिनकी भूमिका निभाई है धर्मेंद्र ने। बहादुर सिंह एक निर्भीक सैनिक हैं, लेकिन उनके भीतर एक संवेदनशील इंसान भी बसता है। लद्दाख के एक गांव में उनकी मुलाकात होती है एक सरल और निश्चल युवती अंगमू से। दोनों के बीच धीरे धीरे स्नेह पनपता है, लेकिन सीमाओं पर बढ़ता तनाव इस प्रेम कहानी पर भी अपनी छाया डालने लगता है। तो दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसा गीत जो प्रेम की मासूम प्रतीक्षा और मन की हलचल को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना 6 दशक पहले था।

दोस्तों आपको इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताएं तो फिल्म के संगीतकार मदन मोहन स्वयं भारतीय सेना में रह चुके थे। शायद यही कारण था कि सैनिकों के मन की भावनाओं को उन्होंने अपनी धुनों में इतनी गहराई से उतारा। और वहीं कैफी आजमी ने भी गीत लिखते समय केवल प्रेम नहीं बल्कि कर्तव्य विरह और राष्ट्र प्रेम को शब्द दिए। यही वजह है कि हकीकत का संगीत समय की कसौटी पर आज भी उतना ही प्रभावशाली है। यहाँ सीमा पर हालात बिगड़ते जा रहे थे, सैनिकों को यह एहसास होने लगता है कि दुश्मन किसी भी समय हमला कर सकता है। हर सैनिक अपने परिवार, अपने सपनों और अपने भविष्य को पीछे छोड़कर केवल एक ही उद्देश्य के साथ डटा है, वो है देश की रक्षा। ऐसे ही भावों को शब्द देता है अगला गीत। ये गीत साहिराना अंदाज नहीं बल्कि एक सैनिक के टूटते हुए दिल की सच्ची आवाज है। मोहम्मद रफी की दर्द भरी गायकी और कैफी आजमी के मार्मिक शब्द इसे अमर बना देते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इन गीतों के माध्यम से और फिल्म की कहानी के माध्यम से हमने केवल एक फिल्म के संगीत का आनंद ही नहीं लिया, बल्कि उस दौर की उस संवेदनाओं, संघर्षों और राष्ट्रप्रेम को भी महसूस किया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से को हम यहीं विराम देंगे और आपको छोड़ जाएंगे इस गीत के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए इसका गीत।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी दिल्ली के 57वें कन्वोकेशन समारोह को संबोधन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित को तरजीह देने की अपील की। झारखंड सरकार ने आज भर्ती प्रीक्षाओं में कथित बेनियमियों खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों से गलबात की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सवेरे एक बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 11 और जख्मी हो गए। भारत के आशीष यादव ने अमरीका के यूजीन विश्व एथलैटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मर्दों के जैवलिन थ्रो मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। भारत की अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों को अपील की है कि वह अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित को तरजीह दें और अपने आप तो पुछन कि उन्होंने काम देश को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। श्री मोदी ने यह टिप्पणियां आईआईटी दिल्ली की 57वीं कन्वोकेशन को संबोधन करते हुए की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर पीढ़ी अपने समय की विलक्षण चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभाती है। उन्होंने कहा कि डिग्रियां हासिल कर रहे विद्यार्थियों वालों किए जाने वाले काम विकसित भारत के राह महत्वपूर्ण प्रभाव पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नवे उभर रहे खेत्र ने जो नौजवानों लिए नवे मौके प्रदान कर रहे हैं। सैमी कंडक्टर पुलाड़ और ड्रोन वर्गे खेत्रां दी मिसाल दिंदे उन्होंने कहा कि भारत सारे खेत्रां विच आत्म निर्भर बनन वल काम कर रहा है।
1: सैमी कंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता दी यह पहल विकसित भारत के निर्माण लिए एक मजबूत नींव वजो काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, आईआईटी दिल्ली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हरीश सालवे और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी भी समारोह में मौजूद सन। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली विखे परम प्रज्ञा नामक एक उच्च कुशलता वाली कंप्यूटिंग सहूलत का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार भारतीय सिक्ख्या प्रणाली को मजबूत करने समय सिर और प्रभावशाली ढंग प्रोग्रामों लागू करने वचनबद्ध है। उन्होंने कल रात सिक्ख्या मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग की प्रधानगी करदे गल कही। श्री जोशी ब्रिक्स देशों के सिक्ख्या मंत्रियों की 13वीं मीटिंग तो बाद दिल्ली परते ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि मीटिंग में मंत्रालय के मौजूदा प्रोग्रामों की समीक्षा की गई। मीटिंग में देश की सिक्ख्या प्रणाली वाले लोड़ीदा ध्यान देने और भविख की कार्रवाई लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रीक्षाओं दौरान कथित बेनियमियों लेकर बनिया अड़िका हुण हल वल वधदा जापदा है। अज राज सरकार ते प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के वक् वक् समूहों विचकार उच्च पदरी गलबात का दूजा गेड़ होया। रांची में पिछले कई दिनों तो भुख हड़ताल ते प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों नाल बने अड़िके नूं हल करने लई राज सरकार ने अपने यतन तेज कर दिते ने। सरकार वालों गठित विशेष मंत्रीमंडली कमेटी ते विद्यार्थी जथेबंदियों के नुमाइंदियों विचकार गलबात का दूजा गेड़ अज रांची के स्टेट गैसट हाउस विखे होया। सुखावें माहौल विच गलबात हुई। सरकार की नुमाइंदगी कर रहे मंत्री ने कहा कि वह प्रीख्या प्रणाली में व्यापक सुधार करने लिए वचनबद्ध ने। वधेरे पारदर्शिता यकीनी बनाने लिए सरकार ने एक अधिकृत फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस राही विद्यार्थी सारिया संबंधित धिर

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीब रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खाना और ड्रोन जैसे खुद के भारत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तहान में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है और अमेरिका में 20 साल तक की उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में आशीष यादव ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मरकजी हैसियत दें। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो खुद से ये पूछें कि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को किस तरह फायदा पहुंच सकता है और किस तरह जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। जहां मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हर नस्ल को अपने जमाने में मखसूस चैलेंजों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं।
1: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
0: जवाहर मोदी ने कहा है कि इस इदारे से ग्रेजुएट करने वाले तलबा ने जो काम किए हैं 30-35 वर्षों में उनके असरात विकसित भारत के सफर पर नुमाया तौर पर असरअंदाज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर कर सामने आ रहे हैं जहां नौजवानों को नित नए मौके मयसर होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स का जिक्र किया और ये भी कहा कि भारत इन सभी शोबों में खुद किफालत के हुसूल के लिए काम कर रहा है।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: जहां मोदी ने तलबा से कहा कि उन्हें तनख्वाह, मुलाजमत या शोबे की बुनियाद पर जहां वो काम करते हैं दूसरों से मुआवजना करने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जिंदगी दर्जाबंदी का नाम नहीं है और न ही इसका मकसद दूसरों से मुकाबला करना है, बल्कि ये मुकाबला खुद ही से करना है। जहां मोदी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो उन्हें हर दिन गुज़श्ता कल से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। झारखंड हुकूमत ने JPSC और JSSC की जानिब से मुनाकिद कराए गए इम्तहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर एहतजाज कर रहे तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद से आज बातचीत की। यह मुलाकात रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हुई। तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद की नुमाइंदगी करने वाला 8 रुकनी वफद सरकारी अफसरान से बातचीत कर रहा है। इम्तहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर रियासती राजधानी में गुज़श्ता हफ्तों से जारी मुजाहिरों के बाद ये बातचीत हो रही है। तलबा के वक्त और हुकूमत के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कल शाम मुनाकिद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के साथ हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चुराह असेंबली हल्के में तीसा पुलिस स्टेशन हुदूद में चालुंज मोड़ के करीब बीरागढ़ में हुआ। हलाक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इमरजेंसी कार्रवाईयों से मुतालिक रियासती सेंटर के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 7:15 बजे के करीब पेश आया। इत्तेदाई इत्तलात के

मुताबिक ये प्राइवेट बस बीरागढ़ से चंबा जा रही थी, जब ये चालूनी मोड़ के करीब सड़क से नीचे उतर गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने गमजदा कुटुंबों के साथ ताजियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतालिक साजिश में मुलविस दो मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये दो मुलजिम भारत पाकिस्तान सरहद से IED आतशी हथियार और हेरोइन मुबैना तौर पर स्मगलिंग करने में मुलविस थे। हथियारों वगैरह का पंजाब और नई दिल्ली में मंसूबाबंद हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। ये फर्द जुर्म कल मोहाली में कौमी जांच एजेंसी NIA की खसूसी अदालत में दायर की गई। मुजरमान के नाम शुभम कुमार और जसवीर चौधरी बताए गए हैं। शुभम कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि जसवीर फरार बताया जाता है। भारतीय महकमे मौसमियात ने राजस्थान और उड़ीसा में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से बालतल के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज के दिन मुअत्तल कर दी गई है। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़कों की हालत की वजह से यात्रा मुअत्तल की गई है। तहम बालतल से पवित्र गुफा की जानिब यात्रा जारी रहेगी। सुबह से 1200 से ज्यादा अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं। दर्शन कर चुके यात्रियों को बालतल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मेट्रिक टन खेप पहली मरतबा बिहार से ऑस्ट्रेलिया बरामद की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि ये खेप सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदी गई, जिससे उन किसानों को बाजार की कीमत के मुकाबले 18% ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। भारतीय रेलवेज की जानिब से केरलम के ओणम त्योहार के लिए ऐलान करदा खसूसी ट्रेन खिदमत की तादाद बढ़कर 112 हो गई है। खसूसी खिदमत ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चलाई जा रही हैं। भारत ने अमरीका के यूजेन में जारी एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे रोज आशीष यादव के मर्दों के जेवेलियन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने के साथ अपने तमगों का खाता खोला। 19 साल खिलाड़ी ने अपनी तीसरी कोशिश में 74.09 मीटर की अपनी बेहतरीन थ्रो की और दूसरे मकाम पर रहे। आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में मुनाकदा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था, जहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ अब तक कायम आलमी जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। जनूबी अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेमेंस ने 80.50 मीटर के थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। जनूबी कोरिया के आसाम में जारी कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चांगहर खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय खिलाड़ी रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से शिकस्त दी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए आला दर्जाबंदी की हामिल आलमी नंबर 22 जापान की हिना अकेची को 3 गेम्स के सनसनीखेज मुकाबले में हरा दिया था। खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में कल अश्मिता का मुकाबला चीन की क्यूहान से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद किफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं, जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की शुरू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारतीय मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बारतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बढ़ेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा।

0: झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
3: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्कल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
5: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर ताकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स

भारी आवाज, धीमी गति से संवाद बोलने का अपना अलग अंदाज, सहज हास्य और बेहतरीन अभिनय, इन सब ने उन्हें हिंदी फिल्मों के सबसे प्रिय चरित्र अभिनेताओं में शामिल कर दिया। आज का यह विशेष अंक समर्पित है अभिनेता असित सेन को। असित सेन ने लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कभी बड़ा नायक बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिस भी भूमिका में नजर आए उसे यादगार बना दिया। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बिना किसी बनावटी अभिनय के केवल अपनी सहजता से दर्शकों का दिल जीत लिया। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे उनके जीवन की रोचक बातें, उनके अभिनय सफर के कुछ अनसुने किस्से और सुनेंगे वे सदाबहार गीत जो उन पर फिल्माए गए या जिन दृश्यों में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। तो आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

संग झांझ जप बाज तापर नाच कृष्ण कन्हैया दो तीन के संग राज रचावत नाच चावत ताता तैया तै तैया तै तैया खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नित्य कियो तहनागन तैया कोप के इंद चढ़ो बिज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा

0: नमस्ते है सबको।
1: नमस्ते बाबू चाचा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। द मॉर्निंग रेज़ आर कम।

na na na de de dum na na na de de dum na na na de de dum na na na de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum de de dum. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के हमारे कलाकार हैं असित सेन। असित सेन का जन्म तत्कालीन अविभाजित बंगाल में हुआ। रंगमंच से जुड़ाव ने उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाई। बाद में उन्होंने बांग्ला फिल्मों में काम भी किया और धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। अक्सर लोग अभिनेता असित सेन और निर्देशक असित सेन को एक ही व्यक्ति समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग व्यक्तित्व थे। अभिनेता असित सेन अपनी विशिष्ट आवाज और हास्य अभिनय के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे बिना किसी अतिशयोक्ति के दर्शकों को हंसा देते थे। उनके चेहरे के भाव, संवाद, बोलने की लय और ठहराव अपने आप में अभिनय का पाठ थे।

दोस्तों 70 का दशक हिंदी सिनेमा में चरित्र अभिनेताओं का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय यदि किसी फिल्म में ओम प्रकाश, डेविड, आईएस जौहर, कैस्टो मुखर्जी, जॉनी वॉकर और असित सेन जैसे कलाकार हों तो मनोरंजन अपने आप सुनिश्चित हो जाता था। जी हाँ, असित सेन की सबसे बड़ी खूबी थी कि वे छोटे से छोटे दृश्य को भी यादगार बना देते थे। उनका संवाद, बोलने का धीमा अंदाज बाद में अनेक हास्य कलाकारों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सहजता किसी के लिए दोहराना आसान नहीं था।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आसित सेन की। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों ने आसित सेन की प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह पहचाना। बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, गोलमाल जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाए। उनका अभिनय कभी भी कहानी पर हावी नहीं होता था बल्कि उसे और विश्वसनीय बना देता था। इसी कारण दर्शकों को लगता था कि वे कोई अभिनेता नहीं बल्कि अपने आसपास का ही कोई परिचित व्यक्ति हैं।

दोस्तों, असित सेन के अभिनय का एक और महत्वपूर्ण पहलू था समय की सटीक समझ। कॉमेडी केवल अच्छे संवादों से नहीं बनती, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने से बनती है। असित सेन इस कला में पारंगत थे। वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के दृश्य को प्रभावशाली बना देते थे। आज भी उनकी फिल्में देखी जाएं तो उनका अभिनय बिल्कुल ताजा और स्वाभाविक सा लगता है।

मित्रों, आसिद सेन उन कलाकारों में से थे जो शूटिंग के दौरान भी अपने सहयोगियों के बीच अत्यंत विनम्र और मिलनसार माने जाते थे। तो आज हमने बात की कलाकार आसिद सेन की, कार्यक्रम एक ही कलाकार में। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए ये गीत।

0: वॉल्यूम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे खुद किफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की मजबूत बुनियाद बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आईआईटी के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। भारत ने मुजवजा एफसीआरए बिल पर अमरीका के कानून साज इदारे के एक मेम्बर के एतराज को रद्द कर दिया है और कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अपराध हलाक हो गए और 11 जख्मी हो गए। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिया आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और अमेरिका में 20 साल तक की उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में आशीष यादव ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के तलबा पर जोर दिया है कि वह अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मरकजी हैसियत दें। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा से कहा कि वह खुद से पूछें कि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को किस तरह फायदा पहुंच सकता है और किस तरह जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। जनरल मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर नस्ल को अपने जमाने में मखसूस चैलेंजों का सामना करना पड़ता है और वह अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। जनरल मोदी ने कहा कि इस इदारे से ग्रेजुएट होने वाले तलबा ने जो काम किए हैं 30-35 वर्षों में उनके असरात विकसित भारत के सफर पर नुमाया तौर पर असरअंदाज होंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर कर सामने आ रहे हैं जहां नौजवानों को नित नए मौके मयसर होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में सेमीकंडक्टर खला और ड्रोन्स का जिक्र किया और यह भी कहा कि भारत इन शोबों में खुद किफालत के हुसूल के लिए काम कर रहा है। जनरल मोदी ने तलबा से कहा कि वो तनख्वाह मुलाजिमत या शोबे की बुनियाद पर जहां वो काम करते हैं दूसरों से मवाजना करने से गुरेज करें। वजीर आजम ने कहा कि जिंदगी दर्जाबंदी का नाम नहीं है और न ही इसका मकसद दूसरों से मुकाबला करना है बल्कि यह मुकाबला खुद से ही करना है। जनरल मोदी ने तलबा को मशवरा दिया कि उन्हें हर दिन गुज़िश्ता कल से ज्यादा बेहतर बनने के लिए काम करना चाहिए। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की जानिब से बैरूनी अतियात के जाब्तों में तरमीम से मुतालिक भारत के मुजवजा बिल पर एतराज जाहिर किया है। भारत ने कहा कि कानून साजी से मुतालिक उसके मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट फैसले करती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात नई दिल्ली में नामा निगारों को जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में कही। भारतीय जहाजों और जहाजरानों की हिफाजत और सलामती के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरीन तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि पूरे खलीज खत्ते में भारतीय मिशन जहाजरानी की वजारत और समंदर से मुतालिक हुक्काम के लगातार रबते में है। उन्होंने कहा कि भारत बैन अवी आबी गुजरगाहों के रास्ते महफूज और बिना रोक टोक जहाजरानी और तिजारत के लिए कहता रहेगा। पाकिस्तान तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन दिफा के समझौते के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई समझौते के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नजर रखे हुए है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के साथ हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चोरा असेंबली हल्के में तिस्सा पुलिस स्टेशन हदूद में चलवंज मोड़ के करीब बैरागढ़ में हुआ। हलाक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इमरजेंसी कार्रवाईयों से मुतालिक रियासती सेंटर के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 7:15 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक यह प्राइवेट बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी जब ये चलवंज मोड़ के करीब सड़क से नीचे उतर गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने गमजदा कुंबों के साथ ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। झारखंड हुकूमत ने JPSC और JSSC की जानिब से मुनक्कद कराए गए इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर एहतजाज कर रहे तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद से आज बातचीत की। ये मुलाकात रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हुई। तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद की नुमाइंदगी करने वाला 8 रुकनी वफद सरकारी अफसरान से बातचीत कर रहा है। इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर रियासती राजधानी में गुज़िश्ता हफ्तों से जारी मुजाहरों के बाद ये बातचीत हो रही है। तलबा के वफद और हुकूमत के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कल शाम मुनक्कद हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल हमलों में कम से कम 3 अफराद मारे गए जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। आज सुबह सवेरे किए गए इन हमलों में कीव के मशरक में वाकई इलाकों को निशाना बनाया गया। इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबरा तिमूर ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सर्बिया की राजधानी बलग्राद पहुंच गए हैं जो इस मुल्क का उनका पहला दौरा है। खबरों में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की रूस के मिसाइल हमलों के खिलाफ बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करने के गरज से इस तरह के दौरे कर रहे हैं।

0: सर्बिया के सदन ने रूस पर पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता सर्बिया ने यूक्रेन को इमदाद फराहम की है और जंग के बाद तामीर नौ में भी मदद करने का वादा किया है, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD ने भारत में नए डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI वेरीफाई लॉन्च करने के लिए भारत में ऑस्ट्रेलिया के तालीमी नुमाइंदों की एसोसिएशन AAERI के साथ इश्तराक किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने इतला दी है कि डिजिटल लॉकर से मरबूत यह प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों के लिए अप्लाई करने वाले भारतीय तलबा को अपने तालीमी शनाख्त से वाबस्ता और माली दस्तावेजात को महफूज और डिजिटल तरीके से वेरीफाई करने में सहूलत फराहम करेगा। AAERI के सालाना कन्वेंशन के दौरान नई दिल्ली में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म कागजी कामकाज को रजामंदी पर मबनी तरीकेकार से बदलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों को दस्तावेजात जारी करने वाले मजाज अथॉरिटीज के रास्ते वेरीफाई करदा डिजिटल रिकॉर्ड्स तक रसाई फराहम करेगा। कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि GI टैग वाले मिथिलिया मखाना की 18 मैट्रिक टन खेप पहली मरतबा बिहार से ऑस्ट्रेलिया बरामद की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि यह खेप सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदी गई है, जिससे उन किसानों को बाजार की कीमत के मुकाबले 18% ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से बालतल के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज के लिए मुअत्तल कर दी गई है। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़कों की हालत की वजह से यात्रा मुअत्तल की गई है। ताहम बालतल से पवित्र गुफा की जानिब यात्रा जारी रहेगी। सुबह से 1200 से ज्यादा अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं। दर्शन कर चुके यात्रियों को बालतल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतालिक साजिश में मुलविस दो मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये दोनों मुलजिम भारत पाकिस्तान सरहद से IED आतिशी हथियार और हेरोइन मुबैना तौर पर स्मगल करने में मुलविस थे। ये फर्द जुर्म कल मोहाली में कौमी जांच एजेंसी NIA के खसूसी अदालत में दायर की गई। मुलजिमीन के नाम शुभम कुमार और जसवीर चौधरी बताए गए हैं। शुभम गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जसवीर फरार बताया जाता है। जनूबी कोरिया के आसन में जारी कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिया खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय खिलाड़ी रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से शिकस्त दी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए आला दर्जेबंदी की हामिल आलमी नंबर 2 जापान की हिना अकेची को 3 गेम्स के सनसनीखेज मुकाबले में हरा दिया था। भारत ने अमेरिका के इग्वेन में जारी एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे रोज आशीष यादव के मर्दों के भाला फेंकने में चांदी का तमगा जीतने के साथ अपने तमगों का खाता खोला है। 19 साल के खिलाड़ी ने अपनी तीसरी कोशिश में 74.09 मीटर की बेहतरीन थ्रो की और दूसरे मुकाम पर रहे। आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने साल 2016 में पोलैंड में मुनक़दा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था, जहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ अब तक कायम आलमी जूनियर रिकॉर्ड्स बनाया था। जनूबी अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेंसन्स ने 80.50 मीटर के थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद की फालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं, जो विकसित भारत की मजबूत बुनियाद बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वह अपने फैसले में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। भारत ने मुजवजा FCRA बिल पर अमरीका के कानून साजी इदारे के मेम्बर के एतराज को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए और 11 दीगर जख्मी हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। दोस्तों, कुछ वक्त कुछ लम्हात हर कौम की जिंदगी बहुत अहम होते हैं। जहां तक हिंदुस्तानी कौम की बात है, अगस्त का महीना हमारे लिए बेहद अहम है। और अगस्त के महीने का यह हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, यानी 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का हफ्ता, हमारी जिद्दोजहद आजादी का अक्कास है। ان دنوں بہت سی ایسی تحریکات اٹھی جنہوں نے جدوجہد آزادی کو مضبوطی عطا کی اور دوام بخشا. ان میں ایک تھی بھارت چھوڑو تحریک جس نے ہندوستان سے انگریزوں کو جانے پر مجبور کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تحریکات تھیں جنہوں نے اس جدوجہد کو توانائی بخشی. بہرحال آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے اسی پس منظر میں لیے ہیں.

राणा कपूर और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म थी पूरब और पश्चिम। नगमणिकार सिंह दीवर, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी, और लीजिए सुनिए कैसरी फिल्म का नगमा, मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ, आवाज भी प्राग की है।

के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह लोकगीतों के प्रोग्राम में आज समाज फरमाइए पंजाबी लोकगीत।

सुबह इन लोकगीतों के प्रोग्राम में सामाइन आज आप सुन रहे थे डोली गुलेरिया के गाए पंजाबी लोकगीत। इसके साथ ही आज का लोकगीतों का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशा खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है दो रास्ते।

वनडे शैलेंद्र सिंह और साथी को आप सुन रहे थे फिल्म थी बॉबी, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है मेरा गांव मेरा।

अभी फिल्म का नाम आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म का नगमा, नगमा निगार साहिल, मौसीकार रवि।

दिल में ठुमका कमर पे चोटी लटके खुद गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी छक्के हो तेरा।

हम दीवाने मस्ताने, ओ जाने जरा नजरे मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी चक्के। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला।

खरे खरे जाती है क्यों परे परे तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को फंसा दूं मैं पास अगर तू आ जाए सांस सांस तक

0: रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: सावन भादो फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मुस्कार थे सोनिक ओमी।

कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी।

क्या कहा आपने? बरसों से तो कहता आया आई लव यू हर दिन हर पल यही कहूँ मैं आई लव यू सुबह सवेरे।

अनंत कुमार की उत्तर कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आप सुन रहे थे कर्मा फिल्म का ये नगमा।

झिलमिल तारा चमक, जगमग जगमग नैया

मन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे

ऑल इंडिया रेडियो दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते प्रोग्राम घिन के हाजिर हाँ। कुछ बाता कुछ गीत आज दे प्रोग्राम विच मैं घिन के आई हाँ कुछ बाए चंगे गीत ते शुरुआत करेंदे है सुनन आलियो पंजाबी गायकी विच सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दे गाए गीतां दा जवाब नहीं। उन्हां दे गीतां विच पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू आंदी है। पंजाब दी मिट्टी दी गाल छिड़ी ता बाजरे दा सिट्टा चेते आ गया ते इस उत्ते पूरा गीत ही बन गया ते गीत भी बड़ा मजेदार गीत है। बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया रुखड़ा जांदा माइया असां गली विचो मोड़िया। गीत दे बोल एडे मजेदार हिन ते गीत केदा मजेदार हो सी ते मैं तुहा को सुनवेंदी हां ओ गीत सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दियां आवाज़ां विच।

ए हाई सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दा गाया गीत पसंद आया हो सी सुनन आलियो मिलन है ता विछोड़ा भी है तुसा समझ गए हो सो कि हुण जेड़ा गीत मैं तुहा को सुनवेंदी पई हां उस विच विछोड़े दी गाल ए प्रेम मोहब्बत दी गाल ए छेर छेरियां दे मोहब्बत दी गाल जाली मर्द दी मोहब्बत दी गाल जाली मर्द दी मोहब्बत विच विछोड़े दी गाल अपने माही नाल दिल दियां डूंगाइयां तू वद के प्यार करन आली छुहेर क्या दिए छड़ जान वालिया तू किथे दिल ला लिया विछोड़ा तदण ही पौंदा है जदण दिल किथाई बियाह वंज लगदा है माही दे विछोड़े विच छुहेर दे दिल दा हाल दसेंदा ए गीत सुनेंदे है सतविंदर बिट्टी दी आवाज़ विच।

सच दसो तुहाकू है गीत पसंद आया के ना? ये गीत है हरजीत हरमन दी आवाज विच। हुन अखीर विच मैं तुहाकू सुनवेंदी पई हां एक प्यार भरा गीत। ये प्यार जडन थिवेंदा है ना? बस थिवेंदा है, प्यार कीता नहीं वेंदा। नजदीकियां प्यार विच बदल वेंदियां हैं ता दूरियां आपे मिट वेंदियां हैं। एक बहु प्यारा गीत इस प्यार तो चेते आंदा पिया है। प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए। ते चस गिनो इस गीत ती मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर दियां आवाज़ां विच। एक गीत असां गिदा है फिल्म गुड्डी तू।

देश भर प्रोग्राम सुनने वाले सारे ही श्रोतियां करमजीत वालों प्यार भरी नमस्कार आदाब अते सत श्री अकाल हाजिर हो गए दोस्तों तुहाडे लिए आज ते देश पंजाब प्रोग्राम दे सिलसिले लैके हुण तो थोड़ी देर बाद अज की गल तुहाडे नाल सांझी करांगे 6:40 ते तुहाडे लिए साडा सिलसिला होवेगा खबरसार खबरसार दे सिलसिले दे विच चर्चा च अज शामिल होणगे जोगिंदर संधू ते अरुणदीप 6:10 ते पंजाबी गीत तुहाडी नजर कीते जाणगे सो दोस्तों शुरुआत करदे हां देश पंजाब प्रोग्राम दी आज दी गल दे नाल

जी दोस्तों, पंजाबी गीतां दा तां सिलसिला इस तरह दा हुंदा है कि बस इस नूं रुकण देण दा या इस नूं रोक लगाउण दा मन ही नहीं करदा। पर जिहड़ा समां है हुण इस वेले मैनूं होर इजाजत नहीं दे रहा कि मैं तुहाडे नाल इस गीत नूं होर सांझा कर सकां। अज दा इह देश पंजाब प्रोग्राम पंजाबी गीतां दे नाल इत्थे मुकदा है। अपने दोस्त करमजीत नूं देओ इजाजत। नमस्कार।

0: ದೇಹಾತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಈ ಜಲಂಧರ್ ಕೇಂದ್ರ.
1: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ
2: ਨਮਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है. श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है.
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है. अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है. मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है. गृहमंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया. ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा. इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा. शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी. भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है. श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है. सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है. इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए. मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है. झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई.
4: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं. सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी. हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा. महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची.
2: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है. मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है. इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की. श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई. यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संभव पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं अमित तेवतिया
4: और मैं हूं नीरा बख्शी।
3: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी में आपके लिए होती है विषय संबंधित जानकारी।
4: बिल्कुल, और जानकारी के साथ साथ होता है मनोरंजन भी,
3: और मनोरंजन के साथ साथ ऐसी योजनाएं जिसका लाभ सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों तक पहुंचता है। मित्रों, ऐसी ही एक योजना है ई नाम, अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार, और भारत सरकार का यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिस पर देश की विभिन्न कृषि उपज बाजार समितियां और मंडियों को जोड़कर एकीकृत बाजार बनता है।
4: और इस पोर्टल के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन घर बैठे अपनी उपज का सही भाव जान सकते हैं और पारदर्शी तरीके से सही कीमत पा सकते हैं।
3: ये भी आपको बता दें कि यह पोर्टल देश भर के किसानों को ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपज बेचने की सुविधा देता है। और जब बात आती है सुविधा की, तो कार्यक्रम किसान वाणी में हम आमंत्रित करते हैं विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को या वैज्ञानिकों को, जो समसामयिक विषय पर प्रश्नों के जवाब देते हैं जिसका लाभ हमारे किसान भाई बहनों को मिलता है। आज का विषय है उत्पादन बढ़ाने में केचुआ खाद का महत्व, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सीमा सांगवान को। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहला प्रश्न वही है कि केचुआ खाद क्या है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
5: जी हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि केचुआ खाद, जिसे हम बहुत कॉमनली वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद है जिसे केचुओं की सहायता से गोबर, फसल अवशेष, पत्तियां तथा अन्य जैविक पदार्थों को सड़ाकर तैयार किया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के साथ साथ अनेक सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यही कारण है कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली सबसे प्रभावशाली जैविक खादों में से एक माना जाता है।
3: बिल्कुल, जब बात आती है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, लेकिन वहीं डॉक्टर साहब किसानों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या फसल उत्पादन में यह सहायक होगी?
5: बिल्कुल सहायक होगी। केचुआ खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, जो हम बोलते हैं ना, उनको धीरे धीरे और लंबे समय तक प्रदान करती है। इसी वजह से इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है एक जब हम इसको अपनी फसलों में डालेंगे। इससे पौधों की जड़ों का विकास जो है वो बहुत बेहतर होता है, अंकुरण जो है वो भी अच्छा होता है और पौधा अधिक स्वस्थ और मजबूत बनता है। साथ ही साथ यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी और उसकी संरचना में भी बहुत सुधार करती है, जिससे पौधा जो सूखे जैसी परिस्थिति अगर आ जाए तो उसको बहुत आसानी से वो सहन कर पाते हैं। इन्हीं सभी कारणों से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में ही वृद्धि होती है।
4: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि केचुआ खाद अकेली ही इतनी सक्षम है?
5: केचुआ खाद मिट्टी के लिए तो बेहतर है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अधिकतर फसलों में सर्वोत्तम परिणाम अगर आपको लेना है तो एक संतुलित उपयोग करना बहुत जरूरी है। इस संतुलित उपयोग में जो रासायनिक खादें हैं और उसके साथ साथ अगर हम इन जैविक खादों का इस्तेमाल करें, केचुआ खाद का इस्तेमाल करें, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत अच्छे से बढ़ाई जा सकती है और उर्वरकों का जो उपयोग है वो दक्षता के सुधार में होता है और उपयोग भी हमें अधिक मिलता है, जो उत्पादन शक्ति है वो बहुत बढ़ती है। इसीलिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है।
3: तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात रही कि हम केचुआ खाद के प्रयोग से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन वहीं जब बात आती है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव की, तो किस प्रकार से यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पर्यावरण के लिए क्या इसके प्रभाव होंगे?
5: जी हाँ, केचुआ खाद मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाती है। जब हम इसे डालेंगे तो जो ऑर्गेनिक कार्बन वो बढ़ेगा और उसके बढ़ने की वजह से जो लाभकारी और सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या में बहुत वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की संरचना, वायु संचार और जल धारण की क्षमता बहुत बेहतर होती है। इसके नियमित उपयोग के कारण रासायनिक उर्वरकों पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाती है, और जब वो कम होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टली लिंक करेगा कि हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, ताकि पर्यावरण का जो प्रदूषण होगा वो घटेगा और खेती की अधिक टिकाऊ एवं जलवायु अनुकूल बन जाएगी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे।
3: यानी कि मिट्टी की संरचना में सुधार होगा, पर्यावरण पर सीधा सीधा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे किसान भाई बहन आज भी ऐसे हैं कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब कार्यक्रम सुनेंगे तो निश्चित ही मन होगा कि क्यों ना हम भी केचुआ खाद का प्रयोग अपनी खेती में करें। तो केचुआ खाद हमारे किसान भाई बहन कैसे बना सकते हैं और इसे व्यवसाय के रूप में कैसे धारण किया जा सकता है?
5: अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि इसको बनाना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो केचुआ खाद अगर वो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक छायादार जगह का चयन करना चाहिए, जहाँ पे हवा आ रही हो और छायादार हो, जहाँ डायरेक्ट धूप ना लगे। इसके बाद उनको एक टैंक या गड्ढा कुछ बनाना चाहिए जिसमें सबसे पहले भूसे की परत या सूखी पत्तियों की एक परत बनाई जाएगी। फिर उसमें अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर, जितने भी अवशेष हमारे पास हैं, चाहे वो रसोई से निकलता है या फिर जो हमारे फसलों के अवशेष हैं या पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं या फल फ्रूट जो भी खराब हो जाए, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं और उनको परतों में बिछाया जाता है सड़े हुए गोबर के साथ। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें उपयुक्त प्रजाति डाली जाएगी केचुआ की। तो केचुए की जो प्रजाति सबसे महत्वपूर्ण और बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होती है खाद बनाने के लिए, तो वो है आयसेना फेटिडा। तो उसका भी एक प्रपोर्शन है, एक रेशो अनुपात कहूंगी मैं, कि अगर 100 क्विंटल आपको खाद बनानी है तो उसमें आपको 1% उसका 1% आपको ये केचुआ लेना होगा, मतलब 1000 से 1500 आपको केचुए लेने होंगे और उनमें छोड़े जाते हैं। उसके बाद बेड में जो नमी है, अगर खाद को बहुत अच्छे से बनाना है ताकि जो केचुए हैं बहुत अच्छे से अपना काम करें, तो उसमें एक नमी बरकरार रखना बहुत जरूरी है, जो 60 से 70% के बीच में ये नमी बरकरार रखी जाती है। और इसे सीधी धूप और वर्षा से हमेशा आना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो ये मर जाएंगे, क्योंकि नीचे दब जाएंगे और वो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होने की वजह से वो मर जाएंगे। तो लगभग जब हम ये क्रिया करते रहते हैं और बीच बीच में जब इसमें पलटवार करते हैं, उसको ऊपर से नीचे तक घुमाते हैं, तो 45 से 50 दिन के अंदर ये केचुए जो है इस जैविक खाद को भुरभुरी गहरे भूरे रंग की गंधहीन खाद में बदल देंगे, जो कि उसका साइन भी है कि हाँ ये अब तैयार हो गई है। फिर उसको छानकर अलग कर लिया जाता है और केचुओं को पुनः हम अगली खाद बनाने के लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन इसकी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कि क्या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि अनुसंधान संस्थान है, कहीं से सीधे हमारे किसान भाई बहन इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, देख सकते हैं
5: व्यवसाय के रूप में?
3: जी, उन्हें तो अच्छा अनुभव इस चीज का होगा, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे?
5: मतलब जिस तरह मैंने बताया कि उत्पादन शक्ति तो बढ़ेगी ही, लेकिन इससे किसान भाई पैसा भी कमा सकते हैं अगर वो इसको बनाना सीखें, क्योंकि आजकल कहीं पे भी देखेंगे तो वर्मी कम्पोस्ट के पैकेट बिकते हैं, बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप सहायता समूह जो बनाते हैं, वो लोग भी इकट्ठा होकर इसको बना सकते हैं और इसको बेचा जा सकता है, क्योंकि इसको बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और इसमें लागत भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसी नहीं लगती है। आप सोचेंगे तो सिर्फ आपको केंचुए ही होंगे जो खरीदने पड़ेंगे, अदरवाइज और सारी चीजें आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ केंचुए वर्मी वॉश और वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की भी स्थापना, मतलब क्रिएट की जा सकती है। अगर कोई केवीकेस है, कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है, अगर किसान भाई पूछे तो वो इनकी सहायता भी करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस तरह से ये सब तैयार किया जाएगा और उनको वो प्रशिक्षण और वो ट्रेनिंग दी जा सकती है।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे लगातार कार्यक्रम में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: उतना बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सब यही डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच
6: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी और हमारे साथ लगातार विषय पर बनी हुई हैं डॉक्टर सीमा सांगवान, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
4: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे केचुआ खाद की, तो सबसे पहले एक चीज और, जब हम इसको बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि गहरे भूरे रंग में हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि तैयार हो गई है, इसके अलावा और क्या पहचान है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसे बनाने वक्त?
5: पहचान तो इसकी यही है कि वो गहरे भूरे रंग की होगी और वो बहुत भुरभुरी रंग की तैयार हो जाएगी और गंधहीन होगी। मतलब शुरुआत में इसमें बहुत ज्यादा गंध आती है, लेकिन हाँ जब वो खाद तैयार हो जाएगी तो वो गंधहीन हो जाएगी और वो पाउडर की तरह भूरे रंग की भुरभुरी हो जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ ये तैयार हो गई है। और अप्रोक्सीमेट टाइम भी हम समझ सकते हैं कि 45 से 50 दिन लगेंगे, 55 दिन लगेंगे जिसमें ये तैयार हो जाएगा। सावधानियों की अगर बात करें तो सबसे पहली सावधानी आपको यही ध्यान रखनी है कि कोई ऐसी जगह ना हो जहां पे धूप डायरेक्टली लग रही है, क्योंकि आप समझेंगे कि केचुआ जो है बहुत ज्यादा तापमान अगर बढ़ गया तो वो मर जाएंगे। इसी तरह से जो सड़ी हुई हमने गोबर इस्तेमाल किया उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो काम करते हैं, जो इसको सड़ाने में हेल्प करते हैं, तो उनका सबका भी एक उचित तापमान ही है जहां पे वो काम कर पाएंगे। तो अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है किसी वजह से तो इससे वो केंचुए भी मर जाते हैं और सूक्ष्म जीव भी मरेंगे, तो उससे हमें बचाना है। दूसरा है कि हमें इसको छायादार जगह पे रखना है जहां पे डायरेक्ट बारिश का पानी ना हो, ऐसा ना हो कि पानी से भर रहा है वो। हमें नमी तो बरकरार रखनी है लेकिन इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, वो भी सही नहीं है क्योंकि उससे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है और उसमें भी केंचुए मर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानियां तो ये दो ही हैं।
3: यदि हमारे किसान भाई व्यावसायिक रूप से केचुआ पालन बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें किसान को सीधा सीधा कोई आर्थिक लाभ मिले?
5: देखिए, अगर किसान जो FPO और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं अगर उनकी मदद से वो करते हैं तो हाँ बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो उनकी जरूर मदद करेंगी। और वो क्योंकि अब तो सरकार ही खुद ही बता रही है कि आपको संतुलित खादों का उपयोग करना है, रासायनिक खादों पे हमें अपनी निर्भरता है वो कम कर रही है, तो उसका यही उपाय है कि इस तरह से ग्रुप बना के इन व्यवसाय में अपना हाथ आजमाएं और अपने साथ साथ और गांव वालों को भी समझाएं अपने साथ।
9: डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ एक बात और आई थी कि प्रजाति चुनने की, तो जैसे हम प्रजाति जब चुनते हैं उस वक्त क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और किस प्रकार हम कहाँ कहाँ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं?
5: एसेना फोर्टेटा तो आपको कहीं पे भी मिलेगा, यही एक मेन प्रजाति है जो इसमें इस्तेमाल की जाती है बहुत कॉमन तरीके से। इसके अलावा यूडिलस यूजेनिए भी है, एक और केंचुए का प्रजाति जो इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एसेना फोर्टेटा ही है जो बहुत बड़े स्तर पर अगर आपको काम करना है तो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट इसी केंचुए से मिलते हैं। और ये आप कहीं पे भी ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ये प्रजाति और कहीं पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको बस अपना अनुपात देखना है कि कितनी खाद तैयार करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप खरीदिए। और सबसे अच्छी इसकी लाभकारी बात यह है कि एक बार खरीदा हुआ वो आपका बार बार इस्तेमाल होगा। केंचुआ इसी खाद से निकलेगा, आप जब ये खाद तैयार हो जाए तो उस केंचुए को अलग कर लीजिए छान के और उसको अगली खाद में डालिए, तो वो इस तरह से चलता रहेगा।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यदि हम बात करते हैं कि केंचुआ का उत्पादन जब हम कर रहे हैं वहीं फसल का उत्पादन बढ़ रहा है, तो किसानों को किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से आप इस विषय पर क्या संदेश देना चाहते हैं?
5: जी, मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि यदि हमें अधिक उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक अगर बनाए रखना है तो जैविक खाद और रासायनिक पोषक तत्वों का एक बहुत संतुलित उपयोग है वो हमें अपनाना होगा। केचुआ खाद न केवल फसल की वृद्धि और उत्पादन में मदद करती है बल्कि मिट्टी को भी स्वस्थ बनाती है। इसलिए किसान भाई बहन जो भी इसे खेती में अपनाना चाहते हैं तो उसको अपना नियमित हिस्सा बनाएं, मतलब संतुलन के साथ आप ये जैविक खादों का भी इस्तेमाल करें, वर्मी कम्पोस्ट बनाएं और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार इसका उपयोग करें।
3: डॉक्टर साहब, अभी मानसून का समय चल रहा है तो ऐसे में कोशिश होती है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए वो कौन सा उचित समय रहेगा जहां से वो केचुआ पालन शुरू कर दें और उनका जो उत्पादन अच्छा रहेगा, चाहे वो केचुए का रहे या उनका खाद का रहे या फसल उत्पादन पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
5: जी हाँ, तो जैसे ये अभी तो बहुत बारिश का समय है तो अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं वो, और जैसे ही बारिशें ये खत्म होंगी उसके बाद वो अपना उत्पादन इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जब सर्दी का मौसम आ जाएगा तो भी आप समझ सकते हो कि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है जिसमें ये घटन होता है, सारी प्रक्रिया होती है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर जो है थोड़ा नीचे गिर जाता है। तो उस वजह से मैं ये कहूंगी जो बारिश से पहले का समय था वो भी बहुत उचित था, जिसमें सही गर्मी थी तो उसमें भी बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। और जो जस्ट इसके बाद का होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बहुत अच्छा समय होगा जिसमें आप ये केचुआ खाद बना सकते हैं अपने घरों में और बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
9: जी, यानी हम उचित समय की अगर बात करते हैं तो वर्षा से पहले और वर्षा के बाद।
5: बिल्कुल, क्योंकि वर्षा के डायरेक्ट उससे तो हमें बचाना होगा इसको कि पानी वो डायरेक्ट ना गिरे कहीं पे भी। तो उसी के लिए अगर आपके पास बहुत अच्छा यूनिट नहीं है और वो घर पे ये सब करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा वर्षा का ये टाइम अपना अवॉइड करना होगा उससे पहले और उसके बाद।
9: जी डॉक्टर साहब, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो केचुआ खाद या फिर दूसरी खाद जो इस्तेमाल की जाती है फसलों में उसका क्या प्रभाव रहता है?
5: देखिए जैविक खाद की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी तरह की जैविक खादें हैं, तो ये तो एक पर्टिकुलर हम कह देंगे कि जो केचुआ खाद है एक तरह की खाद है, और जो कि बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि इस खेत में ही ये पड़ेगा या इस फसल में ही ये पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी तरह की फसल में डालोगे तो ये अपना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के साथ साथ जो और अन्य पोषक तत्वों की भी जो फसल को जरूरत होती है तो वो इसको देंगे। लेकिन हाँ, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और जैविक खादें हैं, जैसे कि अपने पूसा संस्थान में ही हमने बनाई है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो खाद है जिसमें हम एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, एजोस्पाइरलम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही राइजोबियम जो है हमारी फसल के अनुसार राइजोबियम बनता है, जैसे कि मूंग की फसल है तो मूंग के लिए अलग राइजोबियम है, उड़द की फसल है तो उसके लिए अलग राइजोबियम है। इसी तरह से अगर फसल में पोटाश की कमी है तो पोटाश सोल्यूबलाइजर डाले जाते हैं, फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस का सोल्यूबलाइजर डाला जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है वो है जो पोषक तत्वों के हिसाब से है, जहां किसान अपनी मिट्टी की जांच कराएगा और तब वो समझेगा कि हाँ इस पोषक तत्व की कमी है और ये डाल दें, तो वहां पे उसको अलग अलग लेना पड़ेगा, उसको नाइट्रोजन के लिए अलग लेना पड़ेगा, फॉस्फोरस की कमी है तो उसके लिए अलग जैविक खाद लेना पड़ेगा, और इसी तरह से पोटाश की कमी है तो अलग लेना पड़ेगा, जिंक की कमी है तो अलग लेना पड़ेगा। इस तरह के सारे विकल्प हमारे पास है, लेकिन केचुआ खाद इस वजह से बेहतर मानी जाती है कि एक ही तरह की खाद जो कि बहुत आसानी से हम अपने घरों में बना सकते हैं, हमारी महिलाएं भी अपने ही रसोई से जो कचरा हमारा बनता है तो उस हरे कचरे को जिसमें बहुत सारे जो फल हैं उनका छिलका होता है वो होता है, सब्जियां होती हैं, कुछ सड़ी गली चीजें भी होती हैं, ये सब इस्तेमाल करके वो महिलाएं भी घरों में ये खादों को तैयार कर सकती हैं। मतलब इसका महत्वपूर्ण इसीलिए मैं कह रही थी कि बेहतर क्यों है और खादों से, क्योंकि एक ही तरह की खाद डाल के आपको वो सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे जो हमें अगर दूसरी जैविक खादें यूज करनी पड़े तो शायद अलग अलग डालना पड़े जी। तो ये एक ही तरह की खाद से वो हर पोषक तत्व खाद डालने की वजह से जमीन में आ जाएगा, हमारी मिट्टी में आ जाएगा। और दूसरा कि जब ये कार्बन शक्ति जब मिट्टी की बढ़ाता है तो जो सूक्ष्म जीव जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि हमें अलग से डालना पड़ता है, राइजोबियम हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, पोटाश सोल्यूबलाइजर हुआ, तो ये सूक्ष्म जीव कार्बन कंटेंट बढ़ने की वजह से जो वर्मी कंपोस्ट हम डालेंगे, केचुआ खाद हम डालेंगे, उसकी वजह से वो अपने आप ही पनपने लगते हैं। तो वही काम जो हम बाहर से डाल के करते हैं वही काम वो सूक्ष्म जीव अपने आप वो पनपेंगे और अपने आप ही वो होता है ना कि एक इकोसिस्टम इस तरह से तैयार होता है जिसमें सभी मिलजुल कर काम करें और वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाएंगे, फसल की शक्ति भी बढ़ाएंगे और फसल की जो उत्पादन होगा वो भी बढ़ेगा, लागत बहुत कम होगी।
10: बिल्कुल, यानी कि जब केचुआ पालन की बात आती है तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये वरदान सिद्ध होता है। ऐसा क्यों?
5: क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम समझेंगे ना कि क्या जरूरी क्या था केचुआ खाद बनाने में, तो वो गोबर जरूरी है। वो गोबर उन्हीं के पास होगा जिनके पास पशु होंगे, उसी गोबर को वो इस्तेमाल कर सकते हैं खाद बनाने के लिए, अपनी ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यही वर्मी कंपोस्ट के इससे वो पैसा भी कमा सकते हैं।
10: बिल्कुल, डॉक्टर सीमा सांगवान आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
4: कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो क्यों ना एक लोकगीत सुनवा दे।
10: बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: मित्रों आप सुन रहे थे लोकगीत। मित्रों अब कार्यक्रम में समय है साप्ताहिक मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह। तो नीरा यदि बात करें वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जो वैज्ञानिकों की सलाह है उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जिन्होंने सब्जी लगाई हुई है, तो जो कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियां हैं उनमें मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें, कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें, वे सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
1: जी, और इसी के साथ जो गेंदे के फूलों की पौध है उसे छायादार जगह पर तैयार करने की सलाह दी जाती है और जल निकास का उचित प्रबंध करें इसकी भी सलाह दी जाती है। और अगर हम फलों की बात करते हैं तो फलों के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई अति शीघ्र करने की सलाह दी जाती है।
0: बिल्कुल, तो ये है वैज्ञानिकों की ओर से कृषि संबंधी सलाह। मित्रों आजादपुर मंडी से कुछ फल एवं सब्जियों के भाव प्राप्त हुए हैं तो आपको बताते चलें, आलू का भाव 18 रुपया प्रति किलोग्राम है, प्याज 30 रुपया प्रति किलोग्राम, टमाटर 40 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।
1: और इसी के साथ अगर हम फलों की बात करते हैं तो सेब का भाव रहा 200 रुपये प्रति किलोग्राम, केला 25 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद 80 रुपये प्रति किलोग्राम। वहीं पपीते की बात करें तो पपीते का भाव रहा 30 रुपये प्रति किलोग्राम।
0: जी हाँ मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आजादपुर मंडी से प्राप्त मंडी भाव। अब कार्यक्रम में समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हो चला है 7:35 और ये वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। इस कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ तलत। किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन जबान में आंख नहीं होती और आंख में जबान नहीं होती। कई बार आप जो देख पाते हैं वो आप बयान नहीं कर पाते, और जो आप बयान कर पाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप देख नहीं पाते। ऐसा ही कुछ अगली गजल में आप सुनेंगे।

खुदा महफूज रखे उसे हर एक बुरी नजर से। और अगर ऐसी ही एक बात है तो फिर ये अगली कव्वाली आपके साथ है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम सुना गजल और कव्वाली का। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
4: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत आधार का काम करेगी।
4: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शीट तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
3: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्य क्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
4: जब बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड

0: नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों और उनके ऑफ कैंपस सेंटर्स के लिए दिल्ली में स्थापित होने का रास्ता भी साफ करेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विधेयक में छात्रों के हितों की सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। लागू आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25% सीट दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज सिविक सेंटर में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इसमें 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य निगरानी के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को गति देना दिल्ली नगर निगम को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: डॉक्टर नहीं है, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा। इसलिए जरूरत है जिस रेशो में पेशेंट बढ़ रहे हैं उसी रेशो में फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। मुझे खुशी है आज यहाँ पे नियुक्ति दी जा रही है। ये एक मानवीय सोच इस नगर निगम की दिखाता है कि साधारण बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चों के लिए भी सरकार काम कर रही है।
1: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने इस अवसर पर कहा कि आज परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसमें नए नियुक्त कर्मचारी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त लोग शामिल हैं। महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम उनके कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान और अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: दिल्ली नगर निगम के हेल्थ सेंटर्स, हमारे स्कूल्स, सुरक्षित माहौल, एक बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर के साथ साथ बेस्ट टीचर्स के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। दिल्ली नगर निगम बिल्कुल मॉडल और ये जो पब्लिक स्कूल है उनके समकक्ष आकर खड़ा हो गया। निश्चित रूप से जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें नई योजनाएं लाकर नई बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर दिलशाद गार्डन के समीप स्थित कांवड़ सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांवड़ सेवा शिविर में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से संवाद कर उनकी यात्रा व व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली और सभी के मंगलमय, सुरक्षित और सफल कांवड़ यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि किसी भी शिव भक्त व कांवड़ सेवा शिविर को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार की ओर से कांवड़ समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत 20,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास में हजारों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कांवड़िया भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में पूजनीय और सम्मानीय है तथा इस वर्ष बड़ी संख्या में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रही हैं।
5: कांवड़िये यहाँ पर पहुँच रहे हैं दिल्ली राज्य। पूरी मुस्तैदी के साथ में सभी कांवड़ लेके आने वाले शिव भक्तों का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है।
4: दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ सेवा समितियों को वित्तीय सहायता, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात प्रबंधन, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रादेशिक समाचार

0: समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार दिल्ली के सभी 13 जिलों में बाल भिक्षुक मुक्त दिल्ली चाइल्ड बेगर फ्री अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि बच्चों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी, उनकी मुश्किलों को समझा जाएगा और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा किया। श्री सूद ने प्रयोगशाला के कामकाज, वैज्ञानिक आधारभूत संरचना, फॉरेंसिक जांच सुविधाओं और समग्र कार्यप्रणाली की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि निरीक्षण के बाद आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और अधिक दक्षता के जरिए जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आयोजित किया। इस अवसर पर श्री नवीन ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाने और युवाओं को नशे से दूर रखने हुए राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित बनाने का ये संकल्प मानवता की सच्ची सेवा का संदेश देता है।
2: कई बार थैलेसीमिया के कैंप में जाने का मौका मिला। मैं जब उन बच्चों को देखता था तो मुझे लगता था कि आखिर उनका दोष क्या है, पर कहीं ना कहीं प्रकृति ने उनसे उस दोष को उसके जीवन में डाल दिया। और जब रक्त की बात आती है और थैलेसीमिया के बच्चों को जो सहयोग रक्तदान के रूप में मिलता है, निश्चित रूप से एक आत्मसंतुष्टि मिलती है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार खुफिया जानकारी और रिकॉर्ड्स की पड़ताल के जरिए पुलिस की टीमों ने 7 अफ्रीकी नागरिकों की पहचान कर उनका पता लगाया है। इनमें 5 नाइजीरियाई के और 2 घाना के नागरिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा करें। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने बच्चों को देश की स्वतंत्रता में किए गए लोगों के तप, त्याग और बलिदान के बारे में बताने की अपील भी की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज से 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित करेगा। आज वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। कल बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के एक संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 32 वायु सैनिकों और 8 अग्निवीर वायु की एक टीम ये प्रस्तुति देगी। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को आज अमृतसर के अजनाला में स्थित गुरुद्वारा गुरु का बाग में एसजीपीसी ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने बताया कि अजनाला का यह गुरुद्वारा ऐतिहासिक स्थल है। यहां वर्ष 1922 में सरदार तेजा सिंह समुद्री के नेतृत्व में गुरु का बाग मोर्चा हुआ था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये संघर्ष अनुशासित और अहिंसक प्रतिरोध का सशक्त उदाहरण है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय डाक विभाग डाक सेवा उपहार के अंतर्गत उपहार और पुरस्कार दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि भारतीय डाक का किसी भी डाक सेवा उपहार ऑफर पुरस्कार योजना या लकी ड्रॉ से कोई संबंध नहीं है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई जगह पर हल्की से तेज वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल

0: बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन इकराम, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा। आपको शायर हजरात से रूबरू कराए हैं। इससे पहले हम आपको ये भी बताते चले कि अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत ही अहम है। आइए आपको तारीख के औराक में लिए चलते हैं, जब गुलामी की जंजीरें टूटी और आजादी की रोशनी ने हमारे वतन को मुनव्वर किया। ये वो महीना था जब कुर्बानियों की दास्तान ने हकीकत में ढली, जब शहीदों के लहू ने आजादी का चराग रोशन किया और जब ख्वाब हकीकत बनकर हमारे दिलों में उम्मीद की किरण बनकर जगमगाने लगा। हम उन अजीम रहनुमाओं को आज खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने इस आजादी के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने जानो माल की कुर्बानी पेश की, जिसकी वजह से आज हम आजाद हवाओं में आजादी और खुद मुख्तारी के साथ अपने ख्वाब को खुद बुन रहे हैं और जी रहे हैं। तो सामईन कराम, आजादी का नाम सिर्फ खुशी नहीं बल्कि आजादी की यादों, कुर्बानियों और ख्वाबों के सफर का नाम है। ये सफर हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि एक अहद है, अहद वफा, अहद खिदमत और अहद कुर्बानी। आइए हम भी ये अहद करें कि अपने मुल्क अजीज की बेहतरी के लिए हम पाबंद अहद रहेंगे। आइए अब सुनते हैं ये खूबसूरत मुशायरा। तो सामईन, आज हमने मुशायरा की महफिल आपके लिए और सिर्फ आपके लिए आरास्ता की है। आज इस महफिल की जो रौनक है उनमें तस्लीम दानिश, सैफुद्दीन सैफ, जावेद नियाजी और अहमद नदीम मौजूद हैं। तो लीजिए समात कीजिए।
2: सामईन आदाब, आकाशवाणी के इस मुशायरे में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज के हमारे जो मेहमान शोरा हैं उनमें जावेद नियाजी साहब, खाकसार अहमद नदीम, तस्लीम दानिश साहब और सैफुद्दीन सैफ साहब। आइए बाकायदा इस मुशायरे का आगाज करते हैं और शायर को दावत देते हैं जावेद नियाजी साहब को कि वो आए और अपना कलाम पेश करें।
3: मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, गजल का मतला बतौर खास पेश करता हूँ।
2: इरशाद।
3: उस

0: हो गया। शेर पेश करता हूँ, लौट आओ जहाँ हो खुदा के लिए,
1: लौट आओ जहाँ हो खुदा।

0: ये भी शेर पेश करता हूँ।
1: है हर एक फूल सहमा हुआ आजकल,
2: है हर एक फूल सहमा हुआ।

आओगे, आखिरी शेर बतौर खास, अगले खत में ये लिखना।

0: वाह
1: तो ये थे जावेद नियाजी साहब जो अपने सहरंगेज तरन्नुम से आपको महसूस कर रहे थे। आइए अब खाकसार अहमद नदीम भी कुछ कलाम पढ़ना चाहता है।
2: अता, जी,
1: गजल का मतला हाजिर करता हूँ, एक मतला और एक शेर सुन ले उसके बाद।
2: जी आता।
1: तीरा शबी में काकुले कातिल से जा मिले,
2: तीरा
1: शबी में काकुले कातिल से जा मिले, नागाह कैदो बंदो सलासिल से जा मिले। और शेर सुने कि हम अपने इख्तियार में कब थे कि अब रहें, हम अपने इख्तियार में कब थे कि अब रहें, लहरों से जा मिले कभी साहिल से जा मिले।
2: वाह वाह वाह वाह।
1: और एक मतला दो शेर और मुलाहिजा किए कि अब इसमें तशनगी है न दरिया न ख्वाब है, अब इसमें तशनगी है न दरिया न ख्वाब है, सहरा नवर्द चश्म को बस इस्तराब है।
2: अरे वाह वाह
0: वाह।
1: अब इसमें तशनगी है न दरिया न ख्वाब है, सहरा नवर्द चश्म को बस इस्तराब है, यानी मेरी शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग, यानी मेरी शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग, मैं तो समझ रहा था जमाना खराब है।
2: अरे वाह वाह।
1: यानी मेरी शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग,
2: वाह वाह वाह,
1: मैं तो समझ रहा था जमाना खराब है, वहशत फिराक आहो फगां बेबसी अलम, जो कुछ है इख्तियार में वो बेहिसाब है।
2: वाह वाह।
1: और एक गजल से चंद शेर और मुलाहिज़ा कीजिए।
2: जी आता।
1: दिल पैहम फरियादी है,
0: दिल फरियादी है,
1: पैहम फरियादी है, थोड़ी वहशत बाकी है।
2: वाह।
1: दिल पहम फरियादी है, थोड़ी वहशत बाकी है, अब जाएं तो जाएं कहाँ,
0: अब जाएं,
1: अब जाएं तो जाएं कहाँ, चारों ओर उदासी है।
2: क्या
0: कहने,
1: अब जाएं तो जाएं कहाँ,
2: चारों ओर
1: उदासी है। और शेर देखें कि वीरानी पर जोर नहीं,
2: वीरानी पर जोर नहीं,
1: वीरानी पर जोर नहीं, अपने तौर से आती है।
0: क्या कहने,
1: वीरानी पर जोर नहीं,
3: अपने तौर,
1: अपने तौर से आती है, है एक ऐसा शहर जहाँ, है एक ऐसा शहर जहाँ हर लहजा इनकारी है।
2: क्या कहने,
1: है एक ऐसा शहर जहाँ,
2: वाह वाह,
1: हर लहजा इनकारी है, मुझको देख के तन्हाई, मुझको देख के तन्हाई, दूर खड़ी शर्माती है। मुझको देख के तन्हाई,
3: दूर खड़ी
1: शर्माती है। शेर सुने कि अब दिन भर तो मसरूफ रहे,
2: दिन भर तो मसरूफ,
1: दिन भर तो मसरूफ रहे, रात की क्या तैयारी है।
0: क्या कहने,
1: दिन भर तो मसरूफ रहे,
2: रात की क्या
1: तैयारी है। और शेर सुने कि शोर ज्यादा करते हैं,
2: शोर ज्यादा करते हैं,
1: लफ्जों की मनमानी है।
2: क्या
0: कहने,
1: शोर ज्यादा करते हैं,
3: अच्छा है,
1: लफ्जों की मनमानी है,
2: वा, वा,
1: कौन इलाज करे अहमर, कौन इलाज करे अहमर, जीस्त बड़ी बीमारी है।
2: वा, वा, वा,
1: कौन इलाज करे अहमर, जीस्त बड़ी बीमारी है। और एक गजल से चंद शेर और मुलाहिजा कीजिए कि अब तो मिलते भी नहीं शोर मचाने वाले, अब तो मिलते भी नहीं शोर मचाने वाले, इतना थक हार के बैठे हैं जमाने वाले।
2: वाह वाह वाह।
1: अब तो मिलते भी नहीं शोर मचाने वाले,
2: वाह वाह,
1: इतना थक हार के बैठे हैं जमाने वाले, भूल जाने में सहूलत तो बहुत है लेकिन, शेर सुने कि भूल जाने में सहूलत तो बहुत है लेकिन, याद आते हैं कभी याद ना आने वाले। भूल जाने में सहूलत तो बहुत है लेकिन, याद आते हैं कभी याद ना आने वाले, फिर ये ताबीर की राहों में बिखर जाते हैं, फिर ये ताबीर की राहों में बिखर जाते हैं, कुछ खबर भी है तुझे ख्वाब दिखाने वाले, फिर ये ताबीर की राहों में बिखर जाते हैं, कुछ खबर भी है तुझे ख्वाब दिखाने वाले, इस तकल्लुफ पे लरसता हूँ कि दीवाने को, इस तकल्लुफ पे लरसता हूँ कि दीवाने को, आंख दिखलाने लगे आंख चुराने वाले। बतौर खास ये शेर मुलाहिजा कीजिए कि ताकि तखलीक के पर्दे से बशारत हो आया, ताकि तखलीक के पर्दे से बशारत हो आया, रक्स मिट्टी का दिखा चाक घुमाने वाले, ताकि तखलीक के पर्दे से बशारत हो आया, रक्स मिट्टी का दिखा चाक घुमाने वाले, वो जो आते नहीं जल्दी तो शिकायत कैसी, वो जो आते नहीं जल्दी तो शिकायत कैसी, देर से आते हैं कुछ देर से जाने वाले। ये कहानी भी कहीं तूल पकड़ लेती मगर,
2: ये कहानी भी
1: कहीं तूल पकड़ लेती मगर,

0: खुद ही बेजार थे किरदार निभाने वाले। ये कहानी भी कहीं तूल पकड़ लेती मगर खुद ही बेजार थे किरदार निभाने वाले। उसकी जानिब तो किसी का भी नहीं ध्यान गया। उसकी जानिब तो किसी का भी नहीं ध्यान गया। शेर कहते ही रहे शेर सुनाने वाले। उसकी जानिब तो किसी का भी नहीं ध्यान गया।
1: क्या कहने,
0: शेर कहते ही रहे शेर सुनाने वाले। और मक्ता है कि शहर की गोद में बेजान पड़े थे अहमर। शहर की गोद में बेजान पड़े थे अहमर। अपनी आगोश में एक उम्र बिताने वाले। शहर की गोद में बेजान पड़े थे अहमर। अपनी आगोश में एक उम्र बिताने वाले। अभी आप खाकसार अहमद नदीम का कलाम सुन रहे थे। अब आइए अगले शायर की तरफ मैं चलता हूँ। और हमारी फहरिस्त में जो अगला नाम है वो तस्लीम दानिश साहब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से।
2: बहुत शुक्रिया मौजूद सामईन की खिदमत में तस्लीम दानिश का प्यार भरा अदाब और ये गजल का मतलब पेश खिदमत है। अर्ज करता हूँ कि गर्चे अब दूसरे मकान में हूँ।
1: हाँ, गर्चे अब दूसरे मकान में हूँ।
2: मकान में हूँ शेर कहता उसी जबान में।
1: वाह वाह,
2: शेर कहता उसी जबान में।
1: वाह वाह वाह,
2: ये शेर देखें कि जिसकी गीबत से जोर पैदा हो। जिसकी गीबत से जोर पैदा हो बात कहता उसी के कान में।
1: क्या कहने,
2: वाह बात। जिसकी गीबत से जोर पैदा हो बात कहता उसी के कान में। ये शेर देखें कि हाथ से कब के जान ले लेते। हाथ से कब के जान ले लेते। खैर गुजरी तेरी अमान में हूँ। हाथ से कब के जान ले लेते। खैर गुजरी तेरी अमान में हूँ। और था कभी दोस्तों अजीजों में। था कभी दोस्तों अजीजों में। इन दिनों दूसरी कमान में हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: था कभी दोस्तों अजीजों में। इन दिनों दूसरी कमान में हूँ।
1: वाह वाह वाह,
2: और दूबदू ये शेर देखे बतौर खास के दूबदू इस तरह हुई दुनिया। दूबदू इस तरह हुई दुनिया। होश आया कि किस गुमान में हूँ।
1: वाह क्या बात, वाह वाह।
2: होश आया कि किस गुमान में हूँ।
1: क्या कहने, वाह वाह।
2: ये शेर देखें कि फोन पर पूछने लगे अहबाब। फोन पर पूछने लगे अहबाब। धूप में हूँ कि साहिबान में हूँ।
1: वाह वाह वाह,
2: धूप में हूँ कि साहिबान में हूँ। और ये एक और गजल का मतलब ये खिदमत है आप लोगों की।
1: जी
2: अर्ज करता हूँ कि अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार न हो।
1: अगरचे ऐसा नहीं,
2: अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार न हो। मैं चाहता हूँ मुझे इश्क बार बार न हो।
1: वाह वाह वाह,
2: मैं चाहता हूँ मुझे इश्क बार बार न हो। और ये शेर देखें कि तलब अगरचे नहीं थी मुझे सितारों की। तलब अगरचे नहीं थी मुझे सितारों की। ये जिद नहीं थी कि मौसम भी खुशगवार न हो।
1: वाह वाह वाह,
2: ये जिद नहीं थी कि मौसम भी खुशगवार न हो।
1: वाह वाह वाह,
2: शेर देखें बतौर खास के जो चाहता हूँ वो होता हुआ नहीं लगता। जो चाहता हूँ वो होता हुआ नहीं लगता। जो हो रहा है कम अज कम वो बार बार न हो।
1: वाह वाह वाह,
2: जो हो रहा है कम अज कम वो बार बार न हो। और ये कैसे ख्वाब दिखाता है आसमां वाले। ये कैसे ख्वाब दिखाता है आसमां वाले। कहूँ किसी से तो जालिम को एतबार न हो।
1: वाह वाह वाह,
2: ये कैसे ख्वाब दिखाता है आसमां वाले। और ये शेर देखें कि ये गजल का मकता है कि ये बात सच है अकेला सा हो गया दानिश।
1: ये बात सच है, ये बात सच है दानिश।
2: अकेला सा हो गया दानिश। ये सच नहीं है किसी का भी इंतजार न हो।
1: वाह,
2: ये बात सच है अकेला सा हो गया दानिश।
1: वाह बात,
2: ये सच नहीं है किसी का भी इंतजार न हो।
1: वाह,
2: अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार न हो। मैं चाहता हूँ मुझे इश्क बार बार न हो।
1: वाह वाह वाह,
2: की खिदमत में एक और गजल का मतलब पेश खिदमत है कि
1: बताओ
2: मेला तो नहीं शहर में बाजार लगा है।
1: मेला तो नहीं शहर में बाजार लगा है।
2: तरतीब से हर दर्जे का फनकार लगा है।
1: वाह
3: क्या बात है।
2: मेला तो नहीं शहर में बाजार लगा है।
1: क्या कहने,
2: तरतीब से हर दर्जे का फनकार लगा है।
1: क्या कहने,
2: اور یہ شعر دیکھیں کہ اب ہوتی ہے تعمیر میرے خانہ دل

0: के लिए दो खजूरों पर गुजारा, लश्कर बातिल से लड़ने के लिए दो खजूरों पर गुजारा। खूब है। और ये दूसरी गजल का मतलब पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं कि हमारे पास कैसा फलसफा है,
1: हमारे पास
0: कैसा, हमारे पास कैसा फलसफा है, बदन कायम मगर दिल मर चुका है।
2: वाह वाह वाह।
0: हमारे पास
1: कैसा
0: फलसफा है, बदन कायम मगर दिल मर चुका है। और शेर खास तौर से समाज फरमाएं कि मुझे खतरे के बारे में बताओ,
1: मुझे
0: कतरे के बारे में बताओ, समंदर तो मेरा समझा हुआ।
1: बहुत
0: शुक्रिया। मुझे कतरे के बारे में बताओ,
1: समंदर तो मेरा समझा हुआ,
0: समंदर तो मेरा समझा हुआ है। और अभी ना धूल आंखों से हटाना,
2: क्या कहने,
0: अभी ना धूल आंखों से हटाना, मेरी आंखों में कोई डूबता है। ये शेर समाप्त फरमाए कि मुझे हासिल हुई है रेगजारी,
1: मुझे हासिल हुई है,
0: मुझे हासिल हुई है रेगजारी, मगर सहरा से कोई झांकता है। मुझे हासिल हुई है रेगजारी,
2: मगर सहरा से
0: कोई झांकता है। और ये शेर समाज फरमाए कि तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है,
1: तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है,
0: तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है, मेरी आंखों से कोई बोलता है। तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है,
2: मेरी आंखों से कोई,
0: मेरी आंखों से कोई बोलता है। और ये मख्ते का शेर कि तुझे ए सैफ जख्म दिल मुबारक,
1: तुझे ए सैफ जख्म दिल मुबारक,
0: तुझे ए सैफ जख्म दिल मुबारक, कयाम शब कोई कहता रहा।
2: वाह वाह।
0: गजल का मतलब फिर पढ़ता हूँ
1: जी,
0: समाज फरमाए कि इसीलिए तो तुझे हम कलाम करना था,
1: इसीलिए तो तुझे हम कलाम,
0: इसीलिए तो तुझे हम कलाम करना था, बस एक रात में किस्सा तमाम करना
2: था। वाह वाह।
0: इसीलिए तो तुझे हम कलाम करना था, बस एक रात में किस्सा तमाम करना था। बदन को चाह थी दुनिया को जीत लेने की,
1: बदन को चाह,
0: बदन को चाह थी दुनिया को जीत लेने की, मुझे भी नफ्स को अपना गुलाम करना।
2: क्या कहने। वाह वाह।
0: बदन को चाहती दुनिया को जीत लेने की,
1: मुझे भी नफ्स को,
0: मुझे भी नफ्स को अपना गुलाम करना था। और कदम कदम पे नई ख्वाहिशों के हमले थे, कदम कदम पे नई ख्वाहिशों के हमले थे, कदम कदम पे मुझे कत्लेआम करना था।
2: क्या
1: बात, क्या बात।
0: और ये शेर बतौर खास के सभी को फिक्र थी रोशन चराग बनने की,
1: बनने की,
2: सभी को फिक्र थी,
0: सभी को फिक्र थी रोशन चराग बनने की, मुझे तो डूबते सूरज पे काम करना। सभी को फिक्र थी रोशन चराग बनने की,
1: मुझे तो डूबते सूरज,
0: मुझे तो डूबते सूरज पे काम करना था। बिछड़ रही थी हर एक गांव मंजिलें मुझसे, बिछड़ रही थी हर एक गांव मंजिलें मुझसे, सितम तो ये के सफर भी तमाम करना। बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात।
0: बिछड़ रही थी हर एक गांव मंजिलें मुझसे, सितम तो ये के सफर भी तमाम करना था। वो जिस मकान में मेरे रकीब रहते थे, वो जिस मकान में मेरे रकीब रहते थे, तमाम उम्र वहीं पर कयाम करना।
2: वो
0: जिस मकान में मेरे रकीब रहते थे,
1: तमाम
0: उम्र वहीं पर कयाम करना था। तन शेर देखें के दर्दमंदों न बेसहारों में,
1: दर्दमंदों न बेसहारों,
0: दर्दमंदों न बेसहारों में, दर्द पलता है दिल के मारों में। दर्दमंदों न बेसहारों में,
1: दर्द
0: पलता है दिल के मारों में।
1: वाह।
0: कोई पैकर नहीं तेरे जैसा,
1: कोई पैकर नहीं,
0: कोई पैकर नहीं तेरे जैसा, ना समंदर न रेगजारों में।
2: क्या कहने।
0: कोई पैकर नहीं तेरे जैसा,
1: वाह,
0: ना समंदर न रेगजारों में। और शेर समाज फरमाए कि जब से मुझको सुकून नसीब हुआ,
1: जब से मुझको,
0: जब से मुझको सुकून नसीब हुआ, एक हलचल मची है यारों में।
2: क्या कहने।
1: वाह।
0: जब से मुझको सुकून नसीब हुआ,
1: एक हलचल मची है,
0: एक हलचल मची है यारों में। और ये शेर समाज फरमाए कि सजदाए हक की उनको उजलत है,
1: सजदाए हक,
0: सजदाए हक की उनको उजलत है, है जो बोहरान आबशारों में।
1: वाह वाह।
3: क्या बात।
0: سجدہ حق کی ان کو اجلت ہے،
3: ہے جو
0: بحران آبشاروں میں، اور دل کو بے حد سکون رہتا ہے،
1: دل کو بے حد سکون رہتا ہے،
0: دل کو بے حد سکون رہتا ہے جب سے بیٹھا ہوں بے قراروں میں، دل کو بے حد سکون رہتا ہے جب سے بیٹھا ہوں بے قراروں میں، اور یہ مقطع کا شعر کے سیف دشمن بھی خوب ہیں تیرے،
1: سیف
0: سیف دشمن بھی خوب ہیں تیرے، چھپ کے بیٹھے ہیں غم گساروں
2: میں، کیا کہنے،
0: سیف دشمن بھی خوب ہیں تیرے. بہت شکریہ،
1: بہت شکریہ.
4: سامعین، ابھی آپ مشاعرے کے تحت احمد ندیم، سیف الدین سیف، جاوید نیازی اور تسلیم دانش سے ان کا کلام سن رہے تھے. یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. تو سامعین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور پروگراموں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی میزبان شاہ نواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجئے اجازت. خدا حافظ.
5: یہ آکاشوانی دلی کا انٹرپرس چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. وقت ہو گیا ہے کاریکرم فلم سنگیت کا، اور آج اس کاریکرم میں ہوں آپ کے ساتھ طلعت.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन तो मेक अ चिप इन इंडिया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
3: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
4: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉस्ट 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
5: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
6: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
7: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
8: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए

0: मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interests at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
2: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit.
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion, the Prime Minister inaugurated a high-performance computing facility, Param Pragya, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navkranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes.
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू
4: टुडे एन अग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन आवर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में सरदार अंजुम और आनंद बख्शी की लिखी हुई गजलें।

0: तो हड्डियां बड़ी होती हैं और बाकी मांसपेशियां जो हैं वो खिंच के लंबी होती हैं हड्डियों के साथ साथ।
1: अच्छा,
0: तो कई बार जो बच्चे बताते हैं खासकर प्यूबर्टी के एज ग्रुप में 12-13-14 साल की उम्र में कि रात में उनके घुटनों के पास में या पिंडलियों में उनको दर्द हो रहा है
1: जी,
0: तो वो ज्यादातर उसका कारण यही होता है कि उनकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं और मांसपेशियां खिंच रही होती हैं, उस वजह से दर्द होता है। तो अभी आप सुन रहे थे हड्डियों के हवाले से कुछ जरूरी बातें। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
2: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्रा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn puchne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। चर्चा के लिए आज हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद निश्चित, और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
1: आइए श्रोताओं, डालें एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर।
0: Benchmark domestic indices rise for the second consecutive week. Sensex and Nifty jumps over 0.5%. Wall Street wraps up week with strong gains, buoyed by macroeconomic data and UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त, सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% से अधिक का उछाल आया। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से मिले लाभ साथ वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह का अंत मजबूती के साथ किया और डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी संस्था पीसीआई ने स्पष्ट कहा है कि उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क

0: before we proceed any further, here's an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: And Nishit, Mumbai se hamari pehli call aa rahi hai, inka naam hai Vishal. Vishal ji, karyakram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochhe.
2: Hello.
1: Ji, apna sawal poochhe.
2: My question is related to foreign assets declaration and the tax to be paid on that. And now I'm a foreign national, and I have a foreign citizenship, and I wanted to declare the foreign assets that I have and pay the tax on that. The income is probably passive income in terms of every interest and dividends, etc., from mutual funds. But I've been told that because I have not declared it earlier, there is a very high penalty and interest, etc., causes on the same, up to 10 lakhs per annum for every year that the income or the assets have not been declared. And since this was registration or something related to this was passed in 2017, the amount payable would be extremely high. So I mean, to the point that if it's actually true, then I would have to actually liquidate the assets just to even pay the tax on the same. So I would want to ask the expert with regards to this as to, is this correct and what are the interest and penalty provisions, etc., for this. And this was also said that because this was passed as part of black money, some curbing of that, so there could even be penal provisions. So, you know, right. This is...
0: Okay, Vishal, we got your question and concern. I think what has happened, you know, in terms of giving it a miss has happened now, because there is no provision, Vishal, where you can go back to so many years to revise this, first of all. There is a schedule in the income tax return which is called Schedule FA, Foreign Assets. And there is also a schedule called Schedule FSI, which is Foreign Source Income. So if you're generating income out of those assets, you're supposed to be declaring income, and whichever country you reside in, there is a double tax avoidance treaty, you can save the tax. Anyway, your question is relating to non-declaring these particular assets in your return. So I would suggest, Vishal, that you can revise the return which has just been filed, first of all. So you can revise if there is no corresponding income and you're declaring it now, because there is no other way, you know, you can go back so much. There is a provision, Vishal, of ITRU. It's called Income Tax Return Updated. But for filing that updated return, one has to declare extra income. So first year 25%, second year 50%, third year 60%. So I don't think simply because you're having an asset, you should declare additional income. So I think you don't have much choice. You'll have to forget what has happened then. But at least for the year which we are filing now, and if you already filed, because we've run past the days now, 31st July was the day. So I would suggest for this year, which is 25-26, you revise your return, and in your schedule FA, you fill up the assets which you have overseas. And I'm assuming while answering, Vishal, that you are a resident at this point of time. If you are a non-resident, which is you've stayed in the outside the country for more than 180 days, you don't need to declare at all, because for foreign citizens, this is not required. If you're an Indian resident, resident means you've stayed in the country, then you need to declare. So based on what I said, you'll have to take a call. As for the historical part, the historical default, let me not scare you by giving penalties, because you've spoken about the penalties earlier. So I don't want to create a fear in you. But then yes, you can revise this return, fill up, and just let it be a fresh beginning. You know, in Hindi we say, jab jaage tab savera. So we cannot, because you cannot revise earlier returns. There is only one provision where you can go to the PCIT, bring to his notice that I want to file, but that is mostly done when people have missed their refunds. In your case, there is no refund. So let us just start now. If there is a notice which you get, call us again. We'll try and suggest you an alternate as to how to sort it out earlier. But at least remove the default going forward, Vishal.
1: Delhi se hamare saath Prem ji jud rahe hain. Prem ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kya apna sawal poochhe?
3: सारे टीम को मेरा प्रणाम, गुरु जी को भी मेरा प्रणाम।
0: प्रणाम जी, गुरु जी, अच्छा चलिए प्रणाम
3: जी। सर मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी बात हुई थी काफी लोगों से। सर ये जो हम लोग के जहाजे में कुछ अटैक वटैक हो जाते हैं
4: जी,
3: तो पहले से ये युद्ध जोन में आता था जिसको लो रिस्क जोन बोल सकते हैं, हाई रिस्क जोन बोल सकते हैं, कहीं कहीं सोमाली या कंपनी लाइक, लेकिन अब तो सर ये साइमल्टेनियसली हर जगह पर हो रहा है और सर इंश्योरेंस कंपनियां कहते हैं कि साहब हम इसलिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह फंड नहीं दे रहे इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, तो सर इसका क्या समाधान है, क्या हमारी सरकार इस पर कुछ एक्शन ले रही है जो सीकर जा रहे हैं, अगर वो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में उनके ऊपर कुछ हो जाता है, मर जाता है या अनुभव हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो गवर्नमेंट का तो यह स्टैंड है कि साहब हम आपको इंश्योर दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको मतलब इतना कंपनसेट कर रहे हैं ओरिजिन वाइज जून वाइज या जो भी फ्लैग वाइज
0: देखिए प्रेम जी जी आपकी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है, सी फेयरर्स के बात में बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग रहते हैं या जो लोग पानी के जहाज में बहुत महीने बिताते हैं घर से दूर रहते हैं, अब ये बात ठीक है कि उसमें इंश्योरेंस कंपनी आजकल थोड़ा सा उसमें रिजर्व है, बहुत हाई रिस्क एक तरह से ये नौकरी बन गई है, तो मुझे लगता है इसमें प्रेम जी जी जो मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि जिस भी वेसल पर ये सी फेयरर्स जाते हैं और मेरी जानकारी मुझे पता है इस मामले में दुरुस्त है, वो वेसल आपको इंश्योरेंस देता है, आप जब पानी के जहाज पर बहुत दिन तक रहते हैं एक महीना पंद्रह दिन दो महीने रहते हैं तो आपको इंश्योरेंस वो शिपिंग लाइन देती है, तो शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस तो आपके पास है ही, और वो इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता कि 10-20 हजार रुपए का होता है, वो अच्छा खासा इंश्योरेंस होता है, आपकी जो सैलरी होती है उसका वो एक प्रोडक्ट निकालते हैं उसके हिसाब से उतने एक्स टाइम्स वो इंश्योरेंस देते हैं, तो आपकी बात ठीक है कि भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज को भी या भारत सरकार को, देखिए जब आप निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी निजी कंपनी में नौकरी आपकी चॉइस से है, आपने स्वयं ऐसा प्रोफेशन चूज किया है, मुझसे ये सवाल प्राची और निश्चित पूछा गया एक जगह के इनके लिए क्या करना, मैंने कहा देखिए आप ये तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसी नौकरी जब तक ये सब तरफ युद्ध चल रहा है और तब तक मैं समझता हूं ऐसी नौकरी से अगर बच सके तो बचे, और खासकर ये नहीं तो कम से कम उस रूट पे ना जाए, आप इधर ट्रैवल कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ और उस रूट पे ना जाए पर आप मजबूरी है अगर जाना ही पड़ता है तो आप अपनी शिपिंग लाइन से बात करिए, वो शिपिंग लाइन से ही आप रिक्वेस्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपका इंश्योरेंस बढ़ा दे, बाकी यहां पर आपकी बात दुरुस्त है, अगर भारत सरकार के कोई नुमाइंदा हमारी ये बात सुन रहा है तो मैं उनसे भी आपकी तरफ से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की तरफ से भी अगर कोई कॉम्पनसेशन कोई इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया जाए, आपकी सलाह हमने नोट कर ली है और जब भी कभी मुझे निजी तौर पर मौका मिला मैं इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
1: और दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं, हम अमित की कॉल लेंगे मगर उससे पहले आइए जयपुर से जुड़े जितेंद्र से। जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: धन्यवाद सर, जैसे आप एफएमसीजी बोलते हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए बताते थे आप बताएं, तो एफएमसीजी में भी जैसे कई तरह का है जैसे डाइवर्सिफाई एफएमसीजी पर्सनल प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है क्या, तो पहला तो प्रश्न ये है और दूसरा कि एक देश का पहला दूसरा प्राइवेट बैंक है उसके भी कुछ शेयर के दाम लिए है, तो मैं उसमें लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहा हूं तो क्या ठीक है क्या?
0: जितेंद्र जी एफएमसीजी जब हम बोलते हैं इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, तो आपने जो जिक्र किया कुछ कंपनियां खाने पीने की चीजों में है जैसे बिस्किट हो गए नमकीन हो गए इस प्रकार की चीजें बनाती है, अच्छा कुछ ग्रोसरीज में है शैम्पू तेल साबुन वगैरह इस प्रकार की फेस क्रीम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, इन सबको मिला के हम जितेंद्र जी एफएमसीजी बोलते हैं, और इनको फास्ट मूविंग क्यों बोलते हैं क्योंकि आप मान लीजिए टूथपेस्ट लेकर आए तो टूथपेस्ट आपका क्या हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा, साबुन लेके आए 5-7 दिन 10 दिन चलता है, ऐसे खाने का सामान लेके आए बिस्किट तो उनकी तो वैसे ही शेल्फ लाइफ होती है, तो हम जब एफएमसीजी जब मैं बोलता हूं तो मैं इन सबको मिला के बोलता हूं, खाने की आपने जो बात करी खाने की भी हो गई ये हो गई, मैं दोनों को मिला के बात करता हूं, तो पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता था। दूसरे आपने प्राइवेट बैंक का बोला, प्राइवेट बैंक देखिए नाम तो लेते नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन से प्राइवेट बैंक का कह रहे हैं कि जिसके शेयर ले रहे हैं या कौन सा हुआ, अब ये तो जब तक ये ऐसा सवाल है कि जब तक नाम ना खुले और नाम हम लेंगे नहीं ना आप लेंगे ना हम लेंगे, तो इसलिए मेरे ये बहुत कठिन हो जाता है कि आप किस बैंक के, बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देखें इस साल तो नतीजे उतने बुरे नहीं रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं इस मुझे नहीं पता किस प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं, कुछ एक मिले जुले थे बस ज्यादातर के अच्छे थे, तो ये तो जितेंद्र जी जब तक नाम का राज नहीं खुलेगा और वो खुलेगा नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इसमें। जी
1: आइए निश्चित जुड़ा जाए अमित से, अमित है दिल्ली से, अमित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: नमस्कार सर, देखो सर्वप्रथम प्रश्न ये है मेरा सर
0: जी,
6: सर अभी जो ओमान और ईरान के बीच जो बात चल रही है
0: जी
6: हॉर्मोन्स ओपन करने के लिए
0: जी,
6: तो आपको क्या लगता है सर कि ये वार्ता सफल रही है? और दूसरा प्रश्न ये सर कि हाल ही दिनों में कल या परसों अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पर मंजूरी दी है जिससे उन्होंने ये कहा कि रूस से इंपोर्ट करने वाली इतनी कंट्री है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। सर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राइट मिल गया तो क्या हम भी रूस से इम्पोर्ट करते हैं तेल से, क्या हम भी इस तरह का संकट बता रहे हैं कि सर 100% टैरिफ लग जाएगा उनको?
0: नवित आपके पहले सवाल का जवाब, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मूज पर कोई समझौता हो जाएगा नहीं, ये तो दिस इज अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये तो हर किसी के मन में है। हम सब चाहते हैं कोई ना कोई समझौता हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही शुरू हो। मुझे लगता है मार्केट मंत्रालय या कोई भी एक्सपर्ट इस पर टिप्पणी कैसे, इस समय तो राष्ट्रपति ट्रंप भी स्वयं टिप्पणी नहीं कर पा रहे कन्फर्म तौर पर खुलेगा कि नहीं, देखते क्या समझौता होता है। जो आपने दूसरी बात पूछी, इसको बाई पार्टिसन ग्रुप है अमेरिका में सेनेट में जिन्होंने बिल रखा था, इसको लिंडसे ओग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एंड ईरान 2025 बिल कहा जा रहा है, जहां 86-11 से ये बिल पास हो गया है सेनेट में। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा ये बिल, वहां से इसको अप्रूवल मिलेगा और उसको अप्रूवल मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये पावर्स आ जाएंगे। 5 देश हैं इसमें, मैं बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि शायद इसका हम जिक्र मार्केट मंत्रालय में अलग से भी इसके बारे में आज करेंगे। और इसमें इंडिया है, चाइना है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और अजरबैजान है। इन 5 देश सबसे बड़े इम्पोर्टर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो बायलेटरल ट्रेड डील है उस पर लगातार बातचीत बहुत समय से चल रही है, और अगर ये हो जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं इसका अमित, और देखते हैं अगले हफ्ते क्या नतीजा आता है। पर आपका जो अंदेशा है, आपका जो डाउट है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, दुरुस्त है।
4: जी शरद जी, एंड कंटिन्यूइंग द स्टोरी, द यूएस सेनेट हैज वोटेड टू अप्रूव

0: will to sanction Russia and key buyers of its petroleum products, such as China and other countries, claiming that such trade helps fuel the Ukraine war. The bill, renamed as Lindsey-Graham, Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose 100% tariffs on goods from countries that are the top five importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 until 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. Sharaji, would like to know, with the passing of this bill, of course, you know, the other house has to pass the bill now. But even earlier, we saw a couple of months back as well that President Trump, you know, in all his whims and his fancies, he would impose up to 100% or even more tariffs. So what difference does it make with this bill being passed and the earlier actions of President Trump?
1: Okay, so let's understand this, because the current tariffs which were being agreed with India until now, they were two-tier tariffs. One was the MFN tariffs, the most favored nation, basic 10%. Mm-hmm. And on top of this, Section 301B of the US Trade Act 1974, India was subjected to another 10% tariff. This was for forced labor, that India was probably using some raw material for forced labor and so on and so. So in all 20%, which wasn't bad for us, although India was protesting that we should not be tariffed because we are using forced labor, because there was no product in India which was going on forced labor. There were some Chinese imports, right, supposedly, which America said, which are using forced labor. So that was still okay, but this 100% would really put us in problem. As I said, there are five countries. There's India, there's China, there's Slovakia, Hungary, and Azerbaijan. And you know, out of the total Russian oil, about 50% of the oil is being imported by China. About 37% of the oil that Russia currently imports is being imported by India. For Indian imports, it's about 50%, which is the total 88% oil that we import. 50% is coming from Russia. So I think this will be extremely detrimental, because half of the oil we are importing from there, I hope it doesn't happen. Because I must clarify to the listeners that this passing of this bill in House of Representatives next week, hopefully, which is being anticipated, this will not impose tariffs on India by default. It gives powers to the President of the United States to impose. So let's see what President Trump decides after this bill is passed. But it's definitely a matter of concern for Indian exporters.
2: Right. So, Tom, who has anything to do with you? आप भी उनसे अपना सवाल ले सकते हैं, मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि सप्ताह के भीतर हमारे प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के नतीजों के कारण ये बढ़त आई। आरबीआई की मौद्रिक नीति की वजह से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 405 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 78,499 पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक यानी लगभग 0.8% बढ़कर 24,571 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1%, जबकि स्मॉल कैप 100 में इस सप्ताह 2.5% से अधिक का उछाल आया। इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में इस सप्ताह बढ़ोतरी हुई। सभी नामित कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 494,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया। अंतर्बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए और 21 पैसे पर बंद हुआ। इधर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से विशाल। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: क्या कारण है और क्या करते हैं, ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला वो कब तक होगा?
1: डिफेंस सेक्टर की आपने बात करी विशाल, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर भारत का एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर है। उसमें बहुत ही शेयर्स में आगे ऊपर जाने की संभावना नजर आती है। भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है और अब तो भारत एक्सपोर्टर बनता जा रहा है डिफेंस का, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों में कंपनी का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। विशाल, थोड़ा सा लंबे वक्त का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। बीच बीच में जो फेसेस आते हैं, जब बिल्कुल शेयर स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उससे जो निवेशक होते हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी होती है कि भाई पैसा लगाया हुआ बढ़ तो रहा नहीं, अच्छा तो बैंक में रख देते हैं। बहुत तरीके के ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं। तो विशाल, ये लंबे वक्त को रखने की चीज है, इसको रखिए। आप 2 से 5 साल का नजरिया रखिए, ये बहुत बढ़ेगा। दूसरा, ईरान और

0: का कोई समझौता कब होगा? मुझे लगता है एक तो ऐसा सवाल है कि वो एक पुराने पिक्चर का वो था टप्पा को किसने मारा, ये इस टाइप का सवाल मुझे नजर आता है, क्योंकि ये तो सबको सब सारी दुनिया इस सवाल की तलाश कर रही है कि कब होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समझौता दुनिया में शांति लाएगा। तो जैसे आपके दिमाग में सवाल है और ये हम सभी यहाँ जो बैठे हैं हम सबके दिमाग में सवाल है, काश हम आपके सवाल का ये जवाब दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो फिर हम तो चाहते हैं कि आज अभी बीते हुए कल में ही हो जाए।
1: बिल्कुल, भिले से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्ते प्राची जी, मार्केट मेगा टीम को और शरद जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर जी, इनकम टैक्स में यदि किसी का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही अर्निंग है और 1,80,000 रुपए के व्यक्ति बात हमारे 4,00,000 से कम है
0: जी,
2: तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना अभी भी मैंडेटरी है कि अब वो न करके भी कोई दिक्कत नहीं है?
0: रवि जी, अगर खाली इंटरेस्ट इनकम है और ये देखिए कि कहीं इंटरेस्ट पर टीडीएस तो नहीं कटा है, अगर रिफंड है तो फिर तो आपको फाइल करना पड़ेगा, वरना रिफंड कैसे आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी इनकम आपने बताया कि बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे रिफंड कैसे आएगा? और मैं दो चार चीजें और बता दूं, कुछ लोगों को वैसे ही फाइल करना मैंडेटरी होता है, मान लीजिए आपने 2,00,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे 10,00,000 सॉरी क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया है, आपने विदेशी यात्रा करी है, आपका 2,00,000 से ज्यादा बिजली का बिल, 1,00,000 से ज्यादा साल का बिजली का बिल आया है, तो अब ये सब चीजें भी बता दी गई, तो ये भी देखनी पड़ती है। पर सबसे ऊपर जो रहता है वो ये है कि आपको अगर रिफंड लेना है रवि जी, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मुझे लगता है रिटर्न फाइल करना एक अच्छी बात है, और अगर आपकी कोई इसमें कॉस्ट नहीं आ रही है और वो आ रही है, तो आपको रिटर्न फाइल की हुई अक्सर कल को वीजा लेना है, कोई लोन लेना है, आपके काम आ सकती है। पर हाँ, टेक्निकली देखें रिफंड नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बेशक ना भी फाइल करें तो चल जाए।
1: बीइंग अ सिविलियन हमारी जिम्मेदारी भी है,
0: जिम्मेदारी है, पर उसमें प्राचीन का सवाल यहाँ से आया कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे हाँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें जो मैंने बोली ये है फिर तो जिम्मेदारी है, पर इनका सवाल ये था कि इनमें से कुछ नहीं है, इनका 4,00,000 से कम है, तो फिर फाइल करें ना करें, तो तकनीकी जानकारी भी मुझे लगता है हमें देना बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गाजियाबाद से हमारे साथ राम किशन जी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो
0: जी,
3: हाँ मैं राम किशन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
0: जी राम किशन जी,
3: सीनियर सिटीजन हूँ मैं, तो मेरी इनकम जो है 82 है
0: जी,
3: हाँ 10-5,000 वैसे भी इनकम हो जाती है टोटल, तो 30 दिन 3 दिन तो आयकर इनकम भरनी जरूरी है नहीं है?
0: रामकिशन जी, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं, रामकिशन जी बहुत वरिष्ठ नागरिक, आप आवाज से बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, बहुत सीनियर लग रहे हैं, हम आपको पहले तो प्रणाम करते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम, अभी आपसे पहले भी जो प्रश्न करता थे उन्होंने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, मुझे लग रहा है रामकिशन जी अगर जो आप इनकम बता रहे हैं इसमें तो जरूरी नहीं है, पर ये देख लीजिएगा कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं काट लिया है बैंक ने आपकी जो ब्याज से इनकम है, अगर टैक्स कटा है रामकिशन जी फिर आपको फाइल करनी जरूरी है, वरना देखिए मैं प्राचीन निश्चित तारीफ करना चाहूंगा, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है कितने जिम्मेवार हैं, उनको लगता है कि हमारी थोड़ी भी इनकम है और आयु के इस स्टेज पर वो अभी भी चाहते हैं कि वो कहीं उनसे कोई कंप्लायंस में गलती ना हो जाए, और यू नो दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। रामकिशन जी बिल्कुल, अगर इनकम टीडीएस नहीं कटा है तो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, और हम आपको फिर प्रणाम करते हैं जी।
4: नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी वेलकम।
5: नमस्ते मार्केट मदर सिंह।
4: नमस्कार जी।
5: नमस्कार। तो ये जो वी आर इम्पोर्टिंग 55% रिसेंट रिपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया, क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड ऑल्सो इट इज वेल नोन दैट लॉट ऑफ रिफाइनरीज हैव बीन डिवास्टेटेड इन रशिया बाय यूक्रेन, वी आर ऑल्सो री एक्सपोर्टिंग डीजल एंड पेट्रोल टू डैक, सो वॉट इज द रिफाइनिंग मार्जिन, हु आर द बेनिफिशियरीज कंपनीज, विल देयर दो शेयर्स बी बेनिफिटेड एज इन्वेस्टर? ठीक है वो रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं मर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, है पर नहीं है एक तरह से, हमें उसमें क्या बेनिफिट ले सकते हैं? क्या प्राइवेट रिफाइनरीज के शेयर में अभी कुछ उछाल आ सकता है या आएगा, या फिर ये जो ट्रंप की नई कहानी बना रहे हैं कि अब वो उसमें टैक्स लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावट लगेगी, ये रिफाइनिंग मार्जिन आया तो होगा, किसको मिला होगा, किन कंपनी, प्राइवेट कंपनी को शेयर में फायदा है या नहीं? सरकार ने तो शायद नहीं किया होगा।
0: Shankar ji, dekhe, it's a very good question, first of all, because Shankar, I think your question emanates from the fact because this is a double-edged sword. Whereas on one side, these oil marketing companies, because of fluctuating crude oil prices, under recovery from the customers when the crude oil price is high, the cost is high, and you're not charging as much, you know, there's under recovery on petrol, diesel, LPG. On the other side, yes, you're right, we are importing from Russia for export also. So, you know, it's a double-edged sword. So refining margin varies, but your question is private companies, yes. Like for example, the Jamnagar refinery in India is one of the finest refineries. And that can also refine the Western Texas intermediate oil, you know, which is the harder oil. It's not the sweet oil.
6: Sweet oil, yeah.
0: And that is very tough to refine. Mm-hmm. So we are one of the finest refiners in the world. And Russia, despite being one of the largest producers of oil, is because of refineries being damaged, it is sending it to India, and it had a shortage of petrol and diesel for that matter. So refining margin is fairly healthy, but the problem is that refining margin comes under pressure because the domestic sale becomes a loss-making proposition. So it's a mixed bag, I would say, Shankar, to answer your question, whether to invest or not, I would advise that for some time till the matter settle, it will not be a bad idea to stay away from oil companies for retail investors.
6: Right, and moving on to the US markets, the Wall Street ended higher yesterday as traders interpreted an unexpected decline in the US jobs in July as a sign that the Federal Reserve may not need to raise interest rates soon. And among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose 1.3%, the S&P 500 rose 0.6% to settle at a record closing high of 7,757. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. For the week, the Nasdaq surged 5.2% and the S&P 500 soared 3.6% and the Dow climbed 3%. On the economic front, the U.S. Labor Department said non-farm payrolls fell by 23,000 in July, while the unemployment rate edged down to 4.1% in July from 4.2% in June. Sharaji, very briefly, how do you see the interplay of the U.S. Senate bill, which was just passed in the Senate, with the U.S. markets behaving in the coming maybe a week or 10 days' time?
0: Well, U.S. markets have been going gung-ho, if you ask me, throughout the war. And I think this data is a very interesting data, because on one side, this is bad that people are not getting jobs, the job data. On the other side, what is taken positive out of this data is that there's going to be no inflation now, or lower inflation, which means the Fed may not hike the interest rates. So this turns out to be a double-edged kind of an announcement. Overall, I think the American markets see more on the positive side. So we are expecting the market to surge. In fact, you saw the commodity markets rising because of this.
6: Right. Next caller is Virender from Delhi. Virender ji.
7: Namaskar.
6: Namaskar.
7: Copy to all. Dr. Kohli, एक बात प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिस दिन से भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है
0: जी,
7: और अमेरिका जिस दिन से टैरिफ ज्यादा लगा रहा है इस बदला लेने के लिए या डराने के लिए
0: जी,
7: अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मार रहा ना अमेरिका, हमारी जैसी मार्केट को छोड़ करके अगर ना भी बेचे तब भी हमारा काम बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है. जैसे कि हमने कम से कम 40 देशों से हमने एमबीए मतलब एग्रीमेंट कर दिया है और ये हमारे लिए फायदेमंद है. डोंट यू थिंक सो?
0: बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने तो जवाब खुद ही दे दिया, मेरे लिए जवाब छोड़ा ही नहीं है. बहुत आप जो कह रहे हैं सब पे कॉपी टू ऑल, मैं टिक मारता हूँ और आपके कॉपी टू ऑल, आपने सब बहुत बढ़िया बात कही है. और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा. उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, इससे उनके देश में महंगाई बढ़ती है. टैरिफ आके लगता किस पे? खुद पे तो लगता है, इम्पोर्टर्स पे लगता है और अमेरिकी जनता को देना पड़ता है. आपने तो सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं वीरेंद्र जी.
1: बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने घोषणा की है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा. एक वक्तव्य में पीसीआई ने कहा कि हर भारतीय बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के तुरंत डिजिटल पेमेंट कर सकता है. इसने यह भी बताया कि छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. पीसीआई ने कहा कि यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी से बचाव और इनोवेशन में निवेश कर रहे हैं. पीसीआई ने स्पष्ट किया है कि मर्चेंट सर्विस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कोई भुगतान करना पड़ेगा. ये किस तरीके से एक भ्रम तोड़ा गया है कि शायद आम ग्राहकों को भी जो है इस पर भुगतान करना पड़ेगा.
0: लोगों में एक भ्रम फैल रहा था कि शायद हमको देना पड़ेगा 2,000 रुपए से ऊपर के, और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ये जो जिस व्यापारी से आप डील कर रहे हैं वो भी बड़ी पेमेंट तो उनको देना पड़ेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है। तो मुझे लगा सरकार ने उस भ्रम को क्लियर कर दिया, लोगों के लिए यूपीआई फ्री बना रहेगा। और सच बात बताएं अगर जो कॉस्ट की बात करते हैं तो अभी भी तो सब्सिडाइज हो रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए।
6: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर द हेडलाइंस वंस अगेन, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव

0: Sensex and Nifty jumps over 0.5%. Wall Street wraps up weak with strong gains buoyed by macroeconomic data and the UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies the Apex Digital Payments Body PCI. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
3: सुनिए, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम तामीर इरशाद। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। अपनी फरमाइशें आप हमें लिखकर भेज सकते हैं उर्दू सर्विस est@gmail.com के जरिए। आइए जल्दी जल्दी शामिल हो जाइए इस प्रोग्राम में और सुनिए जब तक इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

अभी आप सुन रहे थे ये दुआया नगमा मौसिकार राहुल देव बर्मन का और नगमा निगार शैलेंद्र का लिखा हुआ मोहम्मद रफी की आवाज में छोटे नवाब फिल्म से जिसको सुना चाह था राजधानी रायपुर से नीलम मेघ नीलम डॉक्टर अंजन कुमार और बिट्टू कुमार ने और सुनने के ख्वाहिशमंद थे रामलाल चंद्रवंशी कृष्णा चंद्रवंशी काजल मीनाक्षी मध्य प्रदेश से सुना चाह था नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शी मिर्गे प्रियंका काल पांडे ने महाराष्ट्र से और रविंद्र मोहदास आशा देवी वर्षा सुमन बिहार से सुनने के ख्वाहिशमंद थे मोहम्मद सईद अब्बासी निगत प्रवीण अब्बासी शाहनवाज सरफराज अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चुकनट्टी से सुनने के ख्वाहिशमंद थे मोहम्मद यूनुस खत्री मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री ने सुनना चाह था खंडवा से और अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला सवात हुजरे जचेर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे और शेख शमा परवीन और फारूक शेख मुस्कान उत्तर प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद थे सुनना चाहा था सीताराम कांगड़ा विविधा बोतो निखिल कांगड़ा ने रोहतक से और सबिया खानम फरीदा खानम रईसा खातून उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे और सुनना चाह था अजीम वकार महिर अजीम और निशा अजीम ने नई दिल्ली से पिट्टू भाटिया रीता भाटिया रजत भाटिया हरियाणा से सुनने के ख्वाहिशमंद थे और राजनगर कांति निकेतन से कुशेश प्रसाद गुप्ता रुद्र और रानी मुकेश गुप्ता ने लखनऊ से सुनने के ख्वाहिशमंद थे और सुना चाह था मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा मधु बालूजा और सागर बालूजा ने हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में जिसको सुना चाह है बड़े बेगम वकील प्रेमी और हमाद जमील गंजड़वारा से सुनना चाहते हैं धर्मेंद्र चीपा कपिल चीपा पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से मीधा अलका मीधा सुनने के ख्वाहिशमंद हनुमानगढ़ राजस्थान से और रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान सुनना चाहते हैं उदयपुर हनुमानगढ़ राजस्थान से और देवेंद्र भटकर सुशीला भटकर अनिकेत भटकर नागपुर से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद है पौरगढ़ नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा इंद्रजीत कौर छावड़ा स्वीटी छावड़ा और प्रवण प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली प्रदेश से सुनना चाहते हैं और विजय महाबिया कविता महाबिया पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं श्रीराम घोतकी उषा घोतकी शेगांव से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं दिलावर खान हसीनाबान लीला नयाब रघुवीर नगर नई दिल्ली से संजय डिंगिया नमन डिंगिया और अपार डिंगिया उत्तर प्रदेश से सुनना चाहते हैं और राजेश साबले पाटिल राजदीप साजेश और राजेश संभाजी नगर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बाबू सिंह धीमान बलजिंदर कौर धीमान और रमणीत निशु सुनना चाहते हैं मुक्तसर पंजाब से।

सुनिए, अभी आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में, ये नगमा गमन फिल्म से। इसकी तर्ज बनाई थी जयदेव ने और गजल थी ये मखदूम मुहिद्दीन की। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मन्ना डे की आवाज में, जिसको सुनना चाह है मोहम्मद रुकनुद्दीन बंठाल, शब्बे मराठी, आसिफ इकबाल ने कर्नाटक गुलबर्गा से। सुनना चाहते हैं नसर अब्दी अज़ल इमाम और हसन इमाम झारखंड से। डॉक्टर नबीदुल हसन बेगम शाह अनवाद, भवन प्रकाश गौतम गंजड़वाड़ा से सुनना चाहते हैं। फहीम मंसूरी बांदा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं फातिमा मंसूरी के साथ। पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं। संभल से छोटे अंसारी और असद अंसारी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। नवीन अंसारी, आफिया परवीन और अब्दुल माजिद अंसारी बनारस से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद और अजरा तबस्सुम सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रदेश मिर्गे, प्रियंकाल पांडे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं ईसा सलमानी, नुशा सलमानी, बीबी आलिया, धनोली, तेलीवाला से। सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से सुनना चाहते हैं टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। कालकर से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। ठेकेदार शेख वजीर, शेख सहल, शेख बजाज से सुनना चाहते हैं।

अजमेर से सुनैक हाशमन हैं, गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी। सुभाष योगी, राजू मिलानी, बब्बू डब्बू हांसी से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं छाया कोहली और अनिल कोहली और प्रियांश कोहली नागपुर से। उदयपुर से बाबूभाई भारती देवी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से विनोद मंडलकर, वीणा मंडलकर और विविधा मंडलकर। सदाशिव थोरात, कविता थोरात और श्रेया थोरात महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं और सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना, कृष्णा पाठ नई दिल्ली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

सुनिए, अभी आप सुन रहे थे ये नगमा छलिया फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी कमर जलालाबादी ने, माफ कीजिए, वो लिखे थे कमर जलालाबादी ने और तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है मोहम्मद हसन अंजान, साइमन नवाज और हसन नवाज ने घिरनी झारखंड से, और संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया खंडवा से सुनना चाहते हैं। दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, अक्षय रामेकर राहतगांव के अमरावती से सुनना चाहते हैं, और उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, मंजू नई सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। मोहम्मद अनिस मोहाल, दानिश मोहाल और रफीक पवार महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं। शाहजी बोट के, नंदा बोट के, अक्तम दमदाड़े महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं

गांव उगाला जिला अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकित कौर और आरती रानी। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की श्रोता छुपा को झारखंड सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। रत्नमाला सुरलकर, विजय सुरलकर मोटाला महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद है और सुनना चाहते हैं नूराइशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान बलिया से। और पी एस नोहानकर, निर्माता नाहनकर, निर्मला नाहनकर के साथ महाराष्ट्र सुनने के ख्वाहिशमंद है और सुनना चाहते हैं कैलाश पुलवारी, दीपक पुलवारी, वेदिका पुलवारी खंडवा से।

0: सर, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये मातम मुजद्दीन का लिखा हुआ नगमा, जिसकी तर्ज बनाई थी इकबाल कुरैशी ने। शब के 11 बज चुके हैं, प्रोग्राम तामील इरशाद अभी जारी है। आइए इसी दौरान सुनते हैं खबरें बर्रे सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, खबरें बर्रे सगीर से मोहम्मद आजम खान के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा तहकीक और उभरती टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बहामी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफात की जरूरत को उजागर किया है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकलीफ पहुंचाने की खातिर बड़े सनती इदारों के साथ कलीदी मफाहिमनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदन ने कहा कि उनका मुल्क सिफारत

करके सही ऐड बंदे, लेकिन दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाज में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल के फाइनल में अश्मिता चमिहा का मुकाबला चीन की प्रोहान से होगा। तो खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मुकदम रखें और अपने आप से ये सवाल करें कि किस तरह उनके काम से मुल्क को फायदा हो सकता है और उसकी जरूरियात पर तवज्जो दी जा सकती है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि भारत सभी शोबों में खुद कफील बनने की समत काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा खुद किफालत की समत में ये मुहिम एक विकसित भारत की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर शोबे में भारत की कोशिशों को तस्करा करते हुए कहा कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट पर प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। इधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, IIT दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम ने IIT दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। उम्र दाखिले इमदाद बहामी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बहामी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी डिजिटल तहफात की जरूरत पर जोर दिया है। वो आज मुंबई में सहकार नव क्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा डिजिटल लेनदेन के फ्रॉड के मामलों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंककारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतालिक जराइम से निपटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वजीर दाखिला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया जो शहरी इलाकों के इमदाद बहामी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी सिक्योरिटी फराहम करेगा। हुकूमत ने आज अहम सनअतकारों और इको निजाम तैयार करने वालों के साथ सिलसिलेवार करीबी मफाहमत नामों का ऐलान किया जिनमें कैश फ्री पेमेंट्स, ड्रोन डायनेमिक्स, वेल्चर इंडिया, केयर्स 24 और स्टार्टअप्स इंडिया कौंसिल शामिल है। इन मफाहमत नामों पर तजारत और सनत के सनअतों दाखिली तजारत के फरोग के महकमे ने दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत में मुतला किया गया कैश फ्री पेमेंट्स के साथ दस्तखत किए हैं। मफाहमत नामे का मकसद स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। डार्विन डायनेमिक्स के साथ दस्तखत किया गया मफाहमत नामा इंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की स्टार्टअप इकोनिज्म को मजबूत करेगा। सरकार ने वजात की कि सारिफिन के लिए UPI एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा कि सारिफिन को UPI के जरिए रकम की अदायगी करते वक्त लेनदेन पर किसी तरह के चार्ज का सामना नहीं करना होगा। साथ ही बेशतर कारोबारी लेनदेन पर भी कोई चार्ज आयद नहीं होगा। वजारत ने कहा कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्जेस का सिलसिला शुरू होता है तो इसका इतलाक एक मखसूस हद के ऊपर महदूद कारोबारी लेनदेन पर ही होगा और ये बहुत मामूली शरह होगी। भारत ने अपने माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में एक अहम संगी मिल हासिल किया है। मुल्क में निशुदा गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की सलाहियत 300 गीगावाट से तजावुज कर गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नगर काबिल तरदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने उजागर किया कि भारत की काबिल तरदीद तवानाई की सलाहियत में गुज़श्ता 12 बरस में 400% का इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा गैर रिवायती ईंधन पर मबनी नसब शुदा बिजली की सलाहियत के 300 गीगावाट के संगी मील से इस बात का इजहार होता है कि भारत के माहौल के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली मुकर्रर करदा आलमी अहदाफ के मुताबिक जारी है। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सदर मसूद पजिकशान ने मुल्क के कौमी मफाद का तहफ्फुज़ करने सिफारत करते थे अपने अहद
वायदा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब परेशान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफादनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कुरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदन ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मस्कुरा मफाहमतनामे पर इस साल जून में दस्तखत किए गए थे। इसके तहत दोनों मुल्कों को दो महीने के अरसे में बातचीत करने और पायदार अमन समझौते की समत काम करने की सहूलत दी गई है। आज जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा रास्ते पर बहाली के काम और नासाजगार मौसम की सूरत हाल के पेशे नजर 9 अगस्त से बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों पर मुअत्तल रहेगी। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर अंशिल गर्ग ने एक बयान में कहा कि हालिया बारिश के सबब यात्रा के रास्ते में मुतासर हिस्सों पर मरम्मत और रखरखाव का काम जरूरी हो गया है और इस काम को सरहदी सड़क तंजीम अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा कुछ रोज के लिए भारतीय मौसमियात महकमे ने खराब मौसम की भी पेशगोई की है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि छड़ी मुबारक रिवायती पहलगाम रास्ते से जाएगी और 28 अगस्त को इस साल की यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। आज उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय वेटलिफ्टरों ने अच्छे खेल का मुजाहरा जारी रखा और मर्दों के जूनियर 60 किलोग्राम जुमरे में एक सोने का और चांदी का तमगा जीता। टॉम चू मित्तल ने कुल 3 तमगे जीते, जिनमें मजमूई जुमरे में सोने का, स्नैच में कांसे का और क्लीन एंड जर्क में चांदी का तमगा शामिल है। उन्होंने कुल 266 किलोग्राम वजन उठाया। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शिमाल मशरक के हिस्सों में शदीद बारिश के इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवा चलने की पेशगोई की। आज दिल्ली के हिस्सों में शदीद बारिश हुई। आईएमडी ने कल सुबह कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर मतला और आलूद रहने की पेशगोई की है। आसान में कल कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चनिया का मुकाबला चीन की क्यूहैन से होगा। अश्मिता सेमीफाइनल में अपने हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में पहुंचे, जबकि क्यूहान ने दूसरे सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया के जी किम को शिकस्त दी थी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बहामी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी डिजिटल तहफात की जरूरत को उजागर किया है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकफीत पहुंचाने खातिर बड़े सनदी इदारों के साथ कलीदी मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी से एहज बंद है, लेकिन वह दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में दरिया में पानी की सतह बढ़ने के तनाजर फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर टूर्नामेंट के खवातीन के फाइनल में अश्मिता चनिया का मुकाबला चीन की क्यूहैन से होगा। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तमिल इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। आप सुनते हैं इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में।

0: में भी आप सुन रहे थे ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आपकी परछाइयां से। इसको लिखा था नगमा निगार राजा मेहदी अली खान ने और मौसिकार थे मदन मोहन। सुनचा था चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने और सुनने के ख्वाहिशमंद थे नासिर शेख नादिया नासिर साजिश शाहिद श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। मोहम्मद अली अंसारी अजीब अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी मऊ से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुना चाह था रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल ने अम्बाला हरियाणा से। राजू मलोडे माया मलोडे और प्रिया मलोडे कोपरगांव से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुना चाह था फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल ने बिहार से। प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा पलारी से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुना चाह था अनिल कुमार मालवीय दर्द ने त्रिभुवन नाथ मालवीय के साथ बड़े गैबी वाराणसी से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे आमना नसरीन आसाद आसमा परी राबिया नई दिल्ली से कापस हेड़ा बॉर्डर से। और बलिया से सुनना चाहता था नूराइशा अहमद बागवान ने। हाँ, इस प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमंत कुमार की आवाज में जिसको सुना चाह है कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा और नितिन मयंक शर्मा ने। पंजाब से अरजिंदर सिंह चीदा जसवीर जस्सी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारे पसंद लौट आई।

अभी आप सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके मौसिकार थे मदन मोहन और नगमा निगार थे राजा मेहदी अली खान। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गीता दत्त की आवाज में, जिसको सुनना चाह है करेला मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, हार्दिक वंश बत्ता और रेलवे रोड गजुड़वारे सुनना चाहते हैं मोहम्मद करीम जख्मी, नाज बी फातिमा शेख और नबी हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी एटा से सुनना चाहते हैं, सूर्य जाधव, अनिता जाधव पैठन से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, महेंद्र सरगडे, विजय सरगडे, मिलन सरगडे, वरुण जोलकर से सुनना चाहते हैं, शास्त्रीय का बीरशर्त किशन सबका सबका विशाल सबका सुनना चाहते हैं और गुन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली सुनना चाहते हैं, योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक उत्तर प्रदेश कासगंज से सुनने के ख्वाहिशमंद है, रियासत हुसैन सिद्दीक, सिद्दीकी, रियाज रिफाकत उत्तराखंड सुनने चाहते हैं और भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और बेटी हिफ्जा अली मुंबई से सुनना चाहते हैं और

0: उत्साह में बाबूजी धीरे चलना।
1: सुन रहे थे आर पार फिल्म से नगमा गीता दत्त की आवाज में हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार की आवाज में, जिसको सुना चाह रहा है एस एम जावेद शुभम ने गुमला झारखंड से, और सुनने के ख्वाहिश पर है मनोरम करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और जग्गी दुआ। सुनना चाहते हैं सुबोध चौधरी कलकत्ता से, और वंदिवा ककोला से सुनने के ख्वाहिश पर है रमेश कटनकर, और उदयपुर से सुनना चाहते हैं रमेश नचानी, और सुनने के ख्वाहिशमंद है बचकमल बसंत ब्रिगू छत्तीसगढ़ से।

में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में नगमा हम सब उस्ताद हैं फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा था करवाईनगर से प्रोडांस जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान ने। इसी के साथ तामिल इरशाद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और जिसमें लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश के लिए, खास करके विकसित भारत 2047 के लिए योगदान करने का आह्वान किया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं राजनीतिक विशेषज्ञ केजी सुरेश। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका।
2: जी धन्यवाद।
1: सुरेश जी, जैसा कि हमने सुना, प्रधानमंत्री ने युवाओं का जैसा आह्वान किया है आज, खास करके क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग की बात की उन्होंने और साइंस और टेक्नोलॉजी पर काफी बल दिया। हालांकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा जाना जाता है और उन्होंने बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, एक सार्वभौमिक रूप से युवाओं का आह्वान किया है 2047 के विकसित भारत में अपना योगदान करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इसे?
2: बिल्कुल, देखिए मुझे तो याद आ गया, हम लोगों ने सुना है कि किसी जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनका एक अभिभाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये एक ऐसा अभिभाषण था जहां प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश आपके लिए क्या कर रहा है और साथ में जो है यह भी बताया कि आपको भी अपने देश को जो है केंद्र में रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री पहली बार नहीं है, चाहे वो एग्जाम की बात हो, चाहे वो पूरे देश भर में कहीं भी जाते हैं, युवाओं को और महिलाओं को उन्होंने हमेशा केंद्र में रखकर ही काम किया है। और चाहे वो उनकी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, स्टैंडअप इंडिया से लेकर, इतनी योजनाएं मुद्रा योजना से लेकर, किस तरीके से देश के युवा पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है, उच्च शिक्षा में जितने IITs खोले गए, नए IIMs खोले गए, नए नए संस्थाएं खोली गई, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के हमेशा जो है युवा पीढ़ी उनके जो है सबसे केंद्र बिंदु रहा है उनके सभी नीति निर्धारण में। और आज भी जब IIT में 3000 से ऊपर जब विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया और उनको जो IIT से जो निकले, यानी कि जो देश के बहुत ही हमारे एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जिसमें देश के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया, उनको प्रेरित करने का प्रयास किया, तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने आज अपनी मन की बात जो है उन विद्यार्थियों के साथ किया जो देश के भविष्य हैं, जिनसे बहुत उम्मीद भी है और जिनको जो है प्रधानमंत्री जी ने उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी एहसास दिलाया और सरकार उनके लिए क्या कर रही है अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत, इसके बारे में भी उनको सूचित कराया। तो एक तरह से इस IIT ग्रेजुएशन के बहाने मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के हर युवक को स्पर्श करने का प्रयास किया और बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन था उनका, जहां उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जो निश्चित ही हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे।
1: सुरेश जी, तो उभरते हुए शोध के अवसर जो हैं, वो जो IIT जैसे संस्थान और भी जो अन्य ऐसे संस्थान हैं देश में, वो काफी अवसर ऐसा प्रदान करते हैं और इस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है। रिसर्च सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है।
1: सुरेश जी, आपने सुना प्रधानमंत्री ने उभरते हुए जो शोध के अवसर हैं उस पर उन्होंने काफी बल दिया है और खास करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थाओं के विद्यार्थियों का उन्होंने जो आह्वान किया है कि अगले आने वाले 2 से 3 दशक हैं, ये देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर और किस तरह से वो इसे एक दिशा और दशा देते हैं उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारा देश कैसे विकसित बनेगा 2047 में। कैसे देखते हैं इसे आप?
2: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। देखिए प्रधानमंत्री जी ने हमेशा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी, उन्होंने शोध को जो है बहुत महत्व दिया, और उन्होंने कहा कि अगर अन्य मुल्कों के विश्वविद्यालय अगर आगे हैं तो उसका एक बड़ा कारण उसका है कि उनका शोध पर जो जोर देना है। इसलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी तब उसमें जो है उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है कल्पना की थी, और आज भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि वे जो युवा, जो भारतीय युवा है, उनके लिए

0: ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ हमारे युवा जुड़े, उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि विश्व में अगर हमें अपना स्थान बनाना है, हमें अपने पेटेंट्स लाने हैं, हमारे अपने शोध के क्षेत्र में जो है विश्व स्तरीय हमारा जो है उपलब्धियां अगर हमको हासिल करना है, आईपीएस लेने हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा जो है शोध पर जो है जोर दें। और आज का उनका आह्वान बिल्कुल मैं समझता हूं कि समय के अनुकूल है और हमारे युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
1: जी सुरेश जी, ऐसे कई विकासशील ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया, खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस, ऐसे जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं उस पर उन्होंने युवाओं का खास आह्वान किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में खास क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
2: आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए, आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रिवोल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी।
1: जी सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भरता की ही बात की, सेल्फ रिलायंस इन न्यू सेक्टर्स, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात थी, ड्रोन की बात है, स्पेस की बात है, और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हमारे युवा जो हैं काफी उनकी भागीदारी हो सकती है। कैसे देखते हैं इसे?
0: देखिए, जो प्रौद्योगिकी का जो क्रांतिकारी प्रगति आज हो रहा है और उसमें युवा भारतीयों के लिए बहुत सारे अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे आपने जैसे जिक्र किया स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कही, ड्रोन्स की बात कही, सेमीकंडक्टर्स की बात कही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, डेटा सेंटर्स की बात कही, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कही, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो आज ईवी व्हीकल्स को हम इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं उसकी बात कही, एनर्जी स्टोरेज की बात कही। और उन्होंने कहा कि आज हमारे पुराने, हम देखते हैं कि कई जगह जो है पुरानी नौकरियां, पुराने जो शैली की थी वो आज समाप्त हो रही है और नई नई चीजें उभर रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि पहले पहले सवाल खड़े करते थे कि क्या भारत कभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आ सकते हैं क्या, और उन्होंने ये सूचना भी दी कि हमारे पहला सेमीकंडक्टर यूनिट में जो है हमने उत्पादन का कार्य शुरू कर लिया है। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपके हाथों से सब कुछ बनेगा, चिप से लेकर शिप्स तक। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हर तरह की विधाओं में युवाओं की जो हमारी प्रतिभा है उसको उजागर करने की बात कही और उनको नई चुनौतियों के बारे में बोला, नए अवसर के बारे में बताया और कहा कि आपको इन क्षेत्रों में जो है सक्रिय रूप से आपको प्रतिभागिता आपको करनी है, उसमें भाग लेना है।
1: जी सुरेश जी, और खास करके प्रधानमंत्री जी ने आज इन क्षेत्रों के अलावा सेमीकंडक्टर की बात आपने भी की। अभी सेमीकंडक्टर एक ऐसा एक सेक्टर है जहां पर कि अभी तक कुछ वक्त पहले तक हम विदेशों पे निर्भर करते थे, विदेश के कुछ ऐसे देश हैं जहां से वो हम इंपोर्ट करते थे सेमीकंडक्टर, और आज के वक्त में अगर हम देखें तो भारत में भी इसका उत्पादन एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन किया जो कि एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए एक एडवांस्ड, जिसे कह सकते हैं एक प्रोसीजर है, और आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाना, और खासकर आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस जो है वहां पर एआई और डेटा साइंस को बूस्ट देने के लिए, उसके रिसर्च को, शोध को बूस्ट देने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आप कैसे देखते हैं इसे?
0: बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था जब हमने पहली बार जब परम बनाया, परम जो सुपर कंप्यूटर था वो भारत ने बनाया और पूरे विश्व को दिखा दिया था कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे कोई सानी नहीं है। और आज एक और कदम आगे बढ़ा के उसके बाद बहुत प्रौद्योगिकी में बदलाव आया और एआई बड़े पैमाने पर आया। और आपको याद होगा कि हमने कुछ ही समय पहले जो है भारत मंडपम में दिल्ली में जो है हमने एआई का समिट का भी आयोजन किया था, जहां विश्व के जो एआई के नेतृत्व है वो वहां जो है उनकी उपस्थिति हमने देखा। और उसी एआई को आज कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हम इसको किस तरीके से एआई के क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर्स

0: सॉफ्टवेयर में तो भारत ही है। आज चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या बेंगलोर हो या साइबराबाद हो, आप देखेंगे कि हमारा विश्व में एक तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारतीयों ने खड़े किए हैं और भारतीयों का नेतृत्व है, भारतीय वहां कार्यरत है। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम किस तरीके से जो है न सिर्फ भारत की तरक्की के लिए, पूरे मानवता के लिए हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, और उसमें मात्र मुनाफे को देखकर नहीं, विश्व कल्याण को केंद्र में रखकर हम एआई का किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो है, इससे एआई को इस्तेमाल करते हुए ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमने जो है सोनीपत कैंपस में आईआईटी दिल्ली के, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं निश्चित ही समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है एआई के क्षेत्र में भी और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी।
1: जी जी जी, सुपर कंप्यूटिंग की बात की आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़कर के भी अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर भी हम जा रहे हैं, और विश्व कल्याण के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बल दिया जिसमें कि नेशनल इंटरेस्ट की बात की, कि युवाओं को खास करके जो ऐसे युवा जो आईआईटी जैसे संस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं, वहां से पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उन्हें नेशनल इंटरेस्ट केंद्र बिंदु में रखना चाहिए ताकि आने वाले 30 से 35 से 40 वर्षों में भारत एक सुपर पावर के रूप में एक उभर करके ऊपर आए। आपका क्या कहना है इस बारे में?
0: बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो है उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि अब हम 15 अगस्त भी जल्दी ही मनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि देखिए हमने गुलामी का दौर भी हमने देखा है, और हमारा एक ही लक्ष्य उस वक्त होता था कि हमारा देश स्वाधीन हो, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया उस वक्त के युवाओं ने, और उन्हीं के कुर्बानियों के वजह से, बलिदानों के वजह से हम जो है आज एक स्वतंत्र देश में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अब हमारी चुनौतियां अलग हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी। तो उन्होंने कहा कि जो है आप अगले 25-30 वर्ष में जो भी करेंगे वो विकसित भारत, देखिए याद रखिए कि हमारा 2047 का जो है विकसित भारत का लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है। तो उन्होंने युवाओं को कहा कि आप अपने आप से पूछिए कि मैं देश के लिए इस विकसित भारत बनने की दिशा में मैं क्या योगदान कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, ये विकसित भारत के जो मजबूत जो बुनियाद है उससे पता चलता है, और ये जो मजबूत बुनियाद विकसित भारत का है ये आपको बनाना है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों में आपने रखा है कि ये जो विकसित भारत बनेगा उसका बुनियाद जो है हमारे आज के युवा तैयार करेंगे। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व बोध प्रधानमंत्री जी ने जो है उनको दिया है।
1: जी जी जी, सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर आपने चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम बज़्म-ए मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं उस्ताद नासिर अहमद खान की आवाज में राग बिहाग में ख्याल।

दोनों मुल्कों को 2 महीने के अरसे में बातचीत करने और पायदार अमन समझौते के समक्ष काम करने की सहूलियत दी गई है। उम्र दाखिला इमदाद बहामी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बहामी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी डिजिटल तहफात की जरूरत पर जोर दिया है। वो कल मुंबई में सहकार नव क्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा, डिजिटल लेनदेन के फ्रॉड के मामलों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंककारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतालिक जराइम से निपटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वजीर दाखिला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया, जो शहरी इलाकों के इमदाद बहामी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराहम करेगा। सरकार ने वजाहत की है कि सार्फिन के लिए यूपीआई एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा कि सार्फिन को यूपीआई के जरिए रकम की अदायगी करते वक्त लेनदेन पर किसी तरह के चार्ज का सामना नहीं करना होगा। साथ ही बेशतर कारोबारी लेनदेन पर भी कोई चार्ज आयद नहीं होगा। वजारत ने कहा, अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्जेस का सिलसिला शुरू होता है तो इसका इतलाक एक मखसूस हद के ऊपर महदूद कारोबारी लेनदेन पर ही होगा। ये मोहलत बहुत मामूली होगी। वजारत ने कहा, अगर अदायगी और तस्वीर के निजाम से मुतालिक एप में तरमीम एक ऐसा बंदोबस्त है जिसका मकसद UPI के तवील मुद्दत तक पायदार रहने, तकनीकी पेशरफ्त और उभरते हुए खतरात के तनाजु में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। आज ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय वेटलिफ्टर अच्छे खेल का मजार जारी रखा और मर्दों के जूनियर 60 किलोग्राम जुमरे में सोने का और चांदी का तमगा जीता। तिमोची मित्तल ने कुल 3 तमगे जीते, जिनमें मजमू तौर पर सोने का स्नैच में कांसे का और क्लीन एंड जर्क में चांदी तमगा शामिल। उन्होंने कुल 266 किलोग्राम वजन उठाया। आसान में आज कोरिया मास्टर बैडमिंटन के टूर्नामेंट खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चलैया का मुकाबला चीन की टुहान से होगा। अश्मिता कल सेमीफाइनल में अपने हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल पहुंची, जबकि क्यूखान ने दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की जीत को शिकस्त दी। खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों के महकमा सकाफत के वजीरों की 11वीं मीटिंग में मंजूर किए गए भोपाल ऐलानिये में मेंबर मुल्कों के दरमियान सकाफती इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया गया है। अमरीका ने नई मुलाजमत तलाश करने के लिए गैर मुल्की कारकुनों के लिए 10 या 60 दिन की मोहलत खत्म करने की तजवीज का जायजा लिया है। ईरान के सदर ने कहा कि उनका मुल्क सिफारतकारी ऐज बंद है, लेकिन दबाव में आकर नहीं झुकेगा। ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के तमोची मिताई ने सोने के तमगे समेत 3 तमगे जीते हैं, जबकि गुरु नायडू सेनापति को चांदी के 2 तमगे और कांसे का 1 तमगा मिला है। और आसियान में आज कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल फाइनल में भारत की अश्मिता चलैया का मुकाबला चीन की क्यूहान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं जिया मोहिउद्दीन खान डागर का सरस्वती वीणा पर बजाया हुआ राग जो कौन और राग आहिर।

अभी आप सुन रहे थे जिया मुहिद्दीन खान डागर का सरस्वती वीणा पर बजाया हुआ राग जोखोन और राग आहिर। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आखिर शब। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में।

मैंने अभी आप सुन रहे थे लैला मजनू फिल्म से ये नगमा तलत महमूद की आवाज में। हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जोराबाई अम्बालेवाली की आवाज में फिल्म मेला से।

संदेशी पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम किया है। अमरीका ने नई मुलाजमत तलाश करने के लिए गैर मुल्की कारकुनों के लिए दस्तियाब 60 दिन की मोहलत खत्म करने की तजवीज का जायजा लिया है। इस इकदाम से गैर मुल्की कारकुनों को अमरीका से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अमरीका के महकमा दाखिला की तजवीज सरदस्त इंतजामिया और बजट से मुतालिक वफाकी दफ्तर के जेर गौर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया है। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकरीम असनाद के जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मुकदम रखें और अपने आप से ये सवाल करें किस तरह उनके काम से मुल्क को फायदा हो सकता है और उसकी जरूरत पर तवज्जो दी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमी कंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि भारत सभी शोबों में खुदकफील बनने की समत काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा खुद किफालत की समत ये मुहिम एक विकसित भारत की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेमी कंडक्टर शोबे में भारत की कोशिशों का तस्करा करते हुए कहा कि भारत के पहले सेमी कंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। इधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, IIT दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम ने IIT दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कम्प्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। भारत ने अपने माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में एक अहम संगमील हासिल किया है। मुल्क में नसबशुदा गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की सलाहियत 300 गीगावाट से तजावज कर गई है। सोशल मीडिया की पोस्ट पर नई और काबिल तरदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने उजागर किया कि भारत की काबिल तरदीद तवानाई की सलाहियत में गुज़श्ता 12 बरस में 400% का इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गैर रिवायती ईंधन पर मबनी नसबशुदा बिजली की सलाहियत के 300 गीगावाट के संगी बिल से इस बात का इजहार होता है कि भारत की माहौल के लिए साजगार तबाहने की मुंतकली मुकर्रर करदा आलमी आदाफ के मुताबिक जारी है। जनाब जोशी ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत हुकूमत एक साफ सुथरी माहौल के लिए साजगार और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल तश्कील दे रही है। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सदर मसूद पेशकियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ्फुज करने के लिए सिफारतकारी के तहत अपने मुल्क के अहद का अहदा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पेशकियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहे। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मस्कूरा मुफाहमत नामे पर इस साल जून में दस्तखत किए गए थे। इसके तहत दोनों मुल्कों को 2 महीने के अरसे में बातचीत करने और पायदार अमन समझौते की समत काम करने की सहूलत दी गई है। उम्र दाखिला इमदाद बहामी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बहामी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी डिजिटल तहफात की जरूरत पर जोर दिया है। वो कल मुंबई में सहकार नवक्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि डिजिटल लेनदेन के फ्रॉड के मामलों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंककारी सेफ्टी को यकीनी बनाने के खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतालिक जराइम से निपटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वजीर दाखिला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया जो शहरी इलाकों के इमदाद बहामी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराहम करेगा।
सरकार ने वजाहत की कि सार्फिन के लिए यूपीआई एक और शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सार्फिन को यूपीआई के जरिए रकम की अदायगी करते वक्त लेन देन पर किसी तरह के चार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही डिजिटल कारोबारी लेन देन पर भी कोई चार्ज आयद नहीं होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र

और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया, जो दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दीचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरी मेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दीचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस करल प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुद्दीचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को और बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला 1:10 और 6 सेकंड और श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जीडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान

करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओत्तारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृहमंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण

0: केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said the strive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Union Home Minister Amit Shah will today participate in the presentation ceremony of the President's Police Colour. At the ceremony organized by the Puducherry Police, the Home Minister will hand over the ceremonial flag to the force, marking the conferment of the prestigious award. In the afternoon, Union Home Minister will also flag off a Har Ghar Tiranga rally at Muruga Theatre Signal in Puducherry. Mr. Shah arrived in Puducherry on a two-day official visit yesterday. He reached Puducherry by road from Thiruvannamalai and proceeded to Lok Nivas, where he met and held discussions with Lieutenant Governor K. Kailashnathan. He was received by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy and his cabinet ministers and legislators, BJP State President V.P. Ramalingam and former Speaker R. Selvam. The deadlock over the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations in Jharkhand now appears to be moving towards a resolution. The Jharkhand government will hold next round of talks with students protesting the alleged exam irregularities in the state today. The talks will be held around 12 PM, a member of the government panel said, after the panel held meeting with Chief Minister Hemant Soren, apprising

0: जिस
1: श्रोताओं में भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का यार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4 बजने को है, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। अगला कार्यक्रम होगा अर्चना।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत।
3: नमस्कार, आकाशवाणी
2: अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: तो अभी आप सुन रहे थे खास कार्यक्रम अर्चना, भक्तमय संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे AIR लाइव न्यूज 24/7 पर। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं खास कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बांसुरी वादन जी रघु रमन का रागम मध्यावती में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम जो अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको बता दें आज आप कौन कौन से कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे बद्ध पद्मासन, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर देशभक्ति संगीत होगा और सुबह 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे नीपा चौधरी का राग बैरागी में गायन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे भजन शब्द और नट। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में आज भगवान महावीर के उपदेश। हर रोज की तरह आज भी 6:45 पर सुबह आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार।

8:45 बजे कार्यक्रम आज आप सुनेंगे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। 5 बज चुके हैं। अब समाचार।

मन आसा हरि दया सतगुरु

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु पाया सहज से की मन बजिया।

ਸੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਹੈ।

केश दान रहत दान विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटला

पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन।

की आनंद साहिब जी की अरदास पुल चौका मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों करा प्रसाद भेटा कीता।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।